मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 47 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। सूर्य की सुनहरी आभा प्रकृति में नई ऊर्जा और ताजगी का संचार भर रही है। सुबह का सुहावना पल दिन भर की गर्मी से राहत तो पहुंचाता ही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। श्रोताओं, आप भी सुबह की सैर के साथ साथ अपनी दिनचर्या आरंभ कर चुके हैं। हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, हम जानते हैं आपको इंतजार होगा देश दुनिया की खबरों को जानने का, क्योंकि आप ऑन कर चुके हैं अपना रेडियो सेट। तो देर कैसी, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान

स्थान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट

0: एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ। सुबह के 6:05 का वक्त हुआ है। समय है कृषि चर्चा का। श्रोताओं, आपको बता दें, आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं 747 किलो हर्ट्स पर और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आज की कृषि चर्चा में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे अगेती फूल गोभी की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन जहां आप कर रहे हैं वहां अगेती फूल गोभी की तैयारी में होंगे। अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगेती फूल गोभी की खेती की क्या कुछ संभावना है अपने प्रदेश में?
3: नमस्कार किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती करते हैं तो 12 महीने होता है, लेकिन अगेती अगर हम करते हैं तो उसमें अगर उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के साथ साथ आपको अधिक आमदनी में होती है, क्योंकि ठंड से पहले इसमें बरसात के मौसम में हम इसकी रोपाई करते हैं तो ये ध्यान देना पड़ता है कि खेत का चुनाव करें जिसमें जल भराव का न संभावनाएं हो,
2: यानी जल निकास का अच्छा प्रबंध हो और जल भराव न हो, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, तभी बेमौसम यानी अगेती हो पाएगी।
3: हाँ किसान भाइयों, ये चूंकि आप देखते हैं कि बरसात मौसम में जहाँ भी जल भराव हो जाएगी तो हमारे जो पौधे हैं वो गल जाएंगे, तो ये खेत का जो चुनाव करते हैं वो जल निकास की सुविधा अच्छी हो कि हमारी पानी बाहर तुरंत निकल जाए।
2: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं जो अगेती फूल गोभी की?
3: देखिए किसान भाइयों, जो प्रजातियों की सबसे महत्वपूर्ण होती है कि अगर हम अगेती की पिछेती लगाते हैं, पिछेती की अगेती में लगा देते हैं तो हमारी प्रजातियों का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अगर हम देखें तो अर्ली पटना है, अर्ली कुंवारी है, पूसा कातकी है, पूसा दीपाली है, सबौर अग्रिम है और सबौर मुक्ता है, और डॉक्टर के नाम से समर वाइट भी बाज़ार में मिलते हैं, किसी की दुकान पे आप जाएंगे तो ये जून के महीने में नर्सरी अब पड़ेगी और अंतिम जून तक आप नर्सरी इसकी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं लगभग 60 से 70 दिन में हो जाती हैं। जो सबौर अग्रिम एक प्रजाति है उसमें क्या होता है कि किसान भाई ये 60 से 70 दिन में, नर्सरी से लेकर 70 दिन में हमारी तैयार हो जाती है फसल, लेकिन इसमें होता है कि इसका फूल वाइट होता है और ठोस होता है। जैसे जनरली आप देखते हैं किसान भाइयों कि जब हम अगेती फूल गोभी करते हैं उसमें प्रजातियां का फूल जो होता है वो हल्का पीला होता है और ठोस नहीं होता है, तो ये भी ध्यान देने की बात है कि हम प्रजातियों का चयन करते हैं तो अच्छी प्रजातियां ले लें। और ये सब जितनी प्रजातियां हैं, और पूसा हाइब्रिड 2 भी है जो संकर प्रजातियों की बात होती है, तो पूसा हाइब्रिड 2 है, पूसा मेघना है, ये सब हमारी
2: इसको भी अगेती ले सकते हैं।
3: अगेती ले सकते हैं इसको।
2: डॉक्टर साहब, नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास होगा क्योंकि अगेती फसल है?
3: किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगेती फसल के लिए नर्सरी का प्रबंधन आवश्यक है। नर्सरी के लिए किसान भाइयों, जो हम बेड बनाते हैं वो अगर 1 मीटर चौड़ा और जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा और करीब लंबाई आप 3 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक कर सकते हैं और एक नाली के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर नाली अवश्य बनाएं,
2: यानी 2 फीट लगभग
3: 2 फीट की दूरी पे एक एक बेड आप बनाते चलें, एक नाली दें फिर बेड बनाए। इससे क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जल भराव स्थिति होती तो उसमें हम पानी उसके रास्ते निकल जाता है। इसमें अगर हम 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा हम बेड बनाते हैं तो उसमें 5 से 7 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद डालें, 25 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम DAP और 25 ग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास का

0: प्रति बेड के हिसाब से मिला करके आप इसको अच्छी जो बेड बनेगी वो बहुत ही भुरभुरी बनेगी, न कि उसमें ढेला कंकड़ पत्थर उसमें से निकाल दें। और बीज जनरली किसान भाई छिटक करके बोते हैं, तो किसान भाइयों से हमारा कहना है कि किसान छिटक करके बुआई न करके उसकी लाइनिंग में बुआई करें। अब बुआई करने के बाद सड़ी गोबर की खाद छनी हुई उसके ऊपर से हल्की से आप ढकाई कर दें, या पुआल से या गन्ने की पत्ती से उस पर ढक दें। जब हमारा जमा हो जाए तो उसको निकाल लें, क्योंकि विशेष ध्यान होती है कि नर्सरी अगर आप ऊंची नहीं बनाएंगे तो हमारी फूल गोभी की नर्सरी खराब हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई मोबाइल नंबर 87550 11086 87550 110 86 87550 110 86।
1: डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अगेती फूलगोभी की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपके सुझाव पर किसान भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अगेती फूल की फूल गोभी की उन्नत खेती विषय पर अभी किसान भाई जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज की कृषि चर्चा में। इस विषय पर डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। जो हमारे भीतर और बाहर व्याप्त है असीम सागर, वही अनंत ज्ञान है। केवल किताबों में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण, निरंतर सीखने की इच्छा और अनुभव में बसता है अनंत ज्ञान। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। एक युवक के पिता का देहांत हो गया। छोटी वय में ही उस पर गृहस्थी का बोझ आ पड़ा। वो युवक शोक से विफल होकर एक विद्वान के पास पहुंचा। विद्वान ने युवक को समझाया, देखो अमंगल में मंगल और मंगल में अमंगल निहित रहता है। तुम्हारे इस दुख के अंदर अवश्य ही कोई ना कोई सुख छिपा होगा। युवक ने संतोष कर लिया। इसके कुछ समय बाद उन विद्वान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समारोह हुआ, उसमें वो युवक भी निमंत्रित था। विद्वान ने कहा, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है जो उसने मेरे आंगन में मंगल वर्षा की। इस पर युवक ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, वास्तव में ये तो अमंगल ही है, मंगल में तो अमंगल छिपा ही रहता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये संसार भले बुरे का मिश्रण है। जहाँ बुराई देखो समझ लो अच्छाई भी वहीं कहीं होगी। वेदांत कहता है, केवल अच्छे बुरे का अस्तित्व हो ऐसी बात नहीं है, इनके पीछे जो वस्तु है वास्तव में वो तुम्हारा आपा है, वो तुम हो जो सब प्रकार के शुभ अशुभ से ऊपर हो। तुम प्रकृति के दास नहीं हो, भले ही प्रकृति अनंत जान पड़े परंतु वास्तव में वो ससीम है, वो समुद्र की एक बूंद मात्र है, वास्तव में तुम ही समुद्र रूप हो। तुम सूर्य चंद्र और नक्षत्र सभी से परे हो, तुम्हारे अनंत स्वरूप की तुलना में वे सब केवल बुलबुलों के समान हैं। इसे जान लेने पर तुम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों पर विजय प्राप्त कर लोगे। उस समय तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी और तुम कह सकोगे, मंगल कितना सुंदर है और अमंगल भी कितना अद्भुत है। तुम स्वयं ही अपना भाग्य बनाने वाले हो। तुम स्वयं ही अपने कर्मों से अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल भोग रहे हो। तुम अपने ही हाथों से अपनी आंखें बंद करके कहते हो कि अंधेरा है। तुम हाथ को हटा लो, प्रकाश स्वतः दिखाई देगा। तुम स्वयं ज्योति स्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो। एक छोटे पौधे की रक्षा उसके चारों ओर तार बांध कर

0: पड़ती है, नहीं तो गाय और अन्य पशु पक्षी उसे नष्ट कर डालते हैं। किंतु जब वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, तब अनेक पशु पक्षी भी उसके वृक्ष के नीचे विचरण करते हैं और उसी के पत्तियों का आहार करते हैं। उसी प्रकार जब तक तुम में थोड़ी भक्ति है, तब तक बुरी संगति और संसार के प्रपंच से उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब उसमें दृढ़ता आ जाएगी, जब कुवासनाओं को हृदय में प्रवेश का साहस नहीं होगा और अनेक दुर्जन तुम्हारे पवित्र सहवास से सज्जन बन जाएंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार पानी में पत्थर सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहे, परंतु पानी पत्थर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इसके विपरीत चिकनी मिट्टी पानी के स्पर्श से ही घुलने लगती है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति का दृढ़ हृदय कठिन से कठिन दुख पड़ने पर भी निराश नहीं होता, परंतु दुर्बल हृदय के व्यक्ति छोटी छोटी बातों से हताश हो जाते हैं। दूसरों के दोष देखने में आप जितना समय लगाते हैं, उतना अपने दोष सुधारने में लगाइए। यदि आप अपना आचरण सुधारेंगे तो ये संसार अपने आप सुधर जाएगा।
1: तो श्रोताओं, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे हम बाहर से खरीद सकते हैं, ये हमारे अपने अनुभव से जागृत होता है। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार अनंत ज्ञान, वाचन स्वर शीला मिश्रा का था। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

दीप जले तो भक्ति जागे और सुर गूंजे तो मन भागे। माँ के भजनों की महिमा भक्तों के लिए विशेष है। भक्ति के इस सफर की शुरुआत करते हैं माँ के चरणों को नमन से।

प्रभु नाम जप में और प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है और उनके नाम में है अनंत साहस। कहते हैं कि जीवन में ऊर्जा, उत्साह और निर्भयता का संचार करना हो तो प्रभु भक्ति का आह्वान करना जरूरी है।

747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 195।

दल दल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाईं ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ 747 किलोहर्ट्ज पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रियसीमासु वित्तीयव्यवहारस्य भवननिर्माणस्य सम्पत्तिक्रयविक्रयणस्य च विषये विशेषसमवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः BSF इति सीमासुरक्षाबलस्य त्रिपुरासीमामुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तरराज्यसीमाक्षेत्रविषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमन्त्री विगतपञ्चवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। CBSE इति केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षापरिषद् अङ्कसत्यापनार्थं पुनर्मूल्याङ्कनार्थं च आवेदनसमर्पणाय अन्तिमां तिथिं जूनमासस्य सप्तमदिनाङ्कपर्यन्तम् अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदनसमर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनाङ्कः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीयकर्णाटकमाहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीयपुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च उत्तमप्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकीदलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायकस्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन 6th एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढ़े भारताफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्तिपर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकम् 68-300 धावनाङ्काः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है अपने रेडियो सेट 747 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 7 हैं और ये समय होता है श्रोताओं स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर हमारे श्रोताओं को बताएंगी स्वाद और सेहत का संगम सरसों के बीज विषय पर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे उस बीज की जिसकी सोंधी महक से हमारी रसोई महक जाती है, जिससे तड़के की शुरुआत होती है और जो न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि शरीर को भीतर से मजबूत भी करता है। हम बात कर रहे हैं सरसों के बीज की, जिसे हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। सरसों एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि हमारी थाली और स्वास्थ्य को भी रंगीन बनाता है, सेहतमंद बनाता है। इसके बीज छोटे

ते छोटे गोल और भूरे या काले रंग के होते हैं। तड़के में डाले जाने वाले ये बीज केवल महक के लिए ही नहीं बल्कि इन छोटे छोटे दानों में बड़े बड़े औषधीय गुण समाये हुए हैं। भारतीय रसोई में सरसों के बीजों का उपयोग न जाने कितनी पीढ़ियों से होता आ रहा है, लेकिन जब हम इसके स्वास्थ्य से जुड़े पक्ष को समझने लगते हैं तो ये केवल एक मसाला नहीं रह जाता, ये बन जाता है शरीर को संबल देने वाली शक्ति। आयुर्वेद में सरसों को गर्म तासीर वाला माना गया है, यानी ये शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही वजह है कि सर्दियों में इसका सेवन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। सरसों के बीज पाचन क्रिया को सुधारने वाले होते हैं। जब भोजन में सरसों का तड़का लगता है तो ये पाचन रसों को सक्रिय करता है जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। खासकर जब कोई भोजन भारी हो या तेल युक्त हो तब सरसों का उपयोग उसे संतुलन में लाने का काम करता है। सरसों के बीजों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं। ये गुण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। अगर गले में खराश हो, जुकाम की शुरुआत हो रही हो या शरीर में अकड़न महसूस हो रही हो तो सरसों के बीजों से बना गर्म काढ़ा राहत दे सकता है। बहुत से पुराने घरों में सरसों के बीज को पानी में उबालकर उसमें नमक और थोड़ा सा शहद मिलाकर दिया जाता था। ये नुस्खा आज भी उतना ही प्रभावी है। श्रोताओं, सरसों केवल एक बीज तक सीमित नहीं है, इसका तेल भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। सरसों का तेल त्वचा में मालिश करने से रक्त संचार तेज होता है, शरीर में गर्मी बनी रहती है और मांसपेशियों को राहत मिलती है। छोटे बच्चों की सरसों के तेल से मालिश करने की परंपरा भी इसी कारण से है, क्योंकि ये हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और शिशु को शीतल हवाओं से भी बचाता है। कई बार जब पेट फूलने की शिकायत होती है या गैस बनती है तो सरसों के बीज को जीरे के साथ मिलाकर उसका चूर्ण बनाकर गर्म पानी के साथ लेने से बहुत राहत मिलती है। ये आंतों में जमे अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर को हल्का बनाता है। यही कारण है कि कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी सरसों को विशेष स्थान दिया गया है। अगर त्वचा की बात करें तो सरसों के बीजों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से ब्लैक हेड्स, मुहासे और दाग धब्बों से राहत मिल सकती है। ये त्वचा को भीतर से साफ करता है और रोम छिद्रों को खोलता है। वहीं सरसों के बीजों से बना उपटन शरीर को निखारने और त्वचा को मुलायम बनाने के लिए पुराने समय से उपयोग में लाया जाता रहा है। सरसों के बीजों का एक और लाभ है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जिन लोगों को अक्सर मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम हो जाता है या बार बार थकावट महसूस होती है, उनके लिए सरसों का नियमित और सीमित मात्रा में सेवन शरीर को भीतर से ताकत देता है। सरसों में सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि गठिया के मरीजों को सरसों का तेल मालिश के रूप में दिया जाता है। मगर जैसा कि हर औषधीय चीज के साथ होता है, सरसों का भी सेवन संतुलन में होना चाहिए। अधिक मात्रा में सरसों के बीज का प्रयोग शरीर में अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न कर सकता है जिससे जलन या एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए दालों, सब्जियों, कढ़ी या अचार में सीमित मात्रा में प्रयोग करना ही बेहतर होता है। श्रोताओं, सरसों के बीज हमें ये सिखाते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बड़ी बड़ी दवाओं या सप्लीमेंट्स की नहीं बल्कि छोटे छोटे मसाले की समझदारी से जरूरत होती है। हमारी रसोई में मौजूद ये तत्व न केवल स्वाद के वाहक हैं बल्कि शरीर के संतुलन और सुरक्षा के प्रहरी भी हैं। सरसों के बीज उन्हीं में से एक हैं जिनका सही उपयोग हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और गर्माहट प्रदान कर सकता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और किसी देसी मसाले या औषधीय तत्व के साथ जो आपके रसोई के स्वाद को और आपके स्वास्थ्य को दोनों को संवार सके। तब तक अपने खाने में संतुलन बनाए रखें, परंपरा से

0: सरसों के बीज उन्हीं में से एक हैं जिनका सही उपयोग हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और गर्माहट प्रदान कर सकता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और किसी देसी मसाले या औषधीय तत्व के साथ जो आपके रसोई के स्वाद को और आपके स्वास्थ्य को दोनों को संवार सके। तब तक अपने खाने में संतुलन बनाए रखें, परंपरा से जुड़े और खुद को भीतर से मजबूत बनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपने जानकारी प्राप्त की आज की स्वास्थ्य चर्चा में। स्वाद और सेहत का संगम सरसों के बीज के बारे में जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, हमारे यानी वैशाली के साथ। और अब समय है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला में सुनिएगा आज का विषय, वंचितों को वरीयता, सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आज रात 10:00 रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में आज सुनिएगा पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी की बातचीत। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा डॉक्टर बशीर बद्र पर मबनी खसूसी तमसीली प्रोग्राम, जिसका उन्वान होगा जुगनू जो सितारों की महफिल में खो गया। तहरीर और आवाज होगी मोहम्मद फर्रुख जमाल की। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एस्पांडे और नीना सोनकर की होगी। हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00 सुनना ना भूलें अमन मणि त्रिपाठी की व्यंग वार्ता हवा में फड़फड़ाते शब्द। दिन में 3:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज विषय होगा किडनी रोग, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे अमित कुमार सिंह, संचालन सुभाष खन्ना का है। संस्कृत कार्यक्रम में दिन में 3:15 पर सुनिएगा डॉक्टर कन्हैया लाल झा की संस्कृत वार्ता रामायणे दूत कर्म हनुमतो चातुर्यम। प्रस्तुति डॉक्टर शिवा राकेश की होगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा स्वपन चौधरी का तबला वादन। दोपहर 12:00 बालमंच कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे डॉक्टर हेमंत कुमार श्रीवास्तव की कहानी घर घर की आवाज। इसके अलावा बच्चे सुनेंगे विश्व कैंसर सर्वाइवर दिवस पर ओबी आधारित कार्यक्रम कैंसर सर्वाइवर बच्चों से बातचीत। प्रेजेंटर होंगी स्नेहिल श्रीवास्तव। ईएमआई का चक्कर, ये झलकी सुनिएगा आज इतवार है में दिन में 1:15 पर। मुमताज हसन की ये लिखी झलकी, जिसका निर्देशन किया है अतिश कुमार श्रीवास्तव ने। दिन में 1:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे वरिष्ठ नागरिक रखें अपने आंखों का ख्याल। इस विषय पर डॉक्टर उपशम गोयल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ से की गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगी डॉक्टर अलका चौधरी। गर्मी में पशुओं का खान पान और रख रखाव विषय पर सुनना ना भूलें डॉक्टर संजय कुमार मिश्र से की गई भेंटवार्ता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार के अवसर, सुनिए सितांशु कुमार से की गई भेंटवार्ता। संकल्प कार्यक्रम में आज 4:00 भेंट करता होंगे देवाशीष। नई उड़ान कार्यक्रम में 5:45 पर आप सुनेंगे ओबी आधारित बातचीत सामाजिक नवाचार के युवा चेहरे, बदलाव के चेहरे। 6:30 पर शाम लोकायतन कार्यक्रम में सुनिएगा लोकभाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश, रामकरण मिश्र सैलानी। संचालन रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर का होगा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे डेयरी व्यवसाय विषय पर ओम बाबू वर्मा से की गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 किलो हर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, क्या आपने आज नाश्ता किया? अगर हाँ तो आप दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें ये सुविधा मिली, क्योंकि आज भी दुनिया में अनगिनत लोग रात को भूखे पेट ही सो जाते हैं। और ये तब है जब हर साल इतना अनाज उगाया जाता है कि असंख्य लोगों को खिलाया जा सके। तो फिर दोस्तों, समस्या क्यों है, कहां जाता है ये खाना और हम क्या कर सकते हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज की विविधा में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की आज हम बात करेंगे विविधा में, जो हर साल मनाया जाता है 7 जून को, ताकि सुरक्षित भोजन के महत्व और खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। साल 2018 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापित और WHO तथा FAO के संयुक्त नेतृत्व में मनाया जाने वाला ये दिन इस बात पर जोर देता है कि खाद्य सुरक्षा उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी की जिम्मेदारी है। खाद्य सुरक्षा सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि हर इंसान को वक्त पर पर्याप्त सुरक्षित और पोषण युक्त खाना मिले, यही इसका उद्देश्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन ही जीवन है, लेकिन सच तो ये है कि सुरक्षित भोजन ही स्वस्थ जीवन है। भोजन खेत से शुरू होता है और हमारी थाली तक पहुंचता है। जो भोजन हम खा रहे हैं वो साफ हो, उसमें हानिकारक कीटाणु ना हो, रसायन की मात्रा खतरनाक ना हो, खाना सही तरीके से पकाया गया हो, सही तापमान पर रखा गया हो और सबसे अहम, सही तरीके से परोसा गया हो। कई बार दोस्तों, खाना दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, रंग भी सही, खुशबू भी ठीक, स्वाद भी अच्छा, लेकिन उसके अंदर छिपे बैक्टीरिया या वायरस हमें बीमार कर सकते हैं। यही वजह है कि खाद्य सुरक्षा दिखावे की चीज नहीं बल्कि सावधानी की आदत है। बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन, ये थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस साल 2026 की। WHO के अनुसार ये थीम इस बात पर जोर देती है कि खाद्य जनित बीमारियों के आंकड़े, लागत और उनका असर समझकर सही समाधान निकाला जाए और सही दिशा में कार्यवाही कर मार्गदर्शन किया जा सके। जानते हैं दोस्तों, कई शोध बताते हैं कि दूषित खाना खाने से हर साल करोड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं और लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अब जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल में टिफिन खाता है, एक मजदूर सड़क किनारे खाना खाता है, एक बुजुर्ग घर में दवा के साथ हल्का भोजन लेते हैं, एक गर्भवती महिला पौष्टिक खाना खाती है। इन सब के लिए भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जरूरत है। और अगर भोजन सुरक्षित नहीं होगा तो बच्चा पढ़ाई में कमजोर भी तो हो जाएगा, मजदूर काम नहीं कर पाएगा, बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है और परिवार की चिंता बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो खाद्य सुरक्षा का संबंध मानव स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन, सतत विकास और देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। वो ऐसे कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज

पर खर्च बढ़ता है, काम रुकता है, पढ़ाई बाधित होती है, उत्पादन घटता है। सुरक्षित भोजन से स्वास्थ्य बेहतर होता है, परिवार की बचत होती है और तो और समाज भी मजबूत बनता है। और आजकल फास्ट फूड, ऑनलाइन खाना मंगाने का चलन बढ़ गया है। हम ऐप पर फोटो देखकर खाना ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि रेस्टोरेंट की रेटिंग कैसी है, पैकेजिंग साफ है या नहीं, खाना समय पर आया या नहीं और पैकिंग कहीं टूटी हुई तो नहीं है। बच्चों के टिफिन में भी खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है। टिफिन में देर तक रखी जाने वाली चीजों का चयन सावधानी से करना चाहिए, जहां तक हो सके ना ही रखें। गर्मी में जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्रियों को ना दें। पानी की बोतल रोज साफ करें, फल धोकर ही खाएं और सबसे जरूरी, बच्चों को सिखाएं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि सेहत की ढाल है।

याद रखें दोस्तों, खाने की असली कीमत स्वाद से नहीं, सुरक्षा से तय होती है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आइए संकल्प लें कि फूड सेफ्टी चेक करेंगे, खुले और दूषित भोजन को खाने से बचेंगे, पैकेट पर लिखी चीजों की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें, भोजन की बर्बादी कम करें और भोजन को सम्मान दें, क्योंकि भोजन सिर्फ अनाज नहीं है, ये किसान की मेहनत है, माँ के हाथों का प्यार है, प्रकृति का उपहार है और हमारे जीवन की ऊर्जा है। याद रखें, एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत होती है सुरक्षित भोजन से। आज की विविधा में बस इतना ही, दीजिए अनुमति वैशाली को, नमस्कार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 265 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए लागत की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्ति पीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य की रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक सक्षम और परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने कल वहां दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक संस्कृति, धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
2: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
3: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही है और

0: छठी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया, 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर एक दिन पूर्व लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से 10 जून तक प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग PM सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून तक ही निर्धारित थी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर आगामी 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान,

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी लखनऊ से। आप हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित सपन चौधरी का एकल तबला वादन। ताल है झपताल।

अभी आप सुन रहे थे पंडित सपन चौधरी का एकल तबला वादन, ताल था झप ताल। और अब आइए सुनते हैं पंडित सपन चौधरी का एकल तबला वादन, ताल है रूपक ताल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सपन चौधरी का एकल तबला वादन, राग था रूपक ताल। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति हमें आपको नमस्कार। बने रहिए 747 किलो हर्ट्स पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। ये आकाशवाणी लखनऊ है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग

0: लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
1: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है।

0: वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम

0: का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी

0: खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदामात करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। और फुटबॉल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर लगातार छठी मर्तबा ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलाक्वामी सरहदों पर जायदादों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। अमित शाह की तरफ से हिदायत उस वक्त सामने आई जब उन्होंने शिमाल मशरिकी रियासत के सरहदी इलाकों से मुतालिक बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की सदारत की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर दाखिला ने यह हिदायत भी की कि गुज़िश्ता 5 साल की जमीन से मुतालिक रिकॉर्ड्स की जांच कराई जाएगी। जनाब शाह ने कहा कि मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों की पूरी चेन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहदी ज़िलों में माली जाब्तगी को यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी है। जनाब शाह ने हिदायत दी कि कलेक्टर्स और GST अफसरों को भी तरबियत दी जानी चाहिए और बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT जाली करेंसी का सर्वे कराए। वजीर दाखिला ने कहा कि सरहदी इलाकों में रहने वालों को तरबियत देने के लिए कैंपों का अहतमाम किया जाना चाहिए ताकि मनशियात और आतिशी असलाह के खतरात से निपटा जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि इन कैंपों से पटवारियों, मकामी पुलिस और BSF अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मीटिंग में इस बात को उजागर किया गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में बैन अलाक्वामी सरहदों से मुतसर इलाकों के आला मेयारात को यकीनी बनाने के तहत पूरी तरह कारबंद है, जबकि वो सरहदी इलाकों की मजमू तरक्की और सलामती के लिए मरकज़ और रियासतों के दरमियान करीबी तालमेल को फ़रोग दे रहा है। आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का सवालिया पर्चा लीक होने, उस तक पेशगी रसाई और फरोख से मुतालिक सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहे दावों को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये मुनज्जम जालसाजी गिरोहों का काम है जो तलबा और उनके कुनबों की बेचैनी पर पनपते हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: NTA ने कहा है कि इम्तिहान की मोतबरियत पूरी तरह कायम है और उम्मीदवारों के लिए मुनसिफाना और महफूज इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। NTA ने कहा है कि वो इस तरह के चैनलों, अकाउंट्स और मवाद की सरगर्म तरीके से पहचान में लगा हुआ है और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स और साइबर जराइम हुकाम से इसे हटाने और कार्रवाई करने में मसरूफ़ है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और तलबा को मशवरा दिया है कि वो किसी तरह का कोई माली लेन देन ना करें, ना ही इसी तरह के किसी मैसेजेस को आगे बढ़ाएं और ना ही धोखेबाजों के फरेब में आएं। NTA ने उम्मीदवारों से अफवाहों को नज़रअंदाज करने और मोतबर मालूमात के लिए NTA की मुस्तनद वेबसाइट और चैनलों पर ही इन्हिसार करने की अपील की है। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल सेहत इको निज़ाम को फ़रोग देने के तहत अहदबस्ता है। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ से ज़्यादा मुनफरद आभा शिनाख्ती कार्ड्स बनाए हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन आभा ID से मुंसलिक कर दिया गया है। मुकम्मल इंटरव्यू 100.1 MHz आकाशवाणी FM गोल्ड और इजाफी मीटरों पर आज शाम 7:10 पर मोदी हुकूमत के 12 साल की हमारी खसूसी सीरीज में नशर किया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि

बीजेपी सरकार रियासत में दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों जैसे अहम मजहबी मकामात पर सहूलतें बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। कोलकाता में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि तारकेश्वर में आइंदा होने वाले सराबनी मेला के लिए वसी इंतजाम किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की साबिका इंतजामिया पर तनकीद करते हुए वजीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल ने गुज़श्ता 15 साल के दौरान रोजगार के मौके की कमी और निज़ाम में बदउनवानी की वजह से काफ़ी नुकसान उठाया है। जनाब अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि टीएमसी हुकूमत के दौरान खुशामद पसंदी की सियासत ने तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। मगरबी बंगाल को एक मुकद्दस रूहानी सरजमीन बताते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि खुशामद पसंदी, लाकानूनियत और सरमायाकारी की कमी का दौर अब खत्म हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल पीएम इक्तिसादी मशावरती कौंसिल के मेंबरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की माशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामला पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाती तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर यूपीआई इंडिया और नेपाल के यूपीआई को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मफाहमत नामे का तबादला ख्याल किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तआवुन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क ज़रूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दोतरफा तआवुन को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राज़ील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का तआवुन काफ़ी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेज़ी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफ़ी मजबूत रहा है और अगली एक दहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपये होगी, जबकि इससे पहले ये 913 रुपये थी। केरलम के 7 जिलों में बहुत शदीद बारिश से मुताल्लिक

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: केरलम में त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, किन्नौर और कासगौड़ के शुमाली जिलों में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 7 जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि पीर तक केरलम में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। आज सुबह केरलम में तकरीबन सभी ऑब्जर्वेटरीज की तरफ से बारिश की इतला दी गई है। केरलम के साहिली इलाकों में मछलियाँ पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शिमाल मशरकी भारत, अंडमान निकोबार जजायर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मकामात पर आज गरज चमक के साथ आंधी चलने की पेशगोई की है। वहीं साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज गर्म लू की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इसी तरह उड़ीसा में आज रात गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का भी इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगाव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मैच में भारत शुरू ही से बांग्लादेश पर हावी रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पहले हाफ में प्यारी जैक्सा ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। अलबत्ता बांग्लादेश की तरफ से ऋतुपूर्णा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था। खेल के दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह खेल पर हावी हो गया और सैन फिदा ने शानदार दूसरा गोल करके भारत को फिर से शक्कत दिलाई और फिर लिंडा कॉम ने तीसरा गोल करके मैच भारत के हक में कर दिया और इस तरह भारत मैच 3-1 से जीत गया। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काका मिगाहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में भारत आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे दिन 3 विकेट पर 368 रन से आगे अपनी पहली इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी मुशावरती काउंसिल मीटिंग के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल के घरेलू मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मीटिंग के दौरान मुमताज़ माहरीन इक्तसादियात और पॉलिसी माहरीन ने मगरबी एशिया कशीदगी और इसके भारतीय सप्लाई चेन पर असरात पर खसूसी बातचीत की। वहीं इनकलाब ने कौमी राजधानी खत्े में पड़ रही शदीद गर्मी को भी अहम खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक NCR में कई मकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलाक्वामी सरहदों पर जायदादों की खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, समय है सुबह के 8:45 का और ये समय होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल

आपके गीत का। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी नगमों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com।

श्रोताओं, आप सबको वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। और आज सबसे पहले आप सुनेंगे नागिन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर महेंद्र कपूर ने। इसे सुनने के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, आपको भी सुप्रभात। और ये मेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन, प्रतिभा, माया और हरिपल कौर जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ईमेल आपने हमें लिख भेजा है, हम आपकी फरमाइश को शामिल कर रहे हैं। और अब जो मेल है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है, सप्रेम नमस्कार, पलारी छत्तीसगढ़ से हैं ये, नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा, ईशांत और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। एक मेल है, ये गुजरात गांधीग्राम से है, प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी जी का। इन्होंने लिखा है, नमस्कार और धन्यवाद। और मेल भेजा है, जय श्री कृष्णा लिखा है इन्होंने, आपको भी जय श्री कृष्णा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी, निमिता हुजा ने। और आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं नागिन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने।

0: QR कोड स्कैन करो,
1: 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आपके मेल, आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। और अब जो मेल है, बहुत ही अच्छा सा संदेश लिखा है हमारे श्रोता, ये जो हैं, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, नमस्कार। बहुत ही प्यारा सा संदेश है, और आपका भी हर पल श्रोताओं खुशियों से भरा हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ये मेल भेजा है हमारे श्रोता अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा भाई चांद, राजकुमार बोड़ाना। और एक मेल है सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का। डोंडे लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से मेल भेजा है देव शंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर ने। और बहुत ही अच्छी सी फरमाइश इन्होंने लिख भेजी है। और नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से ये मेल है अब्दुल गफ्फार, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल है सोहन जोशी, पायल जोशी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों का। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से मेल है, इन्होंने लिखा है सप्रेम नमस्ते, आपको भी नमस्कार। तिलक राज, अरोड़ा, प्रकाश, चंदन, अंकुश और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों का। और इन सभी ने फरमाइश की है कुली नंबर फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन। और आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं और ये बेशुमार प्यार करते हैं आकाशवाणी लखनऊ और आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों से। ये मेल भेजा है हमें चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा बिमला अनेजा जी ने, और अपनी

फरमाइश भी लिख भेजी है इन्होंने। और अगला जो मेल है भेजने वाले श्रोता हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रिजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। और एक मेल है, नमस्कार जी, आपके सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से ये मेल है अशोक सिंह, सुनीता सिंह का। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेल है लालगिरी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का। और इन्होंने लिखा है प्यार भरा नमस्कार और अपनी पसंद का ये गीत सुनना चाहते हैं। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से मेल है रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और सभी परिवार के सदस्यों का। और इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है। कार्यक्रम में इनके मेल को अगर शामिल कर लिया जाता है तो ज़रूर शामिल करेंगे भाई। और आप सबकी पसंद पर आइए सुन लेते हैं लालच फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खालिसपुर पोस्ट ऊंच गांव जिला अमेठी से मेल भेजने वाले श्रोता हैं सोनू परवाना, और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य अर्जित, हर्षित, अर्पित, मोनू और बहुत सारे इनके मित्र बंधु। और ये जो मेल है ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कोथरूट पुणे महाराष्ट्र से देवयानी, शशांक, तनु, तान्या, शिखा और शिक्षा और इनके बहुत सारे मित्र बंधु इन्होंने मेल भेजा है। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मेल है मुकेश, शीतल, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर, मानवी, तन्वी और इनके परिवार के और भी सदस्यों का। और ये सभी अपनी फरमाइश हमें लिख भेजे हैं और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। इन्होंने लिखा है नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से कमरों निशा, शबिस्ता, पलक, नसीब, यश और इनके परिवार के सदस्य। आप सभी ने हमें मेल लिख भेजा है। ये हैं नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, कोमल, सियाराम, गौरपुर, बमना खेड़ा, जिला हरदोई से इन्होंने मेल भेजा है। और आप सभी सुनना चाहते हैं शान फिल्म का गीत जिसे गाया है आशा भोसले और साथियों ने।

झज्जर हरियाणा से मेल भेजा है बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक और इनके परिवार के सदस्यों ने। और एक मेल और है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा ने, और ये अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। ये मेल है विजय पाल यादव जी का और इन्होंने मेल भेजा है ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से, ऋचा, शिखा, गुड़िया, बबलू, विजय पांडे जी। और आपने नमस्कार लिखा है, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और ये है हमारे एक और श्रोता, इन्होंने मेल भेजा है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, रामशरण, साहिल, प्रियल और दिव्यांशी जी ने। और आप सभी सुनना चाहते हैं तोहफा फिल्म का गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

इसी गीत की फरमाइश की है कुरावली से राशिद हुसैन, नसरीन नौरनी और आसना मोहम्मद कैफ अंसारी जी ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही वक्त हमसे कह रहा है कि हम आपसे इजाजत लें, तो दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार। आप सुन रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में देश में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपए की मुफ्त

0: उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में सोलर एनर्जी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के निदेशक रविंद्र सिंह जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुए बदलावों को आप किस तरह से देखते हैं, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि इसमें कितनी महत्वपूर्ण है?
1: जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा को और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि हम पीएम सूर्य घर योजना की बात करें तो विशेष रूप से इसमें हमें लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में स्कीम के शुरू होने से लेकर अभी तक 5,65,000 के आसपास घरों को संतृप्त कर दिया गया है और इससे 1900 से ज्यादा मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम ले पाए
0: जी। प्रदेश में अप्रैल 2026 में 30 दिनों के भीतर 51,882 संयंत्र स्थापित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इतनी तेज गति की प्रगति जो हुई है, इसके पीछे क्या रणनीति काम आई?
1: हम निरंतर अलग अलग चीजों को ट्राई कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस स्कीम के लाभों को पहुंचा सके। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि ये स्कीम बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है, इसके प्रोविजन बहुत ही अच्छे हैं जिनकी से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर इसमें 3 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति अपना सोलर रूफटॉप लगाता है तो केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की उसको सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है और इसके अलावा लोगों के पास में बैंक से लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है जिसमें बैंक 6% की बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो जो मासिक ईएमआई होती है वो इतनी कम होती है कि उससे ज्यादा कई बार लोगों की सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसी प्रकार से नेट मीटरिंग भी की गई है जिससे कि जो एक्सेस एनर्जी किसी घर में अगर उत्पादित होती है तो उससे उनका बिजली का बिल भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमने आईसी एक्टिविटीज का, जागरूकता का, प्रचार प्रसार के बहुत सारी चीजें की हैं। विभिन्न जनपदों में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस संदेश को पहुंचा पाएं कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं।
0: आपने बताया जैसे कि लगभग प्रतिदिन करीब जो है 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली जो है इस योजना के तहत उत्पन्न की जा रही है प्रदेश में, तो इससे आम उपभोक्ताओं के जीवन में किस तरह से राहत पहुंची है, उसका क्या असर पड़ा है?
1: जैसा कि आपने बताया, रोज लगभग 5 करोड़ से अधिक की इसमें विद्युत की उत्पादकता हो रही है। आपने जैसे मेंशन किया था कि अप्रैल में हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं बताना चाहूंगा कि मई महीने में हम उससे भी ज्यादा कर पाए और लगभग 64,000 के आसपास हम पूरे माह में इसमें अचीव कर पाए हैं। तो इस हिसाब से प्रत्येक दिन अगर हम देखें तो अपने आप में सिर्फ इस योजना के तहत ही 7 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ रही है। तो निरंतर इसमें कैपेसिटी जो है उसमें भी वृद्धि हो रही है, जो लगातार हमारी सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही है घरों में उसमें भी वृद्धि हो रही है।
0: जी, आपने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर सब्सिडी दे रही हैं, तो अभी तक लाभार्थियों को प्रदेश के कितने सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है?
1: अभी तक हम स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से 3600 करोड़ की सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुंचा चुके हैं हम, और इसी प्रकार से राज्य सरकार की तरफ से भी अपनी ओर से 1200 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, इसको हासिल करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है और क्या कदम उठाया जा रहा है?
1: हमने पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में, उनकी प्रेरणा से रिन्यूएबल एनर्जी में 22,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें कई सारे हमने कंपोनेंट्स रखे हैं। एक तो इंडिविजुअल रूफटॉप सोलराइजेशन का है जो कि हमारा पीएम सूर्य घर में कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बड़े यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं को भी टारगेट कर रहे हैं जिसके तहत हमने 14,000 मेगावाट का टारगेट रखा है अलग अलग जनपदों में, जिसमें खास करके बुंदेलखंड के जनपद भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में हमने पीएम कुसुम एवं अन्य योजनाओं से भी 2,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव करने का लक्ष्य रखा है।
0: आपने पीएम कुसुम योजना का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं किस तरह से इस योजना से उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो लाभान्वित हो।
1: पीएम कुसुम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें से जो यूपी नेडा जिन कंपोनेंट्स को क्रियान्वित कर रहा है उसमें एक है सीवन। इसमें हम किसानों को जो उनका निजी पंप होता है उसके सोलराइजेशन के लिए को स्कीम को क्रियान्वित करते हैं और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। मुझे ये बताने में खुशी है कि इसमें अभी तक हम पीएम कुसुम सीवन कंपोनेंट में 7,800 से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान
0: जी। सौर ऊर्जा क्षेत्र रोजगार सृजन का कितना बड़ा माध्यम बनकर उभरा है?
1: सौर ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम

0: से रोजगार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जो पीएम सूर्य घर में हम अधिक से अधिक घरों को इसमें लाभान्वित कर पाए हैं, इसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि हमने ज्यादा से ज्यादा नए वेंडर्स को इसमें जोड़ने की कोशिश की है। अभी हमारे पास में कुल मिलाकर 6,500 से ज्यादा वेंडर पंजीकृत हैं और अकेले मई माह में ही हमने 700 से ज्यादा वेंडर्स को पंजीकृत किया है। तो इससे ये पता चलता है कि वेंडर्स में भी इसमें बहुत ज्यादा रुचि है, उत्साह है और सभी वेंडर्स कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा सके। और इसमें अगर हम रोजगार की बात करें तो 70,000 से ज्यादा तो डायरेक्टली रोजगार पहुंचा है, और अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अलावा 1,00,000 अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी विभिन्न प्रकार से रोजगार हुआ है। इसी प्रकार से सोलर दीदी कार्यक्रम के तहत भी हम महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी हम इस चीज के क्रियान्वयन में और प्रचार प्रसार में जोड़ रहे हैं।
1: आपने सोलर पावर दीदी कार्यक्रम का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, ये कार्यक्रम क्या है, इससे किस तरह से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, किस तरह से उनके लिए लाभान्वित हो रही है।
0: सोलर दीदी योजना के तहत हम विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को इस पूरे अभियान में जोड़ रहे हैं। इसमें इन महिलाओं की ट्रेनिंग की जा रही है हमारे वेंडर्स के माध्यम से, और फिर इन्हें इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है जिससे कि पूरा जो रूफटॉप सोलर का एक इकोसिस्टम है उसमें ये अपना वैल्यू एडिशन कर सके। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि शुरू में जब उपभोक्ता सोलर रूफटॉप को अडॉप्ट करते हैं तो उनके मन में एक स्वाभाविक सा एप्रिहेंशन होता है कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो इसमें हमारी रणनीति ये है कि हम अधिक से अधिक लोकल लोगों को इसमें जोड़ें जो कि पहले से अपने आसपास की कम्युनिटी से जुड़े हुए हों, तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी ज्यादा इफेक्टिव होगी और साथ के साथ में रोजगार भी।
1: जी, प्रदेश में सोलर पावर और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में निवेश आया था, इसको लेकर क्या काम किया गया, कितने प्रोजेक्ट धरातल पर अभी उतर आए?
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले कई जो भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं और GDC सेरेमनीज हुई हैं, इनमें निवेशकों ने विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अधिक उत्साह दिखाया है। अभी तक करीब 2.5-3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हैं जो उनका MOU हो गया है और GDC के लिए वो रेडी हैं। अभी हम GDC 5 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी आज की तारीख में 7,500 करोड़ की परियोजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पे बिल्कुल शुरू हो गई है।
1: आपने बताया कि बहुत सारी परियोजनाएं धरातल पे आ रही हैं, तो ये सोलर परियोजनाएं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं? साथ ही यह परियोजनाएं जो पर्यावरण और कृषि के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण होती है?
0: इसमें मेरा मानना है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो कई तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि समय के साथ में जैसे जैसे हमें अपना औद्योगिकरण बढ़ाना है और जिस प्रकार से AI और डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर उस पावर को हमें अचीव करना है तो ये जरूरी है कि हम पूरी तरीके से कन्वेंशनल एनर्जी पे अपने आप को सीमित न रखें बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास करते रहें। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी कोशिश है कि इस प्रकार से हम स्वावलंबी बने। इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े एनर्जी की नीड्स के लिए। और यदि हम पर्यावरण की बात करें तो निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी इसमें बहुत ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत प्रभावी है।
1: ये सोलर परियोजनाएं खासकर ग्रामीण परिवेश की अगर बात करूं तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से इस्तेमाल हो रही है और किसानों को इससे जोड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए?
0: किसानों को भी जोड़ने के लिए हमने PM किसुम स्कीम के तहत काफी प्रयास किए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था C1 कंपोनेंट के तहत तो सीधे ही हम किसानों तक इस स्कीम को ले जाते हैं और इसमें कई किसानों ने उत्साह दिखाकर इसको अडॉप्ट किया है जिससे कि जो उनके पंप होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, उनको वो सोलराइज कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये उनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। और इसके अतिरिक्त एक और कंपोनेंट भी है PM कुसुम स्कीम में C2, जिसके तहत हम पूरे एक फीडर लेवल पे सोलराइज करते हैं। तो उस फीडर से जिन जिन भी किसानों तक विद्युत पहुंच रहा है उनको भी इस बात में मदद मिलती है कि समय से और पर्याप्त ऊर्जा उन तक पहुंचे।
1: क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन वेंडर्स का आपने जिक्र किया, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके लिए भी क्या वेंडर्स को खास तौर पर ट्रेन किया गया है कि ये योजना खासकर PM सूर्यघर योजना सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो वेंडर्स हैं उनकी रीच को बढ़ाने के लिए काम किया?
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि PM सूर्यघर योजना केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न हो, इसलिए हमने अलग से इस ग्रामीण क्षेत्रों को भी चिन्हित किया था, टारगेट रखा था और हमने कोशिश की थी कि इसकी रीच अधिक से अधिक जगहों तक पहुंच सके। और इसके लिए हम रेगुलरली ट्रेनिंग कराते रहते हैं, अलग अलग जनपदों में हम अपना स्टाफ भी भेजते हैं जो वहाँ के वेंडर्स हैं, कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से बाकी सब वेंडर्स को ट्रेन किया जा सके। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे नेडा की तरफ से ही 3 प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जाते हैं जिसपे निरंतर हम सूर्य मित्रों का प्रशिक्षण देते रहते हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट और भी है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया जा सके, इसलिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी हमने कोलैबोरेट कर रखा है और UP स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ कोलैबोरेट करके हम

0: अधिक से अधिक सूर्य मित्रों के प्रशिक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: आपने बताया कि किस तरह से शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है सोलर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अयोध्या को सोलर सिटी की तरह विकसित किया जा रहा है, साथ ही अन्य किन जनपदों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्लान है?
0: हमारा सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें एक अयोध्या पे विशेष रूप से हम अधिक ध्यान दे रहे हैं और इसके साथ ही अन्य जनपद भी हैं। इसके तहत हमारा लक्ष्य ये है कि प्रत्येक नगर निगम में जो भी उनकी एनर्जी कंजम्पशन है उनको हम इतना फंड देते हैं राज्य सरकार के माध्यम से कि वो अपना एनुअल एनर्जी कंजम्पशन को 10% कम कर सके बाय शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है।
1: जब हम किसी शहर को सोलर सिटी कहते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, एक आम जनता को समझाने के लिए अगर जानना चाहें तो आप इसको किस तरह बताएंगे कि अयोध्या को अगर हम सोलर सिटी कहते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स?
0: हमारे अभी वर्तमान में पैरामीटर ये हैं कि प्रत्येक वर्ष हम जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको 10% कम करें कन्वेंशनल सोर्सेज से, और हमारा अंत में लक्ष्य ये रहेगा कि अधिक से अधिक जो एनर्जी कंजम्पशन है इन एरियाज का, अयोध्या का भी और अन्य नगर निगमों का भी, वो सोलर आधारित हो, जिससे कि ओवरऑल भी जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन एनर्जी डिमांड पैटर्न है उसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिले।
1: सोलर सिटी की तरह ही सोलर एनर्जी विलेज बनाने की भी प्लानिंग है। प्रयागराज में पहला सोलर एनर्जी विलेज बनाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि वो क्या है और उसमें किस तरह के काम किए जा रहे हैं।
0: हम प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सोलर विलेज भी विकसित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। इसमें भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक मॉडल सोलर विलेज के लिए 1 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हम DPR बनाने की अभी प्रक्रिया में है और इसमें हमने सोचा है कि DPR है वो बॉटम अप अप्रोच से हो, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ही ग्राम अपने रिक्वायरमेंट्स को, आवश्यकताओं को चिन्हित करे, जिसकी कहां कहां उन्हें स्ट्रीट लाइट लगानी है या फिर सोलर पावर प्लांट लगाने हैं, जिससे कि वो अपना स्वावलंबी बन सके और आत्मनिर्भर बने।
1: शहरों से लेकर गांवों तक सोलर सिटी बनाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा की उपलब्धियां किस प्रकार योगदान दे?
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2047 तक उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को विकसित बनाने का संकल्प है, इसको अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही हम अलग अलग कंपोनेंट्स पे जा रहे हैं। बेसिकली जो ओवरऑल हमारा पावर जनरेशन है और पावर कंजम्पशन है, हमारा लक्ष्य है कि उसे हम इस स्तर पर ले जा पाएं जिससे कि भारत को और उत्तर प्रदेश को विकसित बनने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी पूर्ति हम खुद से कर सकें।
1: जी, आपने बताया कि लगातार सोलर के क्षेत्र में काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन आप प्रदेश के उन परिवारों या संस्थानों को क्या संदेश देंगे जिन्होंने अभी तक सोलर को नहीं अपनाया है, उनसे आपकी क्या अपील होगी?
0: मेरी सभी लोगों से ये अपील होगी कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसके तहत भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा लाभ भी दिए जा रहे हैं और इससे जैसा कि मैंने पहले बताया लाखों परिवार हैं जिनका बिजली का बिल कम हो गया है। मेरी अपील होगी कि आप भी ज़रूर इसको अपनाएं और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप किसी से भी बात करेंगे जिन्होंने खुद ने ये सोलर पावर प्लांट अपने घर पे लगाया है तो निश्चित रूप से वो आपको खुद कन्विंस करेंगे कि ये बहुत ही अच्छी योजना है और इससे न केवल आपका खुद का बिजली का बिल बचेगा बल्कि हमारे प्रदेश को, देश को विकसित बनाने में भी आप अपनी तरफ से अपना योगदान दे पाए।
1: जी, निश्चित रूप से जिन लोगों ने अभी तक सौर ऊर्जा की महत्व को नहीं समझा है और सोलर पैनल्स नहीं लगवाए वो इससे प्रभावित होंगे और इसको जरूर अपनाएंगे और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे PM सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविन्द्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
4: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। ख्वातीनो हजरात, आज का उर्दू प्रोग्राम खराज तहसीन है जनाबे बशीर बद्र के नाम। समाज फरमाइए इस हवाले से एक खसूसी तमसीली प्रोग्राम, उनवान है जुगनू जो सितारों की महफिल में खो गया।

रहने को दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। दुनिया अदब का एक और चिराग खामोश हो गया, एक शोख जुगनू जो तारीख रातों को अपने अशार से रोशन और ताबनाक किए हुए था, अचानक हमसे बहुत दूर चला गया। इतनी दूर कि अब वहां से लौटकर आना भी मुमकिन नहीं। लेकिन वो तो हमेशा चहकने वाला बुलबुले खुशनवा था। उसकी खुशकलामी, उसके गुफ्तार से न जाने कितनी नस्लें फैजयाब हो रही थी। किसे अंदाजा था कि दुनियाए इल्म अदब पर बेपरवाह हुक्मरानी करने वाले डॉक्टर बशीर बद्र हमें यूं दागे मफारकत दे जाएंगे। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल से उर्दू अदब में एक अहद का खात्मा हो गया, एक ऐसा अहद जिसने तकरीबन 5-6 दहाइयों तक दुनिया अदब पर हुक्मरानी की है। अदब की महफिलें हों, आलमी और बैन अल-अक़वामी मुशायरे हों, डॉक्टर बशीर बद्र की शिरकत उस महफिल उस मुशायरे की कामयाबी के जामिन हुआ करती थी। डॉक्टर बशीर बद्र ने बड़े सलीके और शाइस्तगी के साथ आम इंसानों की जिंदगी के मसाइल को अशार के कालिब में ढाला है। बशीर बद्र के अशार की मकबूलियत का ये आलम है कि आवाम बड़े ज़ौक़ो शौक़ से उनके अशार को पढ़ते हैं, और जब कोई ये बताता है ये तो बशीर बद्र साहब के अशार हैं तो उसे ताज्जुब भी होता है और मसर्रत भी होती है कि उसे बशीर बद्र के शेर याद हैं। महफिलों में, मेलों ठेलों में, ऐवानों में, स्कूलों कॉलेजों में अपनी बात को बेहतरीन अंदाज से पेश करने के लिए बशीर बद्र के अशार कोट किए जाते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। डॉक्टर बशीर बद्र महबूब की बेवफाई में भी वफा के पहलू तलाश कर लेते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वो जमाने को ये मशवरा भी देते हैं, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। और उनका ये शेर, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो।

0: जहां मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई।
1: नमस्कार।

जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं।

मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद चट गई। चंद्रशेखर और दूसरी गजल के जैसे मैंने अर्ज किया था, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। सुनिएगा, कहीं

गई मैं चराब, कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। सुनिए भाई,

0: हरी झिझक गई
1: बशीर बद्र का असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। 15 फरवरी सन 1935 को कानपुर में पैदा हुए। उनका आबाई वतन फैजाबाद ज़िले का मौज़ा बकिया है। बशीर बद्र साहब के वालिद सैयद मोहम्मद नज़ीर महकमे पुलिस में मुलाजिम थे, लिहाजा उनके तबादलों की रेल एक जगह से दूसरी जगह चलती रही। बशीर बद्र ने तीसरी जमात तक कानपुर के हलीम कॉलेज में तालीम हासिल की। उसके बाद उनके वालिद का तबादला इटावा हो गया। वहाँ पर उन्होंने मोहम्मद सिद्दीक इस्लामिया कॉलेज से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। अभी उन्होंने हाई स्कूल का इम्तिहान पास आउट किया ही था कि एक सानहा उनके ज़िंदगी में पेश आया, जिसने उनके ज़िंदगी के शिराजे को बिखेर कर रख दिया। वालिद का इंतकाल हो गया।

0: मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी किराए के घर हैं बदलते रहे। नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के नए गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चराग हैं, इन्हें नफ़रतों की हवा न दे। कभी पा के तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, ये जन्म जन्म का रिश्ता तेरे मेरे दरमियाँ है। उदास आँखों से आंसू नहीं निकलते हैं, उदास आँखों से आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। जदीद गज़ल के इस माहिर ने ज़िंदगी के हर लम्हे को समेट लिया। बशीर बद्र के अल्फाज में तन्हाई और दर्द को शानदार वजाहत के साथ दर्ज किया गया। वो चुपते ज़रूर हैं, लेकिन दिल के एक कोने में महफूज हो जाते हैं। आम इंसान के ज़ख्म को ज़िंदगी बख्शने वाले शायर डॉक्टर बशीर बद्र अब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन दिल को छू लेने वाली शायरी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो जितने सादा थे, उनकी तहरीरें भी उसी तरह सादा और फितरी थीं। डॉक्टर बशीर बद्र की बहुत सी तख्लीकात का तर्जुमा हुआ और दुनिया भर में मशहूर हुए, मुतअद्दिद बड़े एजाजात से नवाजा गया। बशीर बद्र हमेशा खिंदा पेशानी लोगों से मिलते रहे। दुनिया को मेहमान खाना समझने वाले बशीर बद्र के इंतकाल पर उनके मद्दाह गमजदा हैं। उन्होंने बिलाशुबा एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जिसे जदीद शायरी का जौहर समझा जाता था। सच तो ये है कि बशीर बद्र एक ऐसे शायर थे जिनके अल्फाज जज्बात की गहराई से दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। बज़ाहिर तो डॉक्टर बशीर बद्र के ज़िंदगी की शाम हो गई, लेकिन उनकी यादों के उजाले अब भी हमारे साथ हैं। जुगनू जो सितारों की महफिल में खो गया, समझना भी आप डॉक्टर बशीर बद्र पर मबनी ये खसूसी तमसीली प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। तहरीर और आवाज़ थी मोहम्मद फर्रुख जमाल की, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
1: आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से 747 किलोहर्ट्ज़ पर। अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनेंगे राजेश त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं देवी गीत स्वर राजेश त्रिपाठी का।

जवन बात बा संवरकों में, अभी आपने राजेश त्रिपाठी के स्वर में खेमटा सुना। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग संपन्न होता है। आपको बता दें, राजेश त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीतों का आप आनंद ले सकेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। समय मिला लें, सुबह के 10 बजे हैं और ये समय है आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम का। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे मीनू खरे और रश्मि श्रीवास्तव के स्वर में देवी गीत। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है गांव नरहरपुर, पोस्ट सिमरी, पुरुषोत्तमपुर, जिला सुल्तानपुर से।

अभी आपने मीनू खरे और रश्मि श्रीवास्तव के स्वर में देवी गीत सुना और अब आइए सुनते हैं डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में कहरा। इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है देवरी भाटापारा से गनुलाल, के आर साहू, अश्विनी, गणेश। भाटापारा से पत्र आया है दान सिंह रावत, पद्मिनी, शुभम, सौरव रावत का।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में कहरा। इसी के साथ आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप पुनः सुन सकते हैं आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम सुबह 10:20 से 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के 2 ड्रोन नष्ट किए। रूस के अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को अप्रत्याशित बताया। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में

0: इस संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अमेरिका की सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले ईरान के दो ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सैन्य कमान ने बताया है कि अमेरिकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान की ड्रोन गतिविधि की खबरों के बाद अमरीकी बलों के केशम द्वीप और गोरुख में ईरानी रडार और निगरानी स्थलों को निशाना बनाने के कुछ घंटों बाद हुए। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति के लिए प्रयास करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कल ईरान पहुंचे। हाल के हफ्तों में ये उनकी ईरान की तीसरी यात्रा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रूस के अधिकारियों ने यूक्रेन में सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर हमले को अप्रत्याशित बताया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए। एक रिपोर्ट।
3: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा का भी कार्यक्रम है। इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के प्रवक्ता ने बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने नागरिकों के मारे जाने के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। अमेरिका में कल रात ओहियो में टोलेडो में सामुदायिक गली महोत्सव के पास कई लोगों को गोली मार दी गई। संदिग्धों की तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस को ओल्ड वेस्टर्न फेस्टिवल के पास गोलीबारी की सूचना मिली। सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर

0: रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
1: खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झागसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो काबुली आमने सामने होंगे। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। कल फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा पोलैंड की माया चवस को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 1992 में 18 साल की मोनिका सेलिस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उलान बतार ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने भार वर्ग में कल स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 6 और पदक अपने नाम किए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में तामिर मुखबंद को 15-4 से हराया। वहीं 22 वर्षीय जयदीप ने मुखबंद को पराजित किया और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर उसके जीत हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला कुश्ती में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में 18 साल की काजल ने फाइनल में नाइजीरिया की अफ्रीकी चैंपियन दामोला उजा को 8-0 से हराकर 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी पहलवान प्रिया मलिक ने इसी वर्ग में मंगोलिया की तुवशिन जारगल ताराव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। जापान के काकामिगाहरा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के 2 ड्रोन नष्ट किए। रूस के अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के ड्रोन हमले को अप्रत्याशित बताया। फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला फ्लेविओ काबुली से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में। और अब हम आपको सुनवाएंगे रश्मि चौधरी के स्वर में लोक भजन। इसे सुनना चाहा है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ प्रदेश से सविता, स्वाति, राहुल, शंकरलाल, रामचंद्र माखीजा और बेबी स्वाति माखीजा ने।

बनोसा दरियापुर महाराष्ट्र से राजेश चव्हाण, संदीप किशोर और सचिन चव्हाण ने पत्र भेजा है और ये सभी सुनना चाहते हैं विवेकानंद व्यास के स्वर में विदेशिया।

दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से हमें पत्र भेजा है और श्रोता हमारे हैं विमल वर्मा, संदीप, प्रदीप अनंत, नीतू वर्मा, प्राचीने और आप सभी सुनना चाहते हैं विवेकानंद दिग्विजयनाथ सिंह के स्वर में पूर्वी।

ग्राम कैथनपुरवा पोस्ट सातनपुरवा जिला मेठी उत्तर प्रदेश से हमें पत्र भेजा है शीतल तरंग अर्जुन सिंह शिव बख्श और प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने और आप सभी सुनना चाहते हैं संजोली पांडे के स्वर में खेमटा।

आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हमें पत्र भेजा है मुकेश रानी, कुसुम पलक, पंखुरी और उनके परिवार के सदस्यों ने, और आप सभी सुनना चाहते हैं वंदना मिश्रा के स्वर में मेला गीत।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पत्र आया है हरदेव बलविंदर जयतेग मीका बिरक्का और आपने फरमाइश की है अक्रम अंजाना के स्वर में छप रहिया सुनने की।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं पूजा तोमर के स्वर में ये नकटा, जिसे सुनना चाहते हैं एडवोकेट वारिस अली खान, डॉक्टर शहनाज खान, डॉक्टर सलीम अहमद, मोहम्मद दानिश खान, मोहम्मद समीर खान और बेबी नुसरा, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से।

0: अभी आप सुन रहे थे ये गंगा गीत संजू मिश्रा के स्वर में। इसे सुनना चाहा था महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। इसके साथ ही आज का आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आरंभ करें इसके पहले हम आपको अपना फ़ोन नंबर बता दें। हमारा फ़ोन नंबर है 2238825। हमारे सभी श्रोता इस फ़ोन नंबर से परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम आपको फ़ोन इसलिए बता दे रहे हैं कि जो हमसे नए श्रोता जुड़ें वो हमें फ़ोन कॉल कर सकें और हमसे बातें कर सकें, अपने मनपसंद फिल्मी गीत सुन सकें। तो हमारा फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लीजिए, 2238825 2238825। और लखनऊ का एसटीडी कोड नंबर, यहाँ का एसटीडी कोड नंबर है 0522, इसको लगाना मत भूलिएगा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहा है?
1: जी हम फतेहपुर जिला से जितेंद्र पाल बात कर रहे हैं। सर जी नमस्ते।
0: नमस्कार जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है
1: जी? हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।

0: भाई, आप लोगों से जब बात करने का अवसर मिलता है तो बढ़िया से बहुत बढ़िया हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही है
0: क्या
1: जी।
0: करते हैं पाल जी?
1: हम तो किराने की दुकान करते हैं और आपके कार्यक्रम को सुनते रहते हैं।
0: हमारे किन
1: और
0: कार्यक्रमों को आप सुनते हैं?
1: जी हम तो दुकान पर सुबह पर रेडियो चालू कर लेते हैं और हमारी दुकान पर रेडियो चालू ही रहता है जब तक दुकान 9:30 बजे तक खोले रहते हैं, तो
0: जी,
1: रेडियो के कार्यक्रम को हम सुनते ही रहते हैं।
0: तो आपको आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: जी, हम इसी को मतलब सुनते रहते हैं लखनऊ।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। और आप इसके अलावा कोई आपकी रुचि, कोई हॉबी?
1: जी क्रिकेट देखना
0: जी,
1: और मूवी जिसे देखना है, गाने सुनना, बस ऐसे तो हैं जी।
0: तो क्रिकेट में आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन से हैं?
1: हार्दिक पांड्या
0: क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो
1: जी।
0: आज क्या गीत सुनेंगे बताइए।
1: वो गाने के बोल हैं, तेरे मेरे प्यार का हो गया कल ऐलान, ऐसे करके गाने के बोल हैं।
0: जी, चलिए, फिल्म लाल टोपी, काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत है, इसको हम लोग मिलकर
1: और
0: के
1: कुछ
0: सुनते
1: नाम ले
0: हैं।
1: सकते हैं?
0: हाँ बोलिए
1: सबसे पहले तो आप हैं
0: जी। थैंक यू।
1: और हमारे बेटा सिंह यादव जी हैं, रोहित भाई हैं, ओमकार भाई हैं, मलकाई से फूलचंद पाल जी हैं, सुनील भाई हैं, दिनेश पाल जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, प्रेमचंद निर्मल जी हैं, और हमारा भतीजा दिवेश पाल है, और हमारे बड़े भाई सुहास पाल हैं, और हमारी बहन प्रिया देवी, गुड़िया देवी, प्रतिमा देवी, और बस हो गए। और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों के लिए।
0: चलिए, आप सभी लोग को ये गीत डेडिकेट करते हुए सुनते हैं हम सब लोग इसको मिलकर के।
1: जी सर,
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा। ये देखते हैं कि अगले कॉलर हमारे कौन हैं जिनसे हमें बात करनी है। हेलो,
1: हाँ सर, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: सर अंजनी कुमार, पलिया मसूरपुर, बाराबंकी से।
0: मंजनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है?
1: सर हाल चाल बढ़िया है।
0: और गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: अरे गर्मी के सर हाल मत पूछिए, गर्मी बहुत है।
0: भाई पूछ,
1: और
0: हाल तो पूछना ही पड़ेगा ना।
1: जी
0: जी बताइए। तो
1: आज
0: जी
1: हमारे एक मित्र हैं,
0: जी
1: हमारे दोस्तों के मित्र, हम सभी के मित्र, हमारे भी मित्र
0: हम
1: हर्ष जी हैं,
0: जी
1: तो आज उन

0: पड़ रही है
1: अरे गर्मी के सर हाल मत पूछिए, गर्मी बहुत है।
0: भाई। पूछ
1: और
0: हाल तो पूछना ही पड़ेगा
1: जी
0: ना जी बताइए तो
1: आज
0: जी
1: हमारे एक मित्र हैं,
0: जी
1: हमारे दोस्तों के मित्र, हम सभी के मित्र, हमारे भी मित्र हर्ष जी हैं, तो
0: जी
1: आज उनका जन्मदिन है।
0: वाह क्या बात है भाई, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
1: हाँ, तो सर मैं अपने सभी दोस्तों की तरफ से मैं
0: जी
1: नाम लेना चाहूंगा अपने दोस्तों का, और उनको एक गाना सुनवाना चाहूंगा आपके स्टूडियो के माध्यम से, आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, हमारे पीयूष वर्मा जी हैं
0: जी
1: कुरौली से, और नवीन जायसवाल जी हैं बाराबंकी से, अर्जुन यादव जी हैं, और राम दुलारी पटेल जी हैं, और आदर्श वर्मा जी हैं, बलवंत भाई हैं। हम सभी उनको एक गाना सुनाना चाहते हैं,
0: गाना कौन सा है?
1: सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा।
0: चलिए दोस्ताना सलामत भी रहना चाहिए, दुश्मन चाहे कितने भी बनते रहें कोई बात नहीं। चलिए ये गाना हम आपके दोस्तों और आपके लिए प्ले करते हैं, सुनिए इसको और
1: जी
0: आनंद लीजिए।
1: बहुत बहुत
0: ऐसा
1: धन्यवाद
0: हमें
1: सर।
0: कॉल करते रहिए इसी तरह, धन्यवाद बहुत बहुत।

0: कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और मिलते हैं अगले कॉलर से। हेलो,
1: मेरा नाम बसंत कुमार है, ग्राम पोस्ट पैकेट जिला सीतापुर से।
0: जी बसंत जी, कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए।
1: जी सर, बहुत बढ़िया है सर जी, और आपका प्रोग्राम सुन रहे थे सर
0: जी।
1: और जो है सुबह से शाम तक जो प्रोग्राम आपके यहाँ के आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होते हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, इनका ज्ञानवर्धक जानकारी से इसकी मिलती है और सुनते रहते हैं सर।
0: जी जी जी जी तो बसंत जी, वैसे आप करते क्या हैं?
1: जी हम जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और
0: जी जी
1: पर फिर जो है तैयारी करते हैं, पेपर वगैरह देते थे, फॉर्म वगैरह भरते थे।
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ सर जी, मेरी निगाह में क्या बनके आप रहते।
0: चलिए आपका गीत ये सुनते हैं मिल करके, हमें ऐसे कॉल करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2238825, और लखनऊ के बाहर के श्रोता यहाँ का STD कोड नंबर लगाना ना भूलें, जो कि है 0522। चलिए मिलते हैं अगले श्रोता से। हेलो,
1: हेलो,
0: कौन बोल रहा है?
1: नवीन बाराबंकी से बात कर रहा हूँ सर।
0: नवीन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप नवीन जी?
1: सर पत्रकार हूँ बाराबंकी से।
0: अच्छा, यानी कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: तो नवीन जी, आजकल मौसम कैसा है?
1: सर मौसम तो बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे।
0: गर्मी तो हो रही है इस समय। मुझे लगता है पूरा उत्तर भारत वर्ष जो है इस समय गर्मी की चपेट में है। तो क्या दिनचर्या है आपकी गर्मी के इस मौसम में? कैसे आप लोग अपने न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करने जाते होंगे?
1: सर न्यूज़ पत्रकार का तो यही काम है, चाहे दिन हो चाहे धूप हो चाहे पानी गिरे, जाना ही है सर।
0: तो बड़ा कठिन काम करते हैं आप लोग। और
1: जी जी
0: इसके अलावा क्या क्या हॉबी रखते हैं, क्या रुचियां हैं आपकी?
1: सर सिंगिंग का शौक है अपना,
0: अच्छा, गाना।
1: और बाकी घूमने का बहुत बड़ा शौक है।
0: अरे वाह, कहाँ कहाँ घूम करके आ गए इस गर्मियों में? कहीं गए नहीं घूमने?
1: अभी सर नहीं गए हैं, 10 दिन बाद जाना है।
0: 10 दिन बाद किधर जा रहे हैं?
1: इधर सर हिमाचल की तरफ जा रहा हूँ।
0: अच्छा, चलिए। उस समय तो बारिश शुरू हो जाती है पहाड़ों में। लोग कहते हैं कि भाई पहाड़ों में जाना नहीं चाहिए जब बारिश शुरू हो,
1: जी जी जी
0: तो फिर आप लोग ऐसा रिस्क क्यों लेना चाह रहे हैं?
1: सर वहाँ पे एक तीर्थ स्थान है
0: अच्छा,
1: ज्वाला देवी का, तो
0: ओके,
1: वहीं पे सर जाना है।
0: अच्छा, माता रानी के दर्शन करने जाना चाह रहे हैं आप?
1: जी जी
0: चलिए,
1: जी
0: आज
1: जी
0: कौन सा गीत सुनेंगे ये बताइए अब आप।
1: सर एक देश प्रेमी का गाना है,
0: जी
1: नफरत
0: जी
1: की लाठी तोड़ो,
0: जी जी जी जी जी
1: सर इसी को डेडिकेट करना चाह रहे हैं।
0: हाँ, कर
1: हमारे
0: दीजिए।
1: हर्ष पाठक जी हैं जिनका आज जन्मदिन है।
0: जी
1: हाँ, तो इसमें सर सुनना चाहते हैं
0: जी,
1: ये अजय त्रिपाठी जी हैं हमारे थाना अध्यक्ष हैं, और थाना अध्यक्ष अमर चौरसिया जी हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं रामजतन यादव जी,
0: जी
1: और महिला थाना से मुन्नी मैडम हैं, और CO सिटी विकास चंद्र पाठी जी हैं, सौरभ श्री

0: श्रीवास्तव जी हैं, पीयूष वर्मा हैं, नवीन जायसवाल हैं, अंजनी भैया हैं, अर्जुन यादव हैं, राहुल गुप्ता हैं, आदर्श वर्मा हैं, अखिलेश कुमार हैं, शिवम मिश्रा, विकास दुबे, आलोक पाठक, बलवंत सिंह, अनिल कुमार, वीरेंद्र कुमार, विनय कुमार और राम दुलारी पटेल।
1: मुझे लगता है कि आज मुझे लगता है कि आज आपकी पहली बार कॉल हुई है, तो आपने किसी का नाम छोड़ा नहीं, इसका मतलब है।
0: जी सर।
1: तो चलिए आपका मिलकर के गाना सुनते हैं, बहुत बेहतरीन गाना चुना है आपने, इस गाने को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉल ऐसे करते रहिएगा।
0: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा। चलिए मिलते हैं अगले कॉलर से। हेलो, कौन बोल
1: हेलो,
0: रहा है?
1: अशोक कुमार सिंह,
0: जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी?
1: फतेहपुर बारामकी से। मैं
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या करते हैं अशोक जी?
1: शिक्षक
0: अच्छा, टीचर हैं आप। इसके अलावा कोई काम
1: हूँ।
0: और कोई रुचि, हॉबी?
1: हाँ, इसके पहले मैं कंपनी ऑनर था होमगार्ड डिपार्टमेंट में, जनपद बारामकी में।
0: अच्छा,
1: और
0: तो
1: हाँ,
0: आपने
1: उसके
0: अपनी
1: बाद
0: आपने नौकरी स्विच की?
1: मैं टीचर हुआ,
0: जी
1: और टीचर होने के बाद थोड़ा लगाव संगीत से रहता है।
0: जी
1: तो आपके जो कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम चूंकि जवानों के लिए भी होते हैं और सबके लिए होते हैं, तो प्रयास रहता है कि कोई ना कोई कार्यक्रम सुना जाए।
0: जी
1: तो इसलिए जो है फोन करते हैं कि जो है कोई ना कोई अपना गीत जो है, क्योंकि हमारे कई साथीगण चाहते हैं कि हमारे माध्यम से जो है गीत सुन लिया जाए। बैठे हैं कई लोग, तो
0: जी
1: वही गीत सुनना चाहते हैं हम लोग।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: राम तेरी गंगा मैली का सुनसा भाषण।
0: जी, चलिए तो आपका ये गीत सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का। बहुत
1: जी,
0: बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आप कॉल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू, थैंक यू।

0: देखते हैं अब कौन अगले कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो
1: सर, नमस्ते सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: सर अमरनाथ बोल रहा हूँ। अमरनाथ,
0: अमरनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? ये
1: सर बलिया से बोल रहे हैं।
0: बलिया से, अरे वाह। तो यादव जी क्या कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: सर एक गाना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कैसी करनी।
0: अच्छा, ये लता मंगेशकर जी का जो गाया हुआ फिल्म आंखों का गाना है, आंखें का है ना? कैसा मौसम है आज बलिया में?
1: बलिया में सर गर्मी भी है, गर्मी है बहुत
0: ज़्यादा गर्मी हो गई है।
1: जी।
0: तो आज आपको आपका पसंद का गीत सुनवाया जाए फिर। तो गर्मी का आनंद ले रहे हैं आप?
1: हाँ, पेड़ के नीचे बैठे हैं सर, यहीं बगीचे में। लाइट थोड़ा कम रहती है गांव पे, जान ही रहे हैं, गांव आए हैं छुट्टी में।
0: जी जी,
1: बगीचे में बैठे हुए हैं।
0: जी जी जी,
1: गांव के भी लोग बैठे हैं सर, तो लोगों ने कहा कि पुराना गाना है, इसी को सुना जाए।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका फोन मिला, सबसे पहली बात तो ये है, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मिलकर सुनते हैं आपका गीत।
1: बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे आपका कार्यक्रम आता है फौजी भाइयों वाला।
0: जी जी जी, जवानों के लिए।
1: हाँ जवानों के लिए
0: जी,
1: वो सब भी हम लोग सुनते रहते हैं सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे श्रोता ऐसे बने रहिए। चलिए आज आपका जो गीत आपने बोला है उसको सुनते हैं मिलकर के हम सभी लोग, ठीक है?
1: जी जी
0: ओके, ऐसे हमें कॉल करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी सर, थैंक यू।

0: चलिए मिलते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो,
1: हेलो,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं पीयूष शर्मा बोल रहा हूँ, लखनऊ से, मटियारी से।
0: जी पीयूष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है पीयूष जी?
1: बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। कैसा इस समय मौसम कैसा है?
1: मौसम ठीक है, आज थोड़ी धूप है।
0: हाँ,
1: ये थोड़ा ठीक ही ठाक है, पर लेकिन ये आशा करते हैं कि शाम तक अगर बारिश हो जाए बहुत अच्छा होना हो जाएगा, पर अभी तो खैर धूप है।
0: टेम्परेचर इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या रुचियां हैं?
1: हॉबी सर वही समाज सेवा करना, लोगों के लिए एक अच्छा सेवा भाव रखना, बस
0: जी
1: यही है। बाकी ये रहता है कि अच्छा अच्छा कोई और भी जन कल्याण का कार्य करना, ये
0: जी
1: हॉबी यही है। बाकी कभी कभार लेख वगैरह भी लिख देता हूँ।
0: यानी कि आप लेखक भी हैं।
1: हाँ सर, बिल्कुल।
0: तो ये बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज सर एक तिरंगा फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा।
0: जी,
1: और
0: बहुत
1: बाकी मैं दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा,
0: हाँ लीजिए।
1: हमारे दोस्त बाराबंकी में है, एक आदर्श वर्मा जी है उजवारा पुरवा के, एक अंजनी जी है पलिया मशहूरपुर के, एक डलिया के रहने वाले मनोज जी हैं, एक आलापुर गांव पड़ता है यहाँ पर, वहाँ के एक अकील भाई हैं हमारे, एक अनिल यादव जी हैं बबुलिया के, और
0: जी,
1: बहुत सारे दोस्त हैं, इसी में आपको अपने नाम भी शामिल है।
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपका ये गीत मिल करके सुनते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आइए मिलते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो, देखिए जब तक हम मुलाकात करते तब तक इनका फोन कट गया। कोई बात नहीं, चलिए एक गीत सुनते हैं और उसके बाद कॉल लेने का प्रयास करते हैं।

0: मिलते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं निशा अंसारी तिलकपुर जिला बाराबंकी से बोल रही हूँ।
0: स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। निशा जी, क्या करती हैं?
1: जी, मैं सिलाई करती हूँ, हथकरघा चलाती हूँ।
0: अच्छा, यानी कि आप जो है कपड़े बुनने का काम करती हैं।
1: जी हाँ, गमछा बनाते हैं।
0: अच्छा वाह, क्या बात है। तो ये सूती गमछे होते हैं या कुछ और कपड़े के?
1: जी, सूती गमछे हैं।
0: अच्छा, तो यानी कि गर्मी में राहत देने वाले काम आप करती हैं। तो आप हमारे कार्यक्रम सुनती हैं?
1: जी हाँ, बहुत सुनते हैं
0: बहुत सुनते हैं। कौन से कार्यक्रम आपको पसंद है हमारे?
1: जी। आप तो इधर 4-5 दिन से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, FM पर जब प्रसारण होता था तब सुनते थे ऊपर।
0: अच्छा, तो यानी कि आपको जो हमारे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें ये अच्छा लगता है।
1: जी हाँ, बहुत अच्छा लगता
0: तो
1: है।
0: निशा जी, आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आज हमें जरूर सुनना है, तुमका नहीं देखा मूवी का।
0: भीड़ में तनहाई में।
1: जी हाँ, क्योंकि FM और विविध भारती मेरे FM पर, रेडियो पे नहीं बज रहा इस टाइम 3 तारीख से।

0: क्यों,
1: बहुत याद आ रही।
0: चलिए कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हमारा कार्यक्रम आपके साथ है, तो आपका ये गीत हम प्ले करें।
1: जी मैं नाम लेना चाहती हूँ तो।
0: हाँ तुरंत लीजिए।
1: जी एक है सलीला से गलत सिद्दीकी और लखीमपुर से साहिब अंसारी साजी अंसारी जितने लोग सुने सभी को।
0: चलिए चलिए मिलते हैं, मिल करके सुनते हैं आपका ये गीत, बहुत बेहतरीन गीत आपने चुना है। कॉल करते रहिएगा, धन्यवाद।

0: और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, कौन बोल रहा है?
1: सुरेंद्र कुमार वर्मा बोल रहे हैं।
0: वर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं आप?
1: सर, ये हम पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं और खेती बाड़ी का भी काम देखते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, आप तो लोगों की सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाते हैं और आवश्यक जितनी भी सूचनाएं होती हैं लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ना।
1: जी,
0: तो सुरेंद्र जी, आकाशवाणी के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं?
1: बहुत अच्छे लगते हैं सर, और बचपन से हम आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: और हमें गाना सुनने का और रेडियो सुनने का बहुत ही शौक है।
0: अच्छा, तो कितने कितने सालों से आप ये सुन रहे हैं, लगभग कितने साल हो गए होंगे सुनते हुए आपको ये गीत?
1: सर, ये मान लीजिए कि जब से मैंने होश संभाला है पिताजी के जमाने से,
0: जी,
1: और होता ये था कि घर में जब रेडियो होता था तो कोई इधर को खींच रहा है, कोई उधर को खींच रहा है, सब अपने अपने जाते थे।
0: तो
1: तो
0: अभी
1: मेरा
0: आपके
1: था कि
0: पास,
1: इसमें हम भी पा जाए।
0: तो आपके पास रेडियो है अभी भी?
1: हाँ, अभी भी इस समय भी मौजूदा मुझे मेरे पास सेल वाला ट्रांजिस्टर है, उसको मैं बाकायदा सुनता रहता हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है। देखिए, समय बहुत कम है, ये बताइए कौन सा गीत आपको सुनवा दें हम?
1: सर, गीत मुझे सुना दीजिए, मेरा गांव मेरा देश शुरू का है, सोना ले जा रहे चांदी ले जा रहे।
0: तो चलिए आज आपका गीत सुनते हैं, बातें फिर कभी और होंगी, हमें ऐसे ही कॉल करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद सर।

और इस गीत के साथ ही आज का कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल मंच।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को जय हिंद। दीदी नमस्ते।
1: सभी बाल दोस्तों को हमारा भी जय हिंद। देविका नमस्ते। आ जाइए अपने रेडियो सेट के और पास या बढ़ा लीजिए वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल मंच।
0: स्वागत है आप सभी का।
1: और देविका क्या हाल चाल है?
0: सब ठीक है दीदी।
1: मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, आपका चेहरा उतरा हुआ है, लगता है बीमार हो।
0: जी दीदी, वो परसों मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी।
1: अरे क्या हो गया था?
0: कुछ नहीं, बस मैंने बाहर का खाना खाया था, वो मुझे नुकसान कर गया।
1: ओह, हो सकता है वो खाना खराब हो।
0: पता नहीं दीदी, हो सकता है ऐसा ही हो।
1: पता है देविका, सभी सुरक्षित भोजन करें यही बताने के लिए हर साल 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं।
0: जी दीदी, मैंने भी पढ़ा है ये दिवस 2019 से मनाया जा रहा है।
1: हाँ देविका, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों को कम करना है। खेत से थाली तक पहुंचने वाला भोजन हर स्तर पर सुरक्षित रहे, इसके लिए सबको जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
0: मतलब हमको ये जानना होगा कि हमारा खाना कितना सुरक्षित है।
1: बिल्कुल। और पता है इस साल इस दिवस की थीम है बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन।
0: जी दीदी, मतलब जो खाना हम खाते हैं, जब से उगाया जाता है और हमारे पेट तक पहुंचाया जाता है, वो पूरा प्रोसेस सुरक्षित होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही समझा। जब अन्न को खेतों में उगाया जाता है तो कम रसायनों कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग किया जाए।
0: और दीदी, जब खाना बनाया जाए तो उसे बनाते समय स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही देविका, कहा जाता है बना हुआ भोजन 2 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, बाद में वो खाने लायक नहीं रहता।
0: लेकिन दीदी, हम लोग तो उसे बार बार गर्म करके खा लेते हैं।
1: यही नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें उन फलों सब्जियों को भी नहीं खाना चाहिए जो बेमौसम मिलते हैं।
0: जी दीदी, मैंने पढ़ा है उन पर हानिकारक केमिकल्स की परत चढ़ाई जाती है जिससे वे ताज़ा दिखें।
1: हाँ, और जो उन्हें खाता है वो बीमार हो जाता है।
0: जी, तो हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए।

0: बेमौसम वाले फल सब्जियां नहीं खानी चाहिए।
1: बिल्कुल, साथ ही जब हम खाना खाएं तो अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें। जहां हम खाने जा रहे हैं वो जगह और बर्तन भी साफ होने चाहिए। खाना हम घर पर खाएं या बाहर या शादी पार्टी में, हमें ये जरूर देखना है कि वो कैसे बनाया गया है। बाहर खाते समय तो जरूर इस बात को ध्यान रखना है, तभी हर जगह सुरक्षित भोजन की बात पूरी हो पाएगी।
0: जी दीदी।
1: देविका, अभी आधी बात रह गई, बोझ से समाधान तक।
0: मतलब दीदी?
1: मतलब जरा सोच कर देखो, जब हम दूषित भोजन खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और जब बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। इस तरह हमारी पॉकेट पर बोझ पड़ेगा। हमारे देश में या कहें पूरे संसार में इससे पैसे की बहुत बर्बादी होती है।
0: अच्छा दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
1: यही तो सोचना होगा, तभी तो समाधान निकल पाएगा।
0: बिल्कुल दीदी, आज से ही हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। सुरक्षित भोजन, स्वस्थ तन मन, तभी हो पाएगा।
1: बिल्कुल देविका। अच्छा सोचो, अगर तुम्हें भूख लगी हो और खाना न मिले तो?
0: मत पूछिए दीदी, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। मैं तो मम्मा के आगे पीछे घूम घूम कर यही गाऊंगी।

0: वाह देविका, जब आप मम्मी से ऐसे अंदाज में खाना मांगोगी तो मम्मी तो आपको अपना मनपसंद खाना बनाकर खिलाएंगी।
1: जी दीदी बिल्कुल, मेरी मम्मी मुझे चाहे जितना डांटे लेकिन खाना तो मेरी पसंद का ही खिलाती हैं।
0: अच्छा देविका, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साफ ताज़ा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए।
1: स्वस्थ मनोरंजन मतलब दीदी?
0: मतलब ऐसा मनोरंजन जिससे हमें ज्ञान भी मिले, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले। ऐसी ही मनोरंजक ज्ञानवर्धक जानकारियां भारत के जन जन तक पहुँचाने का काम 90 सालों से कौन कर रहा है?
1: हमारी आकाशवाणी।
0: बिल्कुल सही, तो आकाशवाणी @90 के अंतर्गत हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है घर घर की आवाज, और ये कहानी सुना रहे हैं डॉक्टर हेमंत कुमार श्रीवास्तव भैया।
2: नित्या और नेहा गर्मी की छुट्टियों में अपने प्रेम बाबा के घर इलाहाबाद आई हुई थीं। यहाँ पर तो उनके मजे ही मजे थे। मजे इसलिए कि प्रेम बाबा का घर इतना बड़ा था कि पूछना ही क्या। 5 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर। मकान में आगे की तरफ खूब बड़ा सा लान भी था। लान में तरह तरह के पौधे लगे थे। उनके बीच में एक अमरूद का बड़ा सा पेड़ भी था और ऊपर पहली मंजिल पर कमरों के साथ बड़ी सी छत थी। अब इतने बड़े मकान में दौड़ते दौड़ते दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी करते उनके पांव थक जाते, और थकने के बाद बाकी बच्चे तो छोटी सी नित्या के साथ लान की हरी घास पर बैठते, लेकिन नेहा अमरूद के पेड़ पर चढ़कर किसी नीचे की मोटी डाली के सहारे बैठ जाती। कभी कभी वो उस पर लगे कच्चे अमरूद

भी तोड़कर बच्चों को खिलाती थी। वैसे प्रेम बाबा का पूरा नाम था प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मोहल्ले का हर व्यक्ति उन्हें सम्मान से प्रेम बाबू कहता था। तो उनकी देखा देखी बच्चे भी उन्हें प्रेम बाबा कहने लगे। अरे हाँ, मैं नेहा नित्या और उनके दोस्तों के बारे में तो बताना भूल ही गया। नेहा कक्षा 7 में पढ़ती थी, नित्या अभी स्कूल नहीं जाती थी, और प्रेम बाबा के घर के बगल में ही रहती थीं ईशा और मीशा। जैसे ही ईशा मीशा को पता चलता कि नेहा नित्या लखनऊ से आई हैं, वो अपने छोटे भाई बाबू को लेकर भागी चली आती। बस शुरू हो जाती इनकी धमाचौकड़ी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आंगन में तो कभी लान में। आज भी रोज की तरह सभी बच्चे सुबह से धमाचौकड़ी करते करते जब थक गए तो अमरूद के पेड़ के नीचे खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। उसी समय घर के अंदर से दादी की आवाज आई, नेहा नित्या ईशा मीशा चलो बेटा नाश्ता बन गया है, आज तुम लोगों की पसंद का आटे का हलवा भी बना है। अरे वाह, आटे का हलवा, चलो जल्दी।

पढ़ती थी, नित्या अभी स्कूल नहीं जाती थी, और प्रेम बाबा के घर के बगल में ही रहती थी ईशा और मीशा। जैसे ही ईशा मीशा को पता चलता कि नेहा नित्या लखनऊ से आई हैं, वो अपने छोटे भाई बाबू को लेकर भागी चली आती। बस शुरू हो जाती इनकी धमाचौकड़ी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आंगन में तो कभी लान में। आज भी रोज की तरह सभी बच्चे सुबह से धमाचौकड़ी करते करते जब थक गए तो अमरूद के पेड़ के नीचे खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। उसी समय घर के अंदर से दादी की आवाज आई, नेहा नित्या ईशा मीशा चलो बेटा नाश्ता बन गया है, आज तुम लोगों की पसंद का आटे का हलवा भी बना है। अरे वाह, आटे का हलवा, चलो जल्दी सब लोग भीतर, नेहा चहक कर बोली, क्योंकि उसे दादी के हाथों बनाया गया आटे का हलवा बहुत पसंद था। सारे बच्चे तेजी से रसोई की तरफ दौड़ पड़े। अंदर दादी जी सारे बच्चों की नाश्ते की प्लेट सजाकर बैठी थीं। प्लेट में आटे के हलवे के साथ पोहा और एक एक मूंग दाल का चिल्ला भी था। अरे वाह, इतना सारा नाश्ता, खाने में मजा आ जाएगा, ईशा चहक पड़ी। चलो चलो सब लोग अपनी अपनी प्लेट उठाओ और बड़े कमरे में बाबा के पास जाकर बैठो, मैं वहीं तुम लोगों के लिए मट्ठा लेकर आती हूँ, दादी बड़े प्यार से बोली। सारे बच्चों ने तो अपनी प्लेटें उठा ली, पर बाबू चुपचाप खड़ा रहा। बाबू, तुमने अपनी प्लेट नहीं उठाई? दादी ने पूछा। आपने नेहा नित्या ईशा मीशा सबका नाम लेकर पुकारा, पर मुझे तो बुलाया ही नहीं, इसलिए मैं नाश्ता नहीं करूँगा, बाबू रूठे स्वर में बोला। ओहो, तो इसलिए बाबू बेटा नाराज है? चलो बेटा, तुम तो मेरे सबसे लाडले हो, जल्दी से उठाओ अपनी प्लेट, दादी बाबू को प्यार करते हुए बोली, और बाबू भी अपनी प्लेट लेकर सब बच्चों के पीछे चल दिया। जब सारे बच्चे अपनी अपनी प्लेट लेकर बड़े कमरे में पहुंचे तो वहां का नज़ारा ही कुछ अलग था। बच्चों ने देखा कि प्रेम बाबा दो तीन बड़े छोटे प्लास्टिक के डिब्बे पलंग पर फैलाकर उनकी जल्दी जल्दी सफाई कर रहे थे। उन प्लास्टिक के डिब्बों में जाली और दो तीन छोटे छोटे बटन लगे थे। बच्चों को लगा कि ये शायद कोई मशीन है जिसे बाबा साफ कर रहे हैं। सारे बच्चे प्रेम बाबा को घेर कर खड़े हो गए। नेहा ने तुरंत पूछा, बाबा आज सवेरे सवेरे ये आप क्या फैला कर बैठ गए हैं, ये क्या कोई मशीनें हैं प्रेम बाबा? अब बाबू ने भी एक प्रश्न दाग दिया, भला छोटी सी नित्या क्यों चुप रहती? उसने भी अपनी तोतली जुबान में पूछने की कोशिश की, प्रेम बाबा इच्छे त्या आप जादू दिखाएं दे हम लोगों तो। बाबा अभी तक सारे बच्चों की बातें सुनकर रुके हुए थे, लेकिन नित्या की तोतली बोली सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने काम छोड़कर नित्या को गोद में उठा लिया और अपने पास बैठाकर उसी की नकल करते हुए बोले, अले भाई मैं तुम लोगों को छप बताऊंगा, पहले चटाई पर बैठ कर अपना अपना नाश्ता तो तल लो। प्रेम बाबा की तोतली बोली सुनकर सारे बच्चे भी ठहाका लगाकर हंसने लगे। सब जाकर जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। उसी समय दादी वहां बाबा का और अपना नाश्ता लेकर आ गईं और प्रेम बाबा की नकल करते हुए वो भी बोल पड़ी, अले भाई पहले आप भी अपना नाश्ता कर लीजिए, फिर आलाम छे बच्चों तो बताइए। दादी को भी इस तरह तुतलाते देख सारे बच्चे प्रेम बाबा और नित्या सब हंसने लगे और सब जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करने में जुट गए। नाश्ता खत्म हो चुका था और सारे बच्चे प्रेम बाबा को घेर कर पलंग पर जा बैठे। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा उन्हें कोई कहानी सुनाने जा रहे हों। हाँ तो बाबा अब बताइए ये डिब्बे कैसे हैं और आप आज इनकी सफाई क्यों कर रहे हैं, नेहा ने उत्सुकता से पूछा। बेटा ये डिब्बे नहीं, ये दो तीन तरह के रेडियो हैं। रेडियो? ईशा ने पूछा। हाँ बच्चों देखो अभी दिखाता हूँ, कहकर प्रेम बाबा ने बड़े वाले रेडियो में पीछे का ढक्कन खोलकर उसमें दो बड़ी वाली बैटरी लगाई और उसका एक गोल बटन घुमाकर उसे ऑन किया। यह आकाशवाणी है, अब आप आज के प्रमुख समाचार सुनिए। प्रेम बाबा के गोल बटन दबाते ही उसमें से आवाज आने लगी। सभी बच्चों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। अरे ये आवाज कहाँ से आई, क्या इसमें कोई आदमी बैठा है, बाबू जोर से चीखा। इस बीच प्रेम बाबा ने रेडियो का दूसरा गोल बटन थोड़ा सा घुमाया, अब वहां गाने की आवाज गूंजने लगी थी, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ। अरे इसमें से तो गाना भी आने लगा, ईशा चिल्लाई, ये तो लगता है जादू का डिब्बा है, नेहा भी आश्चर्य से बोली। सही कहा नेहा, ये सचमुच जादुई डिब्बा।

0: है। इसमें तुम लोग जो भी सुनना चाहो सुन सकते हो, कहानी, कविता, नाटक, गाने, समाचार, बाबा ने बच्चों को समझाया। पर प्रेम बाबा, अब तो सभी कुछ मोबाइल में हम सुन सकते हैं, पापा तो सारे समाचार गाने मोबाइल में ही सुनते हैं, नेहा बोली। प्रेम बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोले, हाँ बेटा, अब तो सब कुछ मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप में सिमट गया है, लेकिन जब ये सब मशीनें नहीं बनी थीं, तो हमारे पास देश दुनिया की खबरों को जानने और मनोरंजन के लिए गाने सुनने का सिर्फ रेडियो ही एक साधन था, और गांवों से लेकर शहरों तक हर घर में रेडियो ही होते थे। लेकिन प्रेम बाबा, आप आज सवेरे सवेरे इन अलग-अलग तरह के रेडियो की सफाई क्यों कर रहे थे? ईशा ने पूछा। बेटा, आज है 8 जून, और 90 साल पहले आज ही के दिन सन 1936 में भारत की इस आवाज़ का नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ा था, और यह करोड़ों घरों या कह सकते हो हर घर की आवाज़ बन गया। इसीलिए मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए इन रेडियो सेट की सफाई कर रहा हूँ। प्रेम बाबा मुस्कुरा कर बोले। इतना ही नहीं, इस रेडियो या छोटे ट्रांजिस्टर को पहले लोग अपनी साइकिल या रिक्शों के हैंडल में लटकाकर आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हुए चलते थे। पहले लोग क्रिकेट की कमेंट्री भी आकाशवाणी पर ही सुनते थे। रात को इसमें नाटक भी आता है। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि आकाशवाणी पर सुबह से लेकर रात तक कार्यक्रम आते थे? नेहा ने पूछा। आते थे नहीं बेटा, आते हैं। जैसे आजकल तुम टीवी पर तरह तरह के कार्टून सीरियल्स देखते हो, ऐसे ही आकाशवाणी पर भी बच्चों, बड़ों, सभी के लिए मनोरंजक कार्यक्रम, समाचार, कमेंट्री सभी कुछ आता है। बस आज मशीनें बदल गई हैं, अब लोग रेडियो सेट की जगह सब कुछ अपने मोबाइल कंप्यूटर पर सुन लेते हैं। वाह बाबा, तो हम भी आज आपके साथ आकाशवाणी का स्थापना दिवस मनाएंगे और रात तक रेडियो पर गाने और अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनेंगे। सभी बच्चे चहक कर बोले। बिल्कुल बच्चों, कहकर प्रेम बाबा ने फिर रेडियो का ट्यूनर घुमाया और रेडियो पर गीत बजने लगा। चल चल चल मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। गाना सुनते ही बच्चों ने उठकर डांस करना शुरू किया। तो अब भला बाबा और दादी क्यों पीछे रहते? वो भी उठे और बच्चों के साथ ठुमके लगाने लगे।
1: क्या बात है दीदी, हेमंत कुमार श्रीवास्तव अंकल ने तो बहुत ही बढ़िया कहानी हमें सुनाई। इसके लिए अंकल को ढेर सारा धन्यवाद।
2: बच्चों, अभी आपने सुनी कहानी घर घर की आवाज।
3: इसे लिखा था डॉक्टर हेमंत कुमार श्रीवास्तव भैया ने।
2: अच्छा देविका, हर इंसान यही चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा हो, जो सपने उसने देखे हैं वो पूरे हों, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता।
1: कई बार क्या दीदी, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। जब मेरा खेलने का मन करता है तो पढ़ना पड़ता है, जब कहीं जाने का मन करता है तो जाने नहीं दिया जाता।
2: देविका, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कई लोग, यहाँ तक बच्चे भी, ऐसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं कि उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी एक बीमारी कैंसर है, और आज हम मना रहे हैं विश्व कैंसर सर्वाइवर दिवस।
1: जी दीदी, इसे हर साल जून के पहले रविवार को मनाया जाता है।
2: हाँ, और आज है जून का पहला रविवार। ये दिन समर्पित है उन लोगों को जिन्होंने इस बीमारी से लड़ा है और इसे हराया है। ऐसे ही कुछ बच्चों से बात की स्नेहिल श्रीवास्तव दीदी ने, तो सुनते हैं कैंसर को मात दे चुके बच्चों की कहानी उन्हीं की जुबानी।
4: आज हम एक बेहद खास और प्रेरणादायक मौके पर आप सभी से जुड़ रहे हैं, जहां हम वर्षा फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर सर्वाइवर्स डे को मना रहे हैं, जिसके लिए हम आ पहुंचे हैं केजीएमयू लखनऊ में, जहां हम बच्चों की अद्भुत यात्रा और उनके साहस और परिवारों की कहानियों को आपके साथ साझा करेंगे। तो जैसा कि हम कहते हैं कि हर बच्चा जीत की एक कहानी है, और हर कहानी में एक उम्मीद का सफर होता है। हम आज उन बच्चों से मिलेंगे जिनकी हिम्मत और मुस्कान ने हमें सिखाया कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। तो आइए करते हैं ऐसे ही बच्चों से कुछ बात। हेलो, नाम है आपका?
5: मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है।
4: सिद्धि, तो भाई आपकी हिम्मत ने हम सबके दिलों में भी एक नई उम्मीद जगाई है, क्योंकि आप बहुत ब्रेव हैं। तो आप ये बताएं सबसे पहले कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है?
5: मुझे सबसे ज्यादा ड्राइंग पसंद है।
4: ओके, तो आप कैंसर सर्वाइवर हैं जैसे
5: जी,
4: तो कब से जुड़ी थी आप यहाँ?
5: व्हेन आई वाज 5 years old, राइट नाउ आई एम 16 years old।
4: ओके, 5 years में आपको डायग्नोस हुआ था ये सारी
5: जी।
4: अब कब तक रिकवरी हो गई थी?
5: रिकवरी इन 2016।
4: क्या प्रॉब्लम थी आपको शुरू में, कैसे पता चला कि क्या दिक्कत है?
5: नॉर्मली तो जब हम बीमार हुए थे, स्टार्टिंग हुई थी, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाते थे और डॉक्टर ने मतलब इतना बोला कि नॉर्मल है, लेकिन एक दिन अचानक से जब

0: मुझे चक्कर वगैरह आया तब मम्मा मेरे को डॉक्टर के पास लेके गई। तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तब यहाँ पे हम लोग KGMU आए थे, वहाँ पे मेरे जो डॉक्टर जिन्होंने मेरा ध्यान रखा और मुझे अभी सही कर दिया वो निशान सर एंड अर्चना गांधी।
1: ओके, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती?
0: नहीं।
1: आपका फेवरेट गेम क्या है?
0: मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन।
1: बैडमिंटन खेलती भी हैं आप?
0: जी।
1: और आपने बताया आप ड्राइंग अच्छी कर लेती हैं।
0: हाँ।
1: किस टाइप की ड्राइंग पसंद है?
0: मुझे नॉर्मली स्केचिंग, और इतना कलरिंग में नहीं अच्छा, लेकिन हाँ स्केचिंग अच्छी है।
1: ओके सिद्धि, तो बात करके अच्छा लगा आपसे। ऐसे ही आपका हौसला बढ़ा रहे, आप हमेशा अपने मुकाम पे पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू वेरी मच मैम।
1: हमारे साथ अभी एक और बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, क्या नाम है आपका?
2: राव्या।
1: कौन सी क्लास में पढ़ती है राव्या?
2: LKG।
1: फ्रेंड्स है आपके? बेस्ट फ्रेंड का नाम बताए।
2: अमोलिका।
1: अमोलिका बड़ा प्यारा नाम है।
2: वो भी क्लास में पढ़ते हैं। सब लोग क्लास में पढ़ते हैं।
1: सब लोग क्लास में पढ़ते हैं। कौन सा गेम खेलना पसंद है सबसे ज्यादा राव्या को?
2: झूला।
1: झूला झूलना पसंद है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है राव्या को?
2: मम्मा।
1: मम्मा करती है। आप तो आई पापा के साथ है। पापा प्यार करते हैं क्या कि मम्मा?
2: दोनों
1: दोनों प्यार करते हैं। अच्छा, राव्या को सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
2: खेलना।
1: क्या खेलना?
2: डॉल हाउस।
1: डॉल हाउस खेलना पसंद है।
2: मामा लाए थे।
1: मामा लाए थे। तो अब छुट्टी हो गई राव्या की ना? हॉलीडेज हो गई कि नहीं हुई? अब घूमने जाएगी राव्या? कहाँ?
2: नानी के।
1: नानी के पास जाएगी। ओके राव्या, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ हैं, पहले बेटा अपना नाम बताइए।
3: अंशिका।
1: अंशिका, आपकी ये जब जर्नी स्टार्ट हुई तो आपके परिवार ने आपका पूरा साथ दिया होगा, तो आपको सबसे ज्यादा हिम्मत किसने दी?
3: मेरे पापा ने।
1: पापा ने। और कैसे पता चला आपको अंशिका कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है?
3: वीकनेस लगने लगी थी तो हम अपने डॉक्टर के पास गए।
1: हाँ।
3: तो उन्होंने जब चेक किया तो पता चला ब्लड डिफिशियंसी है, तो ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें उन्होंने दिक्कतें पाई, तो उन्होंने कहा कि आप KGMU में दिखाई जाते। तो फिर यहाँ हम आए, सो फ्राइडे को निशान सर की OPD लगती है, उन्होंने देखा, फिर उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट शुरू हो गया।
1: अब आप नॉर्मल स्कूल और सारी चीजें रूटीन में फॉलो करती है?
3: स्कूल जाते हैं।
1: और लाइफ में क्या करना पसंद है?
3: सबसे ज्यादा तो हमको पढ़ाई पे फोकस करना पसंद है।
1: पढ़ाई करना पसंद है, वेरी गुड। कौन से क्लास में अभी?
3: 9th।
1: तो आप रेगुलर रूटीन में स्कूल वगैरह करती है?
3: Yes,
1: कोई इशू नहीं आता?
3: इस से हम जाने लगे।
1: अच्छा, तो अब ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है। तो अंशिका, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ऐसे ही अपना हौसला बनाए रखें, हिम्मत से काम लें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो अभी हमारे साथ हैं अमन। अमन, अभी आप ठीक हैं पूरी तरीके से?
4: ठीक
1: है। तो जब आप पूरी तरह से ठीक हो गए अमन, तो कौन से पल आपको ऐसा लगा कि सबसे खूबसूरत पल है वो आपके लिए?
4: हमको सबसे अच्छा लगा यहाँ पे जब पार्टी वगैरह आने में बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, जब ये KGMU में कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जो पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है ये आपको अच्छी लगती है?
4: अच्छी लगती है।
1: तो आप हर बार आते हैं इसमें?
4: हाँ, हर बार आते हैं।
1: अच्छा, तो अभी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है?
4: कोई दिक्कत नहीं।
1: नॉर्मल रूटीन चेकअप भी होते रहते हैं आपके?
4: हाँ, साल भर में बुलाते हैं तो कहते हैं सर की जांच करा के जाओ,
1: बाकी सब ठीक है।
4: हाँ, ठीक।
1: अच्छा, शुरुआत में अमन, कैसे आपको पता चला कि आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रही है? जब आपको ये दिक्कत हुई कितने बड़े थे आप?
4: हम 13 साल के थे।
1: अच्छा, अभी आप कितने साल के हैं?
4: 16 साल के हैं।
1: तो डॉक्टर ने क्या कहा था उस समय, क्या दिक्कत हुई थी आपको?
4: वहाँ हम गोरखपुर में दवा करा रहे थे तो डॉक्टर ने कहा था कि बुखार उखार था, हमको पता नहीं चल रहा था, तो डॉक्टर ने वहाँ से रेफर किया, कहा कि KGMU में जाओ। तो हम यहाँ पे आए, दवा अपना स्टार्ट करवाए, पहले ट्रामा सेंटर में भर्ती थे।
1: अच्छा,
4: फिर वहाँ से हमको ट्रांसफर किया गया इस हॉस्पिटल में। तब यहाँ पे निशांत वर्मा सर हमको मिले, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया।
1: अच्छा, तो अब आप 3 साल से
4: ठीक है?
1: ठीक है। स्कूल स्कूल सब जाते हैं आप? पढ़ाई करते हैं?
4: हाँ।
1: दोस्तों के साथ खेलना कूदना पसंद है?
4: हाँ, पढ़ते हैं, जाते भी हैं, रोज स्कूल जाते हैं, 10th में पढ़ते हैं।
1: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके अमन। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच अमन। तो हमें हमारे एक कैंसर सर्वाइवर के साथ अपना नाम बताएं सबसे पहले।
5: मनीष मिश्रा।
1: मनीष, क्या एज है आपकी अभी?
5: अभी 16 ईयर।
1: ओके, कब जाने की आपको कुछ दिक्कत हो रही है?
5: बुखार आ रहा था बहुत दिन तक, 1.5 महीने तक मेरा कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप KGMU जाइए।
1: ठीक है।
5: ट्रामा सेंटर में मैं गया, फिर वहाँ पे मुझे पहले तो डॉक्टर रचना मैम ने देखा था, जब मैं 2013 में पहली बार बीमार हुआ था, फिर उन्होंने मेरा इलाज किया था, मैं मात्र 2.5 साल का था। फिर फीवर से मैं आया तो मेरी जांच वाच हुई, बोन मैरो की जांच हुई, उसमें पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। तो उसके बाद मेरा इलाज चला, उसके बाद मुझे 2022 में रिलैप्स कर गया था, उसके दौरान में मैं बहुत ठीक था, आगे बढ़ा मैं अपनी जर्नी में। फिर 2022 में मेरे को वापस से वही सेम प्रॉब्लम, फीवर आ रहा था, फिर हम वापस से डॉक्टर के पास गए। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि वापस आप KGMU में जाइए, टेस्ट कराइए। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ पे लखनऊ में इलाज नहीं हो पाएगा आपका, रिलैप्स केस था। हमने कहा नहीं सर, करेंगे तो आप ही इलाज करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो इलाज अभी चल रहा था मेरा, अभी तो हो गया 1.5 साल पहले बंद हो गया, फिर मेंटेनेंस कोर्स भी मेरा कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं क्लास 9th में हूँ, जर्नी चल रही है आगे।
1: तो अभी आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है?
5: अभी कोई 1 साल।

0: पारा जब आपने स्कूल जाना शुरू किया और अपने दोस्तों से मिले, तो सबसे ज्यादा क्या आपने मिस किया था इतने दिनों में और क्या आपको सबसे बेटर लगा?
1: मैंने अपने दोस्तों को मिस किया क्योंकि मैं उस समय नहीं था। बाकी परिवार वालों से मैं बहुत कम मिल पा रहा था क्योंकि मेरा इलाज ऐसा कंटिन्यू चल रहा था, उसमें छोड़ के नहीं जाना होता है।
0: बिल्कुल।
1: के बाद में स्कूल जाना स्टार्ट किया तो पहले तो मेरा एक साल बैक लग गया था। मुझे इसी का दुख था कि मेरे सारे दोस्त आगे चले गए, मैं पीछे रह गया। उसके वजह से थोड़ा दुख था, बट फिर मैंने कहा नहीं, कैंसर से कॉमा है आपके जीवन में आया, अभी तो अगर आप ठीक हुए तो आपके लिए पूरा जीवन है।
0: हमारे रेडियो से जितने भी लोग आपको सुन रहे होंगे वो बहुत इंस्पायर भी होंगे और होना भी चाहिए कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम लड़ नहीं सकते। और अच्छा लगा आपसे बात करके, वैसे ही हिम्मत बनाए रखिए और खूब आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो आज हमने इन बच्चों की यात्रा सुनी। ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर उस सफर का जश्न है जिसमें हिम्मत ने हार को जीत में बदला। नमस्कार।
2: वाह दीदी, इन साथियों से मिलकर मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली है। हम मुश्किलों से डरे नहीं, डटकर उनका सामना करें और उन पर विजय पाकर ही दम लें।
3: बिल्कुल, इसीलिए तो इन जीवट के धनी बच्चों से आपको मिलवाया। इनसे मिलवाने के लिए स्नेहिल श्रीवास्तव दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सच्ची दीदी, इसलिए जीवन चलने का नाम कहा गया है।
3: और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बात करते हैं इस सप्ताह पढ़ने वाले दिवसों की।
2: जी दीदी, 8 जून को मनाया जाएगा विश्व महासागर दिवस, मतलब वर्ल्ड ओशन डे।
3: ये दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2009 में की गई थी। महासागर हमारी धरती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, इकोसिस्टम और खाद्य सुरक्षा आदि की दृष्टि से महासागरों को साफ और सुरक्षित रखना है। आज महासागर भी अनेक कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं जिससे पर्यावरण, जलीय जीवन पर खतरा मंडराने लगा है।
2: दीदी, मैं जब भी ऐसी बातों को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे बहुत चिंता होती है कि हमारा भविष्य कितना असुरक्षित होता जा रहा है।
3: देविका, लोगों को जागरूक करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है, यही काम हम कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत करो, अभी खेलो कूदो, खुश रहो। खेल से याद आया, 11 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाएंगे।
2: अच्छा दीदी।
3: हाँ, ये दिवस बच्चों के खेलने के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आजकल बच्चे भागने दौड़ने वाले खेल ना खेलकर मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स ज्यादा खेलने लगे हैं, तो उन्हें इससे दूर रखना और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। और अब बात करते हैं बच्चों के एक और अधिकार की।
2: और कौन सा अधिकार दीदी?
3: बच्चों से काम ना कराने का अधिकार, मतलब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये दिवस 12 जून को मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में की थी।
2: दीदी, मैंने पढ़ा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए।
3: हाँ देविका, हमारे देश में बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानून और कई नीतियाँ बनाई गई हैं। इसी विषय पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है नई रोशनी।
2: इसे लिखा है राजलक्ष्मी दीदी ने।
3: और देविका, चाहो तो तुम भी इसमें भाग ले सकती हो।
2: क्यों नहीं दीदी, हम बच्चों की छोटी सी दुनिया, खेल कूद पढ़ना लिखना।
4: लेकिन कुछ बच्चों की किस्मत में काम, मेहनत और मजदूरी करना।
5: अरे दीपू, जल्दी जल्दी हाथ चला, सारे बर्तन धोने के बाद दुकान की सफाई भी तो करनी है ना।
4: जी जी मालिक, करता हूँ।
5: करता हूँ कि बच्चे घंटे भर से बर्तन धो रहा है, अभी धो नहीं पाया।
4: मालिक, बर्तन भी तो बहुत सारे हैं, भगोने और कढ़ाई कितने जले हुए हैं, रगड़ रगड़ के मांजना पड़ रहा है।
5: जबान चलाता है, ये लो, काम करने काज का, दुश्मन अनाज का।
4: मत मारिए मालिक, सुबह से तो काम पर लगा हुआ हूँ, खाना भी नहीं खाया है, बड़ी जोर से भूख लगी है।
5: सुबह खाना दिया तो था?
4: वह कल रात का खाना था, खराब हो गया।
5: वाह रे वाह, नखरे तो ऐसे हैं जैसे कहीं के राजकुमार हों। आज तो तेरा खाना पीना सब बंद।
2: पापा पापा, मम्मी पूछ रही हैं घर कब तक आओगे, सब खाना खाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं।
5: अरे मेरी रानी बिटिया, आप लोग खा लो, ये महाराज यहाँ का काम खत्म करें तब तो मैं आऊँ।
2: कौन महाराज पापा? क्या दीपू? पापा, कल से मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी, यहाँ दीपू के साथ काम कराऊंगी जिससे काम जल्दी हो सकेगा।
5: तू क्यों काम करेगी बेटी, तू तो अभी बच्ची है, अभी तो तेरे पढ़ने लिखने के दिन है बेटा।
2: वही तो पापा, जैसे मेरे पढ़ने लिखने के दिन है, वैसे ही दीपू के भी पढ़ने लिखने के दिन है। और पापा, शायद आपको पता नहीं है,

0: 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराना कानूनन अपराध भी है।
1: क्या सच में?
0: हाँ सच में, 14 साल तक बच्चों का काम केवल पढ़ना लिखना और खेलना कूदना है।
1: दीपू बेटा यहाँ आओ, कल से तुम दुकान पर काम करने मत आना, और हाँ स्कूल जाना, अपनी पढ़ाई पूरी करना, पढ़ाई का खर्चा मैं खुद बहन करूँगा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक।
1: धन्यवाद मुझे नहीं बेटा, मेरी बेटी को दो जिसने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं कभी भी किसी बच्चे को काम पर नहीं रखूंगा, ये उम्र उनके पढ़ने लिखने की है।
0: सही कहा पापा।
2: आओ मिलकर सब संकल्प करें,
0: हर बच्चे को उनका अधिकार मिले।
2: बाल श्रम पाप और अपराध है।
0: बच्चों को हंसता खेलता संसार मिले।
3: बच्चों अभी आपने सुनी है नाटिका नई रोशनी, इसमें भाग लिया व्योम पांडे, देविका श्री शुक्ला
4: और सुरेंद्र राजेश्वरी भैया ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: देविका आज का कार्यक्रम हमारे साथियों को कैसा लगा हमें जरूर लिखें। इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए
0: bmbg.airlko@gmail.com।
3: इस ईमेल पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिएगा, हमें इंतजार रहेगा।
0: आज हमने भोजन की सुरक्षा का प्रण लिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष का जश्न मनाया, सच्चे अर्थों में जीवन जी रहे कैंसर सर्वाइवर बच्चों से मिले, तमाम दिवसों के विषय में जानकारी प्राप्त की,
3: और अब समय हो चला है कार्यक्रम वाइंड अप करने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति
0: देविका श्री शुक्ला
3: और राजलक्ष्मी दीदी को।
5: जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल मंच। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया फिल्म हीरा का ये गीत, जिसे लिखा है इंदीवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म खिलौना का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और अब लीजिए सुनिए फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, स्वर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के।

आन मिलो सजना, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर लता मंगेशकर के, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एजू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है।

0: कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए दो ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित कुछ सूचनाएं सुनिए। प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार शालिनी पांडे पुत्री अनिल कुमार पांडे निवासी पूरे लाल पांडे मजरे पूरे राई थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली से दिनांक 15 दिसंबर सन 2017 से कहीं लापता हैं। शालिनी पांडे की आयु 15 वर्ष कद 4 फुट 6 इंच गोरा रंग और लंबा चेहरा है। खुशबू पत्नी शिवमोहन निवासी गोनी गुड़वा थाना अतरौली जनपद हरदोई से दिनांक 12 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। खुशबू की आयु लगभग 30 वर्ष कद 4 फुट और लंबा चेहरा है। अनिल पुत्र ननहक्के निवासी ग्राम रग्घाखेड़ा मजरा जाजूपुर थाना अतरौली जनपद हरदोई से दिनांक 18 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। अनिल की आयु लगभग 23 वर्ष गोरा रंग और सामान्य चेहरा है। राजेश कुमार गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना AHT जनपद औरैया से हमें सूचित करते हैं कि पुष्पेंद्र नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष कद 4 फीट 2 इंच और गेहूं रंग है इनके माथे पर चोट का निशान है कहीं लापता हो गए हैं। इन खोए व्यक्तियों के संबंध में यदि कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश महानगर लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी

0: फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विषय रहेगा वंचितों को वरीयता। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासती रेलवे पुलिस के काम का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि रियासत में रेलवे सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद जदीद और तकनीकी तौर पर काबिल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत, खवातीन के तहफ़ जराइम पर काबू पाने और पुलिस की फौरी मदद को अवलियन तरजीह दी जानी चाहिए। प्रोसिक्यूशन अवलियन सिस्टम का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने मुजरिमों को फौरी और मौसर सजा देने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब बहुत से ममालिक इक्तसादी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, भारत आलमी मईशत में तेज़ी से बढ़ रहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में भारत ने इक्तसादी तरक्की को मुस्तहकम, खुद एतमादी, तसलसल और एतबात के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन है। वजीर दिफा ने अपनी रिहाइश पर लोगों से मुलाकात के बाद आलमबाग वाक़े टेढ़ी पुलिया के पास प्रबुद्ध जनसंवाद प्रोग्राम में शामिल हुए और इलाके के मुमताज़ शहरियों से बातचीत की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। तलबा अब आज आधी रात तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। इससे पहले कल 6 जून की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। रियासत में सिविल पुलिस कांस्टेबल और उसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान कल से 10 जून तक रोजाना 2 शिफ्टों में मुनक्किद होगा। इंतजामिया इसके लिए तैयारियां कर रही है। वज़ीर आला के हिदायत के बाद इम्तिहान की तैयारियों की रिहर्सल हुई। कानपुर में इंतजामिया ने इंतजाम के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया। रेलवे ने भी खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उम्मीदवारों को रियायती शहरों पर खिदमात फराहम करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के सवालिया पेपर के मुबैना लीक या फरोख्त के दावों की तरदीद की है। NTA ने कहा है कि ये मुनज़्ज़म धोखाबाज गिरोहों का काम था जो तलबा और उनके अहल खाना के खदशात का फ़ायदा उठा रहे हैं। एजेंसी फाल तौर पर काबिल एतराज़ चैलेंजेस, अकाउंट्स और मवाद की निशानदेही कर रही है और उसने मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। NTA उम्मीदवारों और वालदैन को मशवरा देता है कि वो ऐसे किसी पैगाम का शिकार ना हों। आम की खुशबू और मिठास अब अमरोहा के सरहदों से निकलकर कई ममालिक तक पहुंच जाएगी। इस सीज़न में अमरोहा के आमों की खुशबू और जायका सिर्फ खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कजाकिस्तान, रूस, उज़्बेकिस्तान, सिंगापुर, यहां तक कि लंदन के लोग यहां के आमों का मजा

0: चखेंगे। मलेशिया से भी आम के ऑर्डर मौसूल हुए हैं। इन ममालिक से 400 टन से ज्यादा आम के ऑर्डर मौसूल हो चुके हैं। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि अमरोहा में हुकूमत की तरफ से मरबूत पैक हाउस की तामीर की वजह से आम की बरामदात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने लीगल मेट्रोलॉजी सिस्टम के तहत खुरदनी तेल के लिए मियारी पैकेजिंग नाफिज की है। इससे मार्केट में ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आएगी। सार्फिन के उमूर के महकमे ने खुरदनी तेल और घी के खालिस मकदार और मियारी पैक साइज का तयन करने के लिए मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार में तरमीम की है। माहौलियाती तहफ़ और ईंधन की बचत का पैगाम देते हुए जिला कोर्ट मां लखनऊ के अदालती अफसरान ने कल साइकिल मुहिम में हिस्सा लिया। वहीं हमीरपुर में यौम आलमी साइकिल के मौके पर साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसे माहौलियात के तहफ़ का पैगाम दिया गया। वहीं सुल्तानपुर में आज माहौलियात के तहफ़ और अवामी बेदारी के मकसद से मुनक़द माहौलियात मैराथन मुकाबले का इफ्तिताह पर्यावरण पार्क से किया गया। घरेलू गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर में 29 रुपए का इजाफा किया गया है। लखनऊ में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 950 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 979 रुपए 50 रुपए हो गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम, आज इतवार है। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए मुमताज हसन लिखित झलकी EMI का चक्कर। निर्देशन अतीश कुमार श्रीवास्तव का है।

नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती और आज के डिजिटल दौर में तो उन जरूरतों को नो कॉस्ट ईएमआई और फेस्टिव ऑफर का ऐसा तड़का लग गया है कि क्या कहने। एक जमाना था जब हमारे बुजुर्ग कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले महीनों सोचते थे, पाई पाई जोड़ते थे, गुल्लक तोड़ते थे और तब कहीं जाकर घर में नया टीवी या स्कूटर आता था। लेकिन आज चीजें पसंद बाद में आती हैं और उसका ईएमआई का कैलकुलेशन पहले हो जाता है। आज की कहानी है उसी आधुनिक दौर की जहां इंसान सामान नहीं खरीदता बल्कि किश्तों के चक्कर में अपनी रातों की नींद गिरवी रख देता है, जहां महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट होने की खुशी सिर्फ 2 मिनट टिकती है क्योंकि तीसरे ही मिनट धड़ाधड़ बैंक के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, बधाई हो आपकी ईएमआई सफलतापूर्वक कट गई है। तो श्रोताओं, अपने अपने फोन के ईएमआई वाले नोटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लीजिए और सुनिए ये मजेदार गुदगुदाती लेकिन बिल्कुल सच्ची कहानी।

0: जी सुनते हो, अब उठो भी। देखो कब से तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं और ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है, उठो जल्दी।
1: अरे यार बस 5 मिनट और, अभी उठ रहा हूँ। ओफो, ये मोबाइल सोने ही नहीं देता। अरे बाप रे, फिर से बैंक का मैसेज।
2: डियर कस्टमर, आपकी EMI 12,500 रुपए सफलतापूर्वक कट गई है।
1: हाय राम, अरे मेरी सैलरी तो महीने में एक बार आती है, लेकिन ये EMI के मैसेज मुझे रोज याद दिलाते हैं कि मैं गरीब हूँ।
0: अगर उठ गए हो तो दूध वाले को फोन करके पूछ लो कि कितना हिसाब हुआ उसका।
1: लो अब एक और हिसाब, पूछ रहा हूँ

0: हेलो दूध वाले भैया, अरे आपका कितना हिसाब हुआ है?
1: अरे रमेश भैया, अबे रहन दो, महीना के आखिरी में दे दो, जो उन्हें तना महीना के आखिरी में सब चीजन की किस्तें देते हो वैसे है।
0: अरे भाई, महीने के आखिरी में तो मैं खुद हिसाब और पैसा ढूंढता फिरता हूँ।
1: अरे भैया कहाँ बता रहे हो,

0: अरे भाई सीमा, देखो दरवाजे पे कौन है।
1: कौन होगा? विवेक जी आए होंगे, क्योंकि नई गाड़ी जो ली है उन्होंने, वही बताने आए होंगे।
2: नमस्कार भाभी जी।
1: नमस्ते भैया।
2: रमेश भाई कहाँ हैं?
1: वो नाश्ता कर रहे हैं, आइए।
2: नमस्कार रमेश भाई।
0: नमस्कार विवेक भाई, इतनी सुबह सुबह कैसे?
2: अरे रमेश भाई, नई कार ली है मैंने, उसी की मिठाई लेके आया हूँ।
0: अच्छा, अरे सीमा बता रही थी मुझे, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कितने की ली कार?
2: पूरे 15 लाख की है।
0: हैं? 15 लाख? वाह, कैश में ली?
2: नहीं, सिर्फ डाउन पेमेंट कैश था, बाकी तो 7 साल तक बैंक और हम साथ साथ रहेंगे।
1: हाय बड़े कार वाले, अकड़ तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कैश मिली हो।
2: सीमा भाभी, आप कुछ कह रही क्या?
1: अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो मैं पूछ रही थी कि भाभी जी कैसी हैं।
2: वो तो अभी ज्वेलरी शोरूम गई है, 0 डाउन पेमेंट देखकर।
3: क्या हुआ रमेश भाई, परफॉर्म फिर लग रहे हो?
0: अरे कुछ नहीं यार पप्पू, कितनी मुश्किल से घर लिया था, सोचा था अपने घर में रहकर सुकून और खुशी मिलेगी, लेकिन ईएमआई की वजह से हालात ये हो गए हैं कि घर मेरा कम और बैंक का ज्यादा लगता है।
3: अरे भाई, इसमें परफॉर्म होने की क्या बात है, ईएमआई पूरी होने के बाद घर पूरा तुम्हारा हो जाएगा। और रमेश भाई, तुम्हें एक बात बताऊं?
0: बताओ।
3: ये हाल सिर्फ तुम्हारा, मतलब तुम्हारा ही नहीं है, लगभग हर मिडिल क्लास आदमी का है। अब जैसे हमें ही देख लो, मेरे पास बाइक ईएमआई पर, मोबाइल ईएमआई पर, टीवी ईएमआई पर,
0: और खाना भी क्या तू ईएमआई पर ही खाता है?
3: अरे वो भी तो उधार में ही है।
0: हेलो, कौन?
4: हेलो सर, नमस्कार, मैं A2Z बैंक से बोल रही हूँ, आपके लिए एक शानदार ऑफर है।
0: अरे रहने दीजिए, मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए।
4: सर एक बार ऑफर तो सुन लीजिए।
0: अच्छा बताइए, क्या ऑफर है?
4: सर अब आप छुट्टियाँ मनाने और घूमने भी EMI पर जा सकते हैं, जैसे गोवा, मालदीव और भी खूबसूरत जगह।
0: और लौट कर अपनी पूरी सैलरी EMI भरने पर खर्च कर दो।
4: नहीं सर, बहुत ही आसान किस्तों में भुगतान करना होगा बस।
0: अरे रहने दीजिए मैडम, मुझे पता है कि कितनी आसान किस्तें होती हैं। आप लोग इसी तरह के ऑफर का लालच देकर लोगों को EMI के जाल में फंसा देती हैं। नहीं चाहिए मुझे कोई ऑफर, रखिए फोन, धन्यवाद।
1: सुनो जी, वो मैंने सोचा है कि एक नया मोबाइल EMI पे ले लेते हैं।
0: क्या नया मोबाइल? अरे अभी तो पिछले ही मोबाइल की EMI चल रही है।
1: तो क्या हुआ, वो मोबाइल तो पुराना हो गया है, और रही EMI की बात, तो वो पुराने वाले की EMI के साथ नए वाले की भी EMI भर जाएगी।
0: और हाँ, पुराने की EMI खत्म होते होते नया मोबाइल भी पुराना हो जाएगा, फिर तुम्हें एक और नया मोबाइल चाहिए होगा। ए भगवान, ये मोबाइल ही EMI का पुनर्जन्म है, कब बंद होगा ये EMI का चक्कर?
1: आप भी ना।
0: अरे पिंकी बिटिया, तू बस मोबाइल में लगी रहे, कितनी बार कहा है कि छोटी स्क्रीन को लगातार देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ ही में नहीं आता।
5: इसीलिए पापा आपसे मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे गेमिंग लैपटॉप दिला दीजिए।
0: गेमिंग लैपटॉप? तुझे पता भी है कितना महंगा आता है?
5: आप लोग अपने लिए इतने महंगे महंगे सामान खरीद लेते हैं, तब तो पैसे का ख्याल नहीं आता, लेकिन मैं कुछ कह दूँ तो फौरन महंगाई बताने लग जाते हैं। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी।
0: अरे अरे अरे पिंकी बेटा, नाराज ना हो, हम लोग अपना कोई भी सामान कैश नहीं लेते हैं, बल्कि EMI पर लेते हैं।
5: EMI? पापा ये EMI क्या होती है?
0: बेटा EMI वो जाल है जिसमें लगभग हर मिडिल क्लास आदमी ना चाहते हुए भी फंस जाता है।
5: पापा वो कैसे और क्यों?
0: देखो बेटा,

0: मिडिल क्लास आदमी कम सैलरी में अपने घर और घर वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईएमआई का सहारा लेता है, जिससे वो शुरू में तो कम पैसे देकर अपने परिवार के लिए खुशियां खरीद लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये ईएमआई का जाल आदमी की उन्हीं खुशियों को खत्म कर देता है।
1: मतलब पापा, ईएमआई राक्षस की तरह होती है?
0: हाँ बेटा, तुमने सही कहा, राक्षस। वो भी बहुत प्यारा दिखने वाला राक्षस, जो तुम्हारे पापा की मुस्कान को हर महीने थोड़ी थोड़ी ले जाता है।
1: समझ गई पापा मैं।
0: गुड गर्ल। अरे ओ सुरेश, अरे सुरेश।
2: अरे यार, कैसा है तू और कहाँ गायब था इतने दिनों से?
3: कहीं गायब नहीं था यार, बस ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा था इसीलिए बिजी था। अच्छा मेरा छोड़, तू बता यार, तू कैसा है? तेरी लाइफ कैसी चल रही है?
0: मैं तो ठीक ही हूँ, और लाइफ चीजों की ईएमआई भरते भरते कट रही है। इधर सैलरी अकाउंट में आई नहीं कि उधर बैंक से ईएमआई कटने का मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से कोई सेविंग्स भी नहीं हो पा रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस ईएमआई के जाल से बाहर निकलूं।
3: देख भाई, इसका तो एक ही उपाय है, अपने खर्चों को कम करो।
0: कैसे, तू ही बता।
3: भाई जो सामान बहुत जरूरी ना हो वो मत खरीदो।
0: लेकिन भाई, ऑफर के लालच के चक्कर में हर चीज जरूरी लगने लगती है।
3: यही तो समस्या है भाई, ऑफर की लालच में आकर लोग वो भी खरीद लेते हैं जिसकी उनको जरूरत ही नहीं होती।
0: सही कहा सुरेश तुमने, मैं पिछले साल एक योगा मैट खरीद के लाया था।
3: फिर योगा किया?
0: नहीं यार, कहाँ योगा, अब वही मैट ईएमआई के आंसू सुखाने के काम आता है।

0: रमेश,
1: कौन कौन?
0: मैं हूँ तुम्हारी ईएमआई जिसका भुगतान तुमने अभी तक नहीं किया।
1: हे देवी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं जल्दी ही सारी ईएमआई भर दूंगा।
0: तुमने मुझे चुना नया टीवी, नई बाइक और नए फोन के लिए, और सामान मिलते ही तुम मुझे भूल गए, अब भुगतो।
1: अरे देवी जी, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे इस ईएमआई के जाल से मुक्ति मिल जाए।
0: दो रास्ते हैं तुम्हारे पास।
1: क्या क्या?
0: पहला, अपने खर्चों में कमी करो, और दूसरा, बैंक में नौकरी कर लो।
1: बैंक में नौकरी करने से कैसे मुक्ति मिलेगी?
0: तुम दूसरों को भी ऑफर की लालच में फंसाना।
1: क्या?

0: अजी, आप कल रात में सोते समय क्या बड़बड़ा रहे थे?
1: अरे सीमा, कल रात मैंने एक डरावना सपना देखा।
0: डरावना सपना? क्या देखा सपने में?
1: वो भले ही डरावना सपना था, लेकिन मुझे उससे ज्ञान भी प्राप्त हुआ।
0: ज्ञान? कैसा ज्ञान? और किसने दिया ये ज्ञान?
1: यमाई देवी ने।
0: यमाई देवी? मतलब तुम सपने में भी ईएमआई की बातें करते हो? वैसे क्या ज्ञान दिया तुम्हारी ईएमआई देवी ने?
1: उन्होंने कहा, हम चीजें नहीं खरीदते, बल्कि वो चीजें हमारी जिंदगी में खुशियां लाने के बजाय हमारे लिए बोझ बन जाती हैं और हमारी मुस्कान को खरीद लेती हैं।
0: तो अब क्या करेंगे?
1: अब से सिर्फ जरूरत पर खर्च करेंगे, दिखावे पर नहीं।
0: तो अब मुझे नया मोबाइल नहीं मिलेगा?
1: अरे मिलेगा भाई, मिलेगा, लेकिन जब तुम्हें सच में उसकी जरूरत होगी तब।
0: फिर ठीक है।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कि कभी कभी इंसान दिखावे के चक्कर में खुद पर इतना बोझ बढ़ा लेता है कि उसकी हंसी तक खत्म हो जाती है। तो ये थी झलकी, ईएमआई का चक्कर। हंसी मजाक के बीच एक सच्चाई छुपी है। आज के समय में ईएमआई सुविधा है, लेकिन समझदारी उससे भी बड़ी जरूरत है। जरूरत और चाहत में फर्क समझिए।

का चक्कर। अभी आप सुन रहे थे मुमताज़ हसन लिखी ये झलकी। कलाकार थे कपिल तिलहरी, स्नेहिल, राधा, रेखा मिश्रा, ओम प्रकाश उजाला, वान्या और आसिफ इकबाल। निर्देशन अतीश कुमार श्रीवास्तव का था। इसके साथ ही आज इतवार है कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम अक्षय वट।
1: अक्षय वट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम अक्षयवट में आप सभी बुजुर्गों और प्रबुद्ध श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्र का बढ़ना अनुभव की पूंजी लेकर आता है, लेकिन इस उम्र में सेहत का ख्याल रखना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, विशेषकर हमारी आंखें जो इस सुंदर संसार को देखने का एकमात्र जरिया है। अक्सर बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या नजर की कमजोरी जैसी समस्याएं हमें घेर लेती हैं। आज इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपशम गोयल जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार अलका जी।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि वरिष्ठ नागरिकों में आंखों की कौन कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा देखी जाती हैं?
2: जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बिकॉज उम्र के साथ हर चीज चेंज होती है और इसी तरह जो हमारी बीमारियां हैं वो भी चेंज हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
2: सो यंगर पेशेंट्स में मोबाइल पे ज्यादा काम है या टैबलेट पे ज्यादा काम है तो आंख में सूखेपन की समस्या बढ़ जाती है। वो कांस्टेंट है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े लोग हों, उन सब में दिक्कत रहती है। और साथ के साथ ये भी फैक्ट है कि उम्र के साथ ड्राइनेस आंख के अंदर जो कुदरती पानी है वो बनना कम हो जाता है, इसलिए रिएक्शनरी ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है। ऐसे में सिंपल ल्यूब्रिकेंट्स हम लोग देते हैं जिससे कि उसके पेशेंट को थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। दूसरी समस्या है जो सबसे ज्यादा उम्र के साथ लिंक्ड है वो है मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद एक ऐसी चीज है जो कि वैसे तो पैदाइशी बच्चों में भी हो सकती है
1: जी,
2: मगर ज्यादातर उम्र के साथ ही पाई जाती है और आजकल मोर देन 60 ईयर्स के ऊपर मोतियाबिंद होता है। तीसरी चीज है समलबाई, ग्लोकोमा
1: जी।
2: अब हम देख रहे हैं कि ग्लोकोमा यंगर और यंगर पेशेंट्स में भी मिलती जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि 35 साल की उम्र से नीचे भी ग्लोकोमा नहीं पाया जा रहा, इसलिए अब हम लोग ग्लोकोमा की टेस्टिंग 35 साल से उम्र के जो लोग आते हैं
1: जी,
2: उनकी भी शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा।
2: सो ये तीसरा एक बहुत अहम चीज है जो कि है डायबिटिक रेटिनोपैथी
1: जी।
2: यदि आपको डायबिटीज 10 साल से ऊपर हो गया है तो उसमें आंख में डायबिटिक रेटिनोपैथी की डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। आज के दिन में ग्लोकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अंधेपन का प्रमुख कारण है। मोतियाबिंद भी अंधा करता है मरीज को शॉर्ट टर्म के लिए, ऑपरेशन हो जाता है, ज्यादातर मरीजों में रोशनी लौट आती है, मगर मोतियाबिंद के अलावा जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है या जो ग्लोकोमा है इनमें जो रोशनी चली जाती है तो उसको लौटा पाना बहुत मुश्किल होता है। ग्लोकोमा का तो लगभग समझ लिया कि जो रोशनी चली गई उस पे तमाम ऑपरेशन भी करने के बाद, इलाज करने के बाद भी उसको उतने पे रोक तो सकते हैं
1: लेकिन वापस नहीं ला सकते,
2: रोशनी वापस नहीं ला सकते। डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी एडवांस ट्रीटमेंट करने पे जो कि लाखों रुपए कॉस्ट कर सकता है
1: जी,
2: अच्छे सेंटर्स में, सरकारी अस्पतालों में भी अगर उसको हम देखें तो खर्चे, क्योंकि दवाइयां ज्यादा महंगी आती हैं और सब इलाज महंगे होते हैं, इसलिए हर आदमी उसको फिर अफोर्ड भी नहीं कर पाता
1: जी। जी,
2: तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि उम्र के कारण ज्यादा से ज्यादा पाई जाती हैं।
1: डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद का सही समय पर इलाज कितना जरूरी है और जैसा कि आपने अभी बताया भी इसे

0: चलना कितना खतरनाक हो सकता है।
1: मोतिया बहन, एक तो प्रॉब्लम ये आ गई है आजकल की, जरा सा रोशनी कम नहीं हुई
0: जी
1: और तुरंत डॉक्टर बताते हैं भाई मोतिया बहन हो गया, ऑपरेशन कराओ। ये गलत है, ये ट्रेंड ही गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हो, कितना ही अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर क्यों ना हो, एक सर्टन रिस्क कैरी करता है
0: जी।
1: तो यदि आपको लगता है मेरे चश्मे से काम चल रहा है और अच्छा काम चल रहा है, मुझे नाइट ड्राइविंग में दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे को गाड़ी चलाने में नहीं हो रहा कि धुंधलापन आ गया, मैं कहीं भिड़ जाऊं या व्हाटएवर, तो अगर आपकी दिनचर्या का जो काम है वो अच्छी तरह से हो पा रहा है, भली भांति हो पा रहा है
0: जी,
1: तो शायद आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता ना हो। मगर कुछ मरीजों में मोतियाबिंद के कारण एंगल नैरो होने से ग्लोकोमा भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो यदि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है
0: जी जी
1: जो कि एडिशनल है मोतियाबिंद के अलावा, तो ऐसे में डॉक्टर आपको अर्ली सर्जरी के लिए एडवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफ कोर्स रोशनी कम होने लगे फिर तो करना ही है इलाज, उसका ऑपरेशन करना ही करना है। सो ये देख लीजिए, अगर कोई आपको लगता है कि भाई मेरी निगाह ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट डॉक्टर मुझे सर्जरी बता रहा है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि एक सेकेंड ओपिनियन अवश्य ले लें
0: जी,
1: बिकॉज बहुत ज्यादा चलन बढ़ता जा रहा है जल्दी ऑपरेशन का, बट वी डोंट बिलीव टू दैट,
0: उतना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर आपकी दिनचर्या ठीक चल रही है और अगर आपको
1: तो क्यों कराऊंगा मैं? जी बिल्कुल, ये 20 साल में के साथ लेंस में थोड़े चेंज आ गए, ऑपरेशन करा लो।
0: जी जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे जिन श्रोताओं को मधुमेह की समस्या है, उनको अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी विशेष सावधानियां लेनी चाहिए?
1: तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो सर से लेकर पांव तक सब चीज को अफेक्ट करती है
0: जी,
1: ठीक है, जो 5 टारगेट चीजों को अफेक्ट करती है सबसे ज्यादा और जो सबसे डेंजरस होते हैं। एक है नर्व्स, नसों पे
0: जी।
1: उससे क्या होता है, नसों में जैसे पैर में आपको चोट लगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि चोट लग गई, क्योंकि नसें आपकी सुन्न हो जाती हैं
0: जी।
1: इसीलिए जो कहते हैं कि नंगे पांव चला करो डायबिटीज के लिए अच्छा है, बिल्कुल गलत है, गलत धारणा है। आपको प्रॉपर फुट वेयर पहनना चाहिए, प्रॉपर सॉक्स पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पैर में चोट लग गई, आपको बॉडी में सेंसेशन नहीं होगा कि चोट लग गई है, नंबर एक चीज। और क्योंकि आपको सेंसेशन नहीं होगा, तो जो बॉडी को सिग्नल मिलता है ब्रेन से कि उसमें रिपेरेटिव टिश्यू डिफेंसेस भेजो
0: जी जी,
1: वो डिफेंसेस एक्टिवेट ही नहीं होते।
0: ओहो,
1: सो दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि एम्प्यूटेशन, जो पैर काटना पड़ जाता है, उसका दुनिया में सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट के बाद डायबिटीज है।
0: जी जी।
1: एंड उसके बावजूद तमाम डायबिटीज के पेशेंट 10-10, 20-20 साल डायबिटिक हैं, जिनकी पैर की कभी कोई टेस्टिंग भी नहीं करता देखने के लिए कि सेंसेशन कम तो नहीं है।
0: जी जी।
1: तो इन चीजों को समझना, और ऑफ कोर्स आजकल यू कैन ऑलवेज डू अ गूगल सर्च एटसेट्रा, उसमें देखिए कि भाई मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो एक तो नर्व्स का मैंने बताया
0: जी।
1: दूसरा हार्ट, अगेन सेम प्रोसेस जो बाकी शरीर में की ब्लड वेसल्स को कर रहा है, वो हार्ट को भी डैमेज करता है
0: बिल्कुल।
1: एंड डायबिटिक पेशेंट में अक्सर हार्ट अटैक बिना पेन के हो सकता है, ये तमाम लोगों को नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि नर्व डेड हो गई हैं या कम रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो जो एंजाइना पेन उठना चाहिए, जो कि पिक्चरों में दिखाता है दिल पे आप हाथ पकड़ के
0: जी, जी,
1: से साहब अरे साहब बड़ा भारीपन लगा, वो कुछ नहीं होता। तो डायबिटिक पेशेंट को कैसे मालूम पड़े कि मेरा हार्ट अफेक्ट हो रहा है? उसका तरीका यह है कि आप जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जो कि हम हर डायबिटिक पेशेंट को कहते ही हैं, यदि एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होनी शुरू हो गई आपकी, कि पहले मैं 1 किलोमीटर तेज रफ्तार से चल लेता था, अब डॉक्टर साहब 1 किलोमीटर से पहले 700 मीटर पे थकना शुरू हो जाते हैं
0: जी,
1: दैट इज ऑलमोस्ट पैथोग्नोमिक 100% ऑलमोस्ट इट इज बिकॉज या तो शुगर लो हो रही है आपकी, या आपका हार्ट में दिक्कतें शुरू हो गई। इसके लिए आप अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को इमीडिएटली दिखाएं
0: जी।
1: तीसरा, आंखों के ऊपर इफेक्ट होता है
0: जी।
1: आंखों में अगर आपको मधुमेह है, या तो आपको पहले से मालूम ही नहीं था, पहली बार बाई चांस आपने देखा कि साहब मेरे पेशाब पे चींटियां आ रही हैं या थकावट हो रही है, इसलिए आपने करा, तो आपने देखा शुगर हाई निकली, हो सकता है आपको 5 साल से हो, सकता है 10 साल से हो। तो जब भी आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो रही है शुगर, अगर आप रेगुलर टेस्ट नहीं करा रहे हैं
0: जी,
1: तो पर्दे की जांच करना अनिवार्य है। ओके, यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा भाई अगर तुम्हें डायबिटीज है तो तुम्हारे हर साल पर्दे की जांच होना आवश्यक है। NHS में लिया है, नेशनल हेल्थ स्कीम में। जब ऐसे शुरू किया, फर्स्ट ईयर में 30% डायबिटिक रिलेटेड ब्लाइंडनेस को कम कर सके वो लोग इन द वेरी फर्स्ट ईयर। सो दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन, क्योंकि यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह के प्रोटोकॉल सेट नहीं है। तो मैं इसीलिए मरीजों को कहता हूँ कि आपको अगर डायबिटीज है, आप कृपया करके डॉक्टर से कहिए, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कहिए या आँख के डॉक्टर से कहिए कि डॉक्टर साहब मैं सिर्फ चश्मा टेस्ट कराने नहीं आया हूँ, कृपया करके मेरी संभल बाई की जांच और मेरे पर्दे की डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच अवश्य कर दें
0: जी।
1: तो वो फिर दवा डाल के रेटिना देखेंगे, आपका आंख का प्रेशर लेंगे, अगर वो नहीं कराया उसने तो आप समझ लीजिए वो जांच फिर नहीं हुई है
0: जी।
1: सो एंड दैट शुड बी रिटन ऑन

0: या पेपर कि रेटिना नॉर्मल, नो डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लोकोमा का प्रेशर नॉर्मल, नॉर्मली 21 से कम होना चाहिए आँख का प्रेशर।
1: जी जी,
0: एक रेंज भी होती है उसमें, ऐसी बात नहीं, बट ज़्यादातर 21 से कम होता है प्रेशर। इससे कम में भी कुछ लोगों को ग्लोकोमा हो सकता है, इससे ज़्यादा में भी कुछ लोगों को नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इस तरह की सारी
1: सावधानियां लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, श्रोताओं के लिए खान पान और जीवन शैली को लेकर आप क्या सलाह देंगे?
0: जो आपके पूरी बॉडी के लिए अच्छा है
1: जी,
0: वो आपकी डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, वो आपकी आंख के लिए भी अच्छा है। लोग कहते हैं अलग से क्या लें, हम ये कहते हैं बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, इस तरह के जो चीजें हैं, कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकलीज हैं, जामुन है, संतरे हैं, आम है, कुछ डायबिटीज ना हो ज्यादा, तो ये तमाम चीजें जो आपके शरीर के लिए अच्छी हैं वो आंखों के लिए भी अच्छी है। बट सीजनल फ्रूट होना चाहिए, यानी कि कार्बाइड का पका हुआ आप आम खाओगे तो फिर सीधे भर्ती हो जाओगे अस्पताल में जाके, तो उसका कोई फायदा नहीं है फिर।
1: मतलब सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है हमारे बुजुर्ग
0: जी, हेल्दी मॉडरेटली हेल्दी लाइफस्टाइल, मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट रेस्ट एंड बी हैप्पी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। स्ट्रेस से ज्यादा बड़ा किलर कोई नहीं होता।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे बुजुर्ग मित्रों को छोटा सा क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे आप?
0: कि जिस खुशी से आप लोग जिए हैं उसी तरह जीते रहिए। मेरे बुजुर्ग पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हमें क्या खाना है, मैंने कहा आप हमें बताएंगे हम आपको बताएंगे। 85 साल पे आप इतने फिट हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, सो दैट इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग। एंड उसमें बस अच्छा नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने कहा मॉडरेट एक्सरसाइज, टहलना फिरना, घूमना फिरना। तमाम डायबिटिक होते हैं बहुत, तोन बड़ी बड़ी लेकर के आते हैं, वेट ज्यादा लेके आते हैं, फिर कहते हैं हमारी डायबिटीज ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम होता चला जाता है, इसलिए उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो एक्सरसाइज। इंक्रीज योर एक्सरसाइज एंड दैट्स इट, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स यू कैन डू। डाइट कंट्रोल अलोन पर्याप्त नहीं है, एक्सरसाइज अलोन पर्याप्त नहीं है, दोनों चीजों पे कंट्रोल रखिए। जो बचा खुचा है तब दवाइयों का रोल आता है
1: जी।
0: ये बड़ी गलत धारणा की दवाई खा लेंगे और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, ये कोई तरीका नहीं है, दैट इज नॉट द वे टू लिव लाइफ।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सरल शब्दों में वरिष्ठ नागरिकों को आंखों की देखभाल के मूल मंत्र दिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, आप थे डॉक्टर उपशम गोयल। याद रखिए आपकी आंखें अनमोल हैं। यदि धुंधलापन लगे या रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत हो तो इसे बुढ़ापे का असर कहकर नजरअंदाज न करें, बल्कि डॉक्टर की सलाह लें। और यदि आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज है तो कम से कम हर साल एक बार आंखों के पर्दे की जांच अवश्य कराएं। आज के अंक में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिख भेजिएगा, हमें आपके सुझावों और आपकी प्रतिक्रियाओं का तहे दिल से इंतजार रहेगा। यदि आपके मन में स्वास्थ्य, संस्कृति या वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा कोई सवाल हो या आप अक्षयवट के माध्यम से अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम अक्षयवट, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन संख्या नोट कर लें 226001। आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है pkldlko@gmail.com। पता एक बार फिर नोट कर लें pkldlko@gmail.com। अब आज के अंक को यहीं विराम देने के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर अलका चौधरी को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। अक्षयवट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षयवट।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट, इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया डॉक्टर अलका चौधरी ने।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने

का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज अपराह्न 3:30 पर आप सुनेंगे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम। आज का विषय रहेगा किडनी रोग, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुभाष खन्ना।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म शहीद के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत और संगीत प्रेम धवन का है। सुनने का अनुरोध करते हैं आप सब। नवीन जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी बाराबंकी विकास चंद्र त्रिपाठी, CO सदर बाराबंकी संगम सिंह, ट्रैफिक प्रभारी बाराबंकी रामयतन आशीष कुमार, थाना सफदरगंज बाराबंकी से इंस्पेक्टर अमर सिंह चौरसिया, थाना माती से इंस्पेक्टर अजय त्रिपाठी। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म शहीद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लोफर से स्वर लता मंगेशकर के, शब्द रचना आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सुनने का अनुरोध करते हैं आप सब। बाराबंकी कोतवाली से एसआई अजहर खान, हेड कांस्टेबल विजय कुमार और विशाल शुक्ला, सिटी चौकी इंचार्ज बाराबंकी से संजीव कुमार, एसआई अजीजुल हसन, हेड कांस्टेबल रामखेलावन, राजेंद्र कुमार, अन्नू सिंह और सुनील कुमार, थाना जहांगीराबाद बाराबंकी से एसआई अमरेश सिंह और महिला बाल सुरक्षा संगठन प्रभारी मुन्ने सिंह। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म लोफर का ये गीत।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। सुनने का अनुरोध किया है पलवल हरियाणा से नरेश, संगीता, भाव्यांश, राजेंद्र, महेश, अमित, सूरज, सचिन, सतीश, शानू, आयुषी, कार्तिक और बघेल परिवार के सभी सदस्य, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, श्री आश्रम सिंह, कशिश देवी, आयुष कुमार, विश्वास कुमार शाहजहाँपुर से, देवेंद्र सिंह यादव, दंगल यादव, अभिनव यादव, दीपेश, अनामिका, अनुराग, सुनीता यादव, अभिनव यादव, धर्मेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर से। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत।

और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जीने की राह का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सुनने का अनुरोध करते हैं आप सब डॉक्टर विवेक शर्मा, नगरा CHC, रीना विश्वकर्मा, विक्रांत, रिशु, सुजीत यादव, लालचंद यादव और रामजीत यादव, थाना नगरा बलिया से। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म जीने की राह का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म कारवां का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। सुनने का अनुरोध करते हैं आप सब। रामजीत, अनुराग, आयुष, शौर्य, विराट, अशोक, कार्तिकेय कुमार, सुरेंद्र शर्मा, केशव शर्मा, गौरव शर्मा, हर्षित सिंह, नीतू यादव, शिखा श्रीवास्तव, विमलेश कुमारी, चंद्रमा यादव, घुड़सवार पुलिस सब इंस्पेक्टर, स्वर्ण पदक विजेता पुलिस लाइन लखनऊ से। तो दीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म कारवां का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करना का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने

0: जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है।

0: अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है।

0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्ची में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर संजय कुमार मिश्र से भेंट वार्ता। विषय है गर्मी में पशुओं का खान पान और रख रखाव। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन से आप जुड़े हैं तो गर्मी चरम पर है। ऐसे में बढ़ती गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था और उनका प्रबंधन कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप निदेशक पशुधन विकास डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि गर्मी काफ़ी अधिक है, ऐसे में पशुओं की आहार व्यवस्था में क्या कुछ करें कि पशुपालक भाई बहन कि पशु स्वस्थ रहें और अच्छा दुग्ध उत्पादन मिलता रहे।
3: पशु की जितनी समस्याएँ होती हैं उन सब में सबसे अधिक योगदान इस गर्मी का होता है, जिससे कि ताप तनाव उत्पन्न होता है। पशुओं का जो परिवेशी तापमान सामान्य तापमान है वो 18 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गर्मी में वातावरण का तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है
2: जी।
3: और गर्मी के तनाव के जो मुख्य लक्षण हैं उन लक्षणों में लार का अधिक स्राव होना, खुले मुँह से हाँफना, पशु छाया में जाने की कोशिश करता है, पशु लेटने की अपेक्षा सदा खड़ा रहना पसंद करता है, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है और अक्सर 104 से 106 डिग्री फारेनहाइट तक पाया जाता है
2: तापमान
3: पशु का।
2: डॉक्टर साहब, कई बार तेज गर्मी के चलते निर्जलीकरण भी हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में।
3: निर्जलीकरण से संबंधित शुष्क मसूड़े और श्लेष्मिक झिल्ली भी सुस्त हो जाती है, ड्राई हो जाती है। पशुओं में निर्जलीकरण की स्थिति खराब होने पर पशुओं की जो आंखें होती हैं वो धसी हुई होती हैं और हृदय की जो धड़कन होती है वो तेज हो जाती है। तो निर्जलीकरण का पता लगाने के लिए स्किन पिंच परीक्षण किया जाता है
2: जी।
3: ये स्किन पिंच परीक्षण पशु की गर्दन के पास की त्वचा की तह को एक चुटकी से दबाएं या तंबू सा बनाएं उठा करके, फिर उस त्वचा को छोड़ दें और उस तह को समतल होने में कितना लगभग समय लगता है इसका समय नोट करें। सामान्यतः पशुओं की त्वचा को अपनी प्राकृतिक अवस्था में आने में 2 सेकंड से भी कम समय लगता है।
2: अच्छा,
3: परंतु यदि 4 सेकंड से अधिक समय लगता है तो निर्जलीकरण का प्रतिशत अर्थात डिहाइड्रेशन का प्रतिशत 8% तक हो सकता है
2: जी।
3: और यदि 4 सेकंड से अधिक समय लगता है तो निर्जलीकरण की स्थिति खतरनाक और संभावित रूप से जानलेवा स्थिति में पशु पहुंच चुका होता है।
2: तो इसको तो पशुपालक भाई आसानी से कर सकते हैं।
3: हाँ, आसानी से कर सकते हैं, प्रत्येक पशुपालक जो ये चेक कर सकता है।
2: डॉक्टर साहब, ये जो ताप का तनाव है यानी बढ़ता तापमान है, इसका दूध पर क्या प्रभाव होता है?
3: ये बिल्कुल उत्कृष्ट प्रश्न है कि जब गर्मी इतनी बढ़ती है तो दुग्ध उत्पादन में भी कमी आती है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अपने देश भारत में राष्ट्रीय स्तर पर तापीय तनाव के कारण देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 2%, जो कि वार्षिक 2,661.62 करोड़ रुपये के लगभग बराबर होता है, का लॉस जो है हर साल होता है
2: जी।
3: प्रारंभिक ब्यात में तापीय तनाव के कारण दूध की आपूर्ति में 14% की कमी देखी गई है, जबकि मध्य ब्यात में 35% तक की कमी दुग्ध में देखी गई है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के शोधकर्ताओं के अनुसार गर्मियों के दौरान विशेष रूप से मई और जून में तापीय तनाव और डेयरी पशुओं का समुचित देखभाल न होने के कारण संकर गायों में 15 से 20% और भैंसों में 10 से 15% दूध

0: में गिरावट दर्ज की गई है। दुग्ध उत्पादन में मुख्य योगदान देने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या ये जो तापन है यानी बढ़ता तापमान है, इसका पशुओं के प्रजनन पर भी असर है?
0: बिल्कुल, जो शरीर के जितने सिस्टम हैं, चाहे वो प्रजनन तंत्र हो, चाहे वो प्रसंचरण तंत्र हो, चाहे वो जो है पाचन तंत्र हो, चाहे वो लोकोमोटरी चलन तंत्र हो, जितने भी तंत्र हैं, मस्तिष्क तंत्र हो, सारे तंत्रों पे इसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है।
1: अब ये बताएं कि ये जो हीट स्ट्रेस है यानी तापन है, बढ़ता तापमान है, इसका पशुओं पर असर न हो, इसके लिए प्रबंधन क्या कुछ करें पशुपालक भाई बहन?
0: इसके प्रबंधन के लिए हम तीन मुख्य बातें लेते हैं, प्रजनन प्रबंधन, पशु आहार या पोषण प्रबंधन और आवास प्रबंधन।
1: जी,
0: इन तीनों बिंदुओं के गिर्द गिर्द जो है तापी तनाव का जो वृत्तांत है वो पूरा घूमता है।
1: तो आहार व्यवस्था में क्या करें?
0: सबसे पहले प्रजनन प्रबंधन की बात करते हैं।
1: जी,
0: क्योंकि प्रजनन जब होगा तभी जो है उत्पादन होगा और तभी जो है बच्चे का उत्पादन होगा और दूध का उत्पादन होगा।
1: जी,
0: तो प्रजनन प्रबंधन में क्या होता है, जब ज्यादा ताप होता है, गर्मी का 45 से 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो जो पशु में गर्मी के लक्षण होते हैं, कम से कम गर्मी के लक्षणों वाली गायों की और भैंसों की पहचान के लिए एक अच्छा हीट डिटेक्शन प्रोग्राम स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे थर्मल आराम अवधि की तुलना में हीट स्ट्रेस की स्थिति के दौरान गर्मी के कमजोर और कम लक्षण प्रदर्शित करती हैं। प्रजनन को जारी रखने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्राकृतिक गर्भाधान में सांड और गाय दोनों में गर्मी के तनाव अर्थात हीट स्ट्रेस के कारण अस्थायी बांझपन होता है। एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डेयरी किसानों को गर्मी को सहन करने वाले पशुओं के आनुवंशिक चयन कार्यक्रमों में गर्मी सहन करने वाले लक्षणों को शामिल करने से लाभ होगा।
1: डॉक्टर साहब, अब आहार व्यवस्था की बात कर ली जाए कि आहार व्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन करें कि ये जो गर्मी का तनाव है वो पशु पर ना आए, उसके उत्पादन पर ना आए।
0: हाँ, गर्मी के तनाव में पोषण में जो होता है हरे चारे का ज्यादा से ज्यादा समावेश करें, जैसे इस समय जो होता है चरी है और मक्का है, ज्वार है, हाँ। इस तरह के चारों का अगर प्रयोग करते हैं तो तापी तनाव में कमी आती है और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। गर्मी के तनाव वाले पशुओं में प्रजनन और उत्पादकता के खराब परिणाम होने की संभावना सबसे अधिक होती है, अतः गर्मी के तनाव के दौरान चारे का सेवन पशु कम कर देता है। इस प्रकार ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है जो कि सामान्य चारे से पूरी नहीं हो पाती है।
1: डॉक्टर साहब, जब तापमान अधिक होता है तो चारे में विषाक्तता भी हो जाती है?
0: तापमान अधिक होता है तो सभी चारों में विषाक्तता नहीं होती है, जो ज्वार होती है और अगर बारिश नहीं होती, टेम्परेचर होता और बारिश नहीं होती है
1: या भरपूर सिंचाई नहीं हुई,
0: हाँ बारिश नहीं होती है और भरपूर सिंचाई नहीं हुई, ऐसी स्थिति में हाइड्रोसानिक एसिड बनता है जिससे एचसीएन पॉइजनिंग होती है और उसमें पशु की मृत्यु लगभग लगभग निश्चित ही होती है अगर उसको समय पर उपचार ना मिले।
1: डॉक्टर साहब, ताजा पानी भी महत्वपूर्ण है?
0: बिल्कुल, बासी पानी की अपेक्षा ताजा पानी देना चाहिए और ये ताजा पानी जो है इस तरह से होना चाहिए कि उसको कम से कम 4 से 5 बार दिन में पिलाएं, क्योंकि पशुओं की जो आवश्यकता होती है 35 से 40 लीटर के लगभग पशु नॉर्मल देर में होती है, जबकि गर्मी की अवस्था में दुगनी पानी की आवश्यकता होती है अर्थात 70 से लेकर 80 लीटर तक प्रति पशु प्रतिदिन पानी देना चाहिए जिससे कि डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न ना हो।
1: डॉक्टर साहब, दाना मिश्रण में भी कोई परिवर्तन की आवश्यकता है?
0: दाना मिश्रण में जो होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन और बाईपास प्रोटीन खिलाते हैं जिससे दूध में प्रोटीन का स्तर भी बढ़ता है और दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त खल और चोकर इनको भी देते हैं तो खल से भी वसा मिल जाती है जो सांद मिश्रण कंसंट्रेट मिक्सचर के साथ में अच्छा प्रभाव उत्पन्न करती है, दुग्ध उत्पादन पर भी अच्छा प्रभाव डालती है और गर्मी के तनाव को भी कम करती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आवास प्रबंधन भी बड़ा महत्वपूर्ण है
0: जी
1: बढ़ते तापन में, तो ये जो तेज गर्मी है इससे बचाव, पशु सुरक्षित रहें, इसके लिए आवास प्रबंधन में क्या तब्दीली हो?
0: आवास प्रबंधन में सबसे बड़ी चीज जो होती है कि जो आवास बनाया जाए पशु का उसकी जो धुरी होती है पश्चिम से पूरब की ओर होनी चाहिए
1: जी।
0: कि पश्चिम से पूरब की ओर जब होगी तो जो सूर्य की प्रखर किरणें उत्तर दक्षिण में जब पड़ती हैं वो पशु आवास तक नहीं पहुंचेंगी और अंदर के वातावरण जो है वो ठंडा रहेगा
1: जी।
0: इसके अलावा जो होता है गर्मियों में संकर गायों के लिए जो विदेशी

0: नस्ल की क्रॉसब्रेड गायें हैं, जर्सी फ्रीजियन हैं या भैंसे हैं, इनमें ताप तनाव की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, इनमें समस्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पंखे लगा देते हैं और कूलर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक फव्वारा सिस्टम होता है,
1: जी
0: जो फव्वारा सिस्टम को अगर लगा देते हैं तो बीच बीच में पानी की बूंदें जब पड़ती रहती हैं तो उससे ताप तनाव काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है, आवास का भी और उसके साथ पशु का भी।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था और उनके प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-100-77-202 94-100-77-202 94-100-77-202।
1: डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था क्या हो और उनका प्रबंधन कैसे करें पशुपालक भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गर्मी में पशुओं का खान पान और रख रखाव, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर संजय कुमार मिश्र से भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: लीजिए एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई सन 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें https://prasarbharti.gov

www.in/nipp/ या https://akashvani.gov.in/files.nipp.pdf। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं राजेश त्रिपाठी। आज हम आपको सुनवाएंगे आपके गाए हुए कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस कहरवा के साथ।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप राजेश त्रिपाठी के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत सुन रहे हैं। अब लीजिए सुनिए आपसे ये कहरवा।

अभी आप सुन रहे थे राजेश त्रिपाठी के स्वर में ये कहरवा। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 kHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, सुधा मल्होत्रा और SD बातिश के स्वर में बरसात की रात फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है साहिर ने और संगीत रोशन का है।

और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और शमशाद बेगम के स्वर में ये कव्वाली, फिल्म चौदहवीं का चांद। कव्वाली को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है रवि ने।

दिल ही तो है। लीजिए सुनिए इस फिल्म की एक कव्वाली, स्वर आशा भोसले और साथियों की। इसे लिखा है शाहिर ने और संगीत रोशन का है।

अभी आपने सुनी डॉक्टर कन्हैयालाल झा से संस्कृत वार्ता रामायणे दूत कर्म कौशलम और संस्कृत श्लोक। इसके साथ ही आज का संस्कृत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगी सोमना एस पांडे और नीना सोनकर। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला सुनिएगा आज रात्रि 11:10 से। विषय रहेगा वंचितों को वरीयता।

0: अब सुनिए हमारा आज का ये कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर।
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि हम इस कार्यक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे विधा विशेषज्ञ को आपके पास लाते हैं और उससे उस विषय के संदर्भ में ढेरों ऐसी बातें जानते हैं, ढेरों आपके सवाल पूछते हैं, ढेरों आपके वो जो सवाल हैं, आपके जो भ्रम हैं वो उनसे साझा करते हैं, उनके उत्तर लेते हैं या उनके सुझाव लेते हैं। तो दोस्तों जो आज का विषय है वो है किडनी संबंधी रोग, कारण, लक्षण और बचाव। हम बहुत बार दोस्तों बात करते रहते हैं कि किडनी से संबंधित दिक्कत हो गई या हमारे किडनी में ये दिक्कत है, बहुत बार हम जान ही नहीं पाते और जो ये रोग है वो भयावह रूप ले लेता है या बड़ा रूप ले लेता है। तो कैसे जाने कि किडनी में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या बीमारियां होती हैं, क्या लक्षण प्रकट होते हैं, कैसे बचाव किया जाए, इन ढेर सारी बातों को आज हम जानेंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह से। आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और कई वर्षों से इस विधा में कार्यरत हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: सर। हम बहुत बार जब शरीर की देखभाल की बात करते हैं तो कई बार बाह्य अंगों की तो हम देखभाल कर लेते हैं, विशेषकर जब किडनी की बात आती है तो हम जान नहीं पाते हैं कि इनमें कौन सी बीमारियां होती हैं, कब होती हैं, क्यों होती हैं।
2: देखिए किडनी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है ब्लड को फिल्टर करना। ये खून को फिल्टर करता है और उसके बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको पेशाब के सहारे से वो शरीर से बाहर ले जाता है। किडनी में कई तरह की बीमारियां होती हैं, इनको आप पेशेंट के एज के हिसाब से या फिर बीमारी की वजह के हिसाब से वर्गीकृत कर सकते हैं।
1: जी, जी, जी।
2: कई केस में देखा गया है कि कुछ सेकेंडरी कॉजेस हो सकते हैं, कुछ प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब वजह कुछ और है, इसकी वजह किडनी खराब हो रही है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा कारण है, जैसे कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन या फिर किसी को पहले से स्टोन या किडनी में बार बार पथरी बनने की समस्या है। इसके अलावा कुछ प्राइमरी कारण होते हैं, प्राइमरी कारण जो कि किडनी के अंदर से ही स्टार्ट होते हैं। खासतौर से किडनी जो है हमारा वो एक फिल्टर की तरह काम करती है, उसमें बहुत सारे फिल्टर होते हैं। अगर किसी भी वजह से, किसी इन्फेक्शन से या इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से वो फिल्टर खराब होता है तो किडनी के खराब होने की संभावना रहती है। उसके बाद में कई बार किडनी खराब होती है तो फिर बीपी की समस्या आती है, या फिर कई बार देखा गया है कि पेशाब में जैसे कि झाग बनने की समस्या या और अलग सिम्टम्स हैं जैसे कि पैरों में सूजन आना, हाथ पैर में सूजन आना, खून की कमी होना, ये सब समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं।
1: वर्गीकरण की आप बात कर रहे थे उम्र की, तो
2: जी हाँ, अलग अलग उम्र में अलग अलग हिसाब से ही ये बीमारी सिम्टम के साथ में आती है। जैसे कि बच्चों में देखा गया है ज़्यादातर जो इन्फेंट होते हैं या फिर 10-12 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें कई बार देखा गया है कि जेनेटिकली कुछ बीमारियां होती हैं जो किडनी को ख़राब कर सकती हैं। कई बार देखा गया है कि किडनी की बनावट या उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, उसकी वजह से किडनी की समस्या होती है, या फिर कुछ जेनेटिक बीमारियाँ जैसे किडनी में सिस्ट की समस्या है। और एक और मुख्य बीमारी है जो खासतौर बच्चों में देखा जाता है जिसमें कि किडनी में फिल्टर खराब होते हैं, उसकी वजह से प्रोटीन निकलने लगता है पेशाब के रास्ते में, इसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये बच्चों में बहुत ही कॉमन रूप से पाई जाती है। दूसरा यंग जो उम्र के लोग होते हैं उनमें भी देखा गया है ज़्यादातर प्राइमरी बीमारियाँ होती हैं, किडनी की फिल्टर की समस्या होती है। ऐसे लोग अधिक बीपी के साथ में या पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या ब्लड आ रहा है उसके साथ में प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो मुख्य कारण है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा शुगर की वजह से देखा गया है कि अगर किसी को शुगर 10-12 साल से ऊपर का हो गया है, शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, बीपी ज़्यादा रहता है, तो अंततः उनके भी किडनी में समस्या आती है और प्रोटीन आना, क्रिएटिनिन बढ़ना, ये सारी समस्या स्टार्ट होती है।
1: क्या बदलाव कर लिए जाए, जैसे आपने कहा भी कि खास करके युवा में कि वो क्या बदलाव कर लिए जाए कि ये दिक्कतें ना हो, खासकर आपने जैसे बीपी की बात की कि कई वर्षों तक रहता है या डायबिटीज कई वर्षों तक है, दिक्कत हो सकती है।
2: तो ऐसे लोग खास तौर से जिनको लंबे टाइम से शुगर की समस्या है या बीपी की समस्या है, इसके अलावा एक दो और कारण जैसे कि मोटापा है
1: जी,
2: और किसी को पथरी वगैरह की समस्या है पहले से, तो उन लोगों में किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। या फिर कई बार देखा गया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में शुगर की समस्या है या घर में किसी को बीपी की समस्या है तो उनमें भी देखा गया है कि शुगर बढ़ सकता है और उसकी वजह से अल्टीमेटली किडनी पे असर आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को समय समय पर, खासतौर से अगर फैमिली हिस्ट्री है या पहले से शुगर वगैरह है, तो कुछ

0: पर्टिकुलर छोटी छोटी जांचें होती हैं जिसके द्वारा हम बड़ी आसानी से किडनी की समस्याओं को पता कर सकते हैं। सिम्टम पे ध्यान रखना है
1: जी,
0: और एक रेगुलर इंटरवल पर जांच कराते रहना है, बीपी और शुगर को अच्छे से कंट्रोल करके।
1: सिम्टम पे ध्यान देना, आपने कहा कि भाई कोई क्या लक्षण दिखने लगे कि हम समझ रहे हैं कि किडनी संबंधी दिक्कत हो रही है।
0: हाँ, किडनी की बहुत सारी ज़्यादातर बीमारियाँ हम बोलते हैं कि वो साइलेंट किलर की तरह होती हैं। साइलेंट किलर का मतलब ये है कि सिम्टम बहुत जल्दी नहीं आते हैं, और जब सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं तब तक देखा जाता है कि काफ़ी देर हो चुकी होती है, किडनी में काफ़ी नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको शुगर है, बीपी है, फैमिली हिस्ट्री है, या पहले कभी किसी वजह से किडनी में कोई समस्या हुई है, तो एक रेगुलर इंटरवल पर उसको चेक कराते रहना है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं खासतौर से, जैसे कि हाथ पैर में सूजन आना, पैरों से स्टार्ट होती है, चेहरे पर सूजन आ रहा है, या धीरे धीरे करके सांस फूलने की समस्या है, बहुत ज़्यादा चलने फिरने पर सांस फूलने लगती है, खून की कमी हो रही है, कई बार देखा गया है कि पेशाब में झाग आ रहा है, प्रोटीन बन रहा है, या पेशाब में कभी ब्लड आया, किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा।
1: परीक्षण की आपने बात की, कौन से टेस्ट करा लिए जाएं कि जिससे आइडिया लग जाए कि दिक्कत हो रही
0: है। बिल्कुल, हाँ, किडनी की बीमारी से संबंधित कुछ 3-4 बहुत ही मिनिमल टेस्ट होते हैं, सिंपल से टेस्ट हैं, जिनके आधार पर एटलीस्ट हम किडनी की शुरुआती बीमारियां या उनके बारे में जान सकते हैं।
1: जी,
0: खासतौर से ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम कई बार CBC कराते हैं जिसमें हमें हीमोग्लोबिन का पता चलता है, क्योंकि किडनी की बीमारियों में हीमोग्लोबिन भी देखा जाता है कि कम बनता है, खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा एक किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, KFT।
1: जी,
0: किडनी फंक्शन टेस्ट में हम लोग ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें, और यूरिक एसिड देखते हैं, क्योंकि जब भी किडनी में समस्या आती है तो देखा जाता है कि क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है या फिर यूरिया बढ़ता है। इसके अलावा यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी की जाँचों को पता करने के लिए। यूरिन एक पूरी तरह से किडनी का ही समझ लीजिए मिरर है, उसमें जब भी हम चेक करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए देखते हैं, जैसे कि उसमें प्रोटीन को चेक करना है, ब्लड तो नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन का जैसे पस सेल या फिर इस तरह की चीज़ें तो नहीं आ रही। तो ये 3 सिंपल से टेस्ट हैं जो किडनी के लिए हम लोग अमूमन करते हैं।
1: आपने जैसे कहा कि भाई साइलेंट किलर, कई बार वो लोग समझ नहीं पाते हैं, और हमारे कई श्रोता विशेष करके वो जो गाँव में रहते हैं या जो इतने अवेयर नहीं, इतने जागरूक नहीं है कि वो बार बार रूटीन टेस्ट कराते रहें, या जो आपने जैसे बताया कि KFT कराते रहें या इससे संबंधित और टेस्ट कराते रहें, हमारे उन श्रोताओं को जो विशेष करके इस चिकित्सा के क्षेत्र में ये यहाँ नहीं जाते टेस्ट कराने और किडनी को समझ नहीं पाते, उन्हें क्या बताना चाहेंगे?
0: उनमें भी सिंपल आपको सिम्टम्स ध्यान रखना है, किडनी के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनके लिए अवेयर रहना है। थोड़ा सा भी सूजन वगैरह आता है या बार बार फीवर हो रहा है, पेशाब में जलन वगैरह, पेशाब लाल होना, पेशाब में झाग वगैरह आना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, या किसी भी वजह से आपको पता चला है कि भाई शुगर है, BP है, तो इस तरह का कोई भी सिम्टम आता है उसके लिए अवेयर रहिए और इग्नोर नहीं करना है। अगर लग रहा है कि आपको BP है तो BP अगर डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी हैं आपको तो दवाइयाँ खाना है, ऐसा नहीं कि कोशिश करना है कि अपने आप ही ठीक हो या इस तरह से हो, क्योंकि BP अगर लगातार बढ़ा रहेगा वो भी किडनी पर असर करेगा, शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो भी असर करेगा। तो दवाइयाँ रेगुलर खानी है, सिम्टम्स के लिए अवेयर रहना है, और किसी भी तरह की दिक्कत अगर होती है तो शीघ्र संपर्क करना है डॉक्टर से।
1: मतलब डॉक्टर से जरूर संपर्क करना है और ये देखते रहना है कि अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप तुरंत परीक्षण कराएं, और डॉक्टर जब तक दवाएं बता रहे हैं
0: बिल्कुल उनको नजरअंदाज नहीं,
1: खुद डॉक्टर ना बने। जी, क्या खान पान से भी इसका कोई संबंध है इन बीमारियों का?
0: बिल्कुल, खान पान से डायरेक्ट रिलेशन है किडनी की समस्याओं के लिए
1: जी,
0: क्योंकि बहुत सारी मेटाबॉलिक चीज़ें जो हमारे मतलब खान पान से और मेटाबॉलिज्म से होती हैं, खासतौर से शुगर है, BP है। तो देखा गया है कि आज की तारीख में खासतौर से एक ओबेसिटी, मोटापा, वो भी एक बड़ा रीजन है किडनी की समस्याओं के लिए। ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि यूरिन में प्रोटीन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, शुगर अनकंट्रोल रहता है, इसके अलावा कुछ और हैबिट जैसे कि स्मोकिंग खासतौर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है किडनी की समस्याओं के लिए। एक रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अपने शरीर को फिट रखना है और डाइट पर कंट्रोल करके रखना।
1: किडनी स्टोन की भी बातें बार बार आते हैं, कई बताते हैं कि हमारी किडनी स्टोन हो गया है, क्या ये केवल किडनी स्टोन तक ही सीमित रहता है या आगे कोई गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है?
0: बिल्कुल, किडनी स्टोन भी एक किडनी खराब होने का बहुत बड़ा रीज़न है। कई बार देखा गया कि जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, डिहाइड्रेशन रहता है, पानी वगैरह सही से नहीं पीते हैं, ह्यूमिड कंडीशन में रहते हैं, तो उनमें किडनी में स्टोन बनने की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। खासतौर से अगर किडनी का स्टोन आपके पेशाब के रास्ते में है तब तो कई बार पता चलता है, लेकिन कई बार अगर किडनी में ही वो बना रहता है तो पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उसमें पेन या फिर पेशाब के इस तरह के संक्रमण के जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो वो लंबे टाइम तक इग्नोर होता रहता है और अल्टीमेटली फिर वो किडनी को खराब कर सकते हैं।
1: हम रक्तचाप की बात कर रहे थे, हमारे एक श्रोता ने पूछा भी क्या घटते बढ़ते रक्त

0: आपका किडनी के सुरक्षित रखने और ना रखने में कोई संबंध है?
1: जी हाँ बिल्कुल, किडनी बीपी की वजह से भी ख़राब होती है, और कई बार देखा गया है कि अगर किडनी की समस्याएं पहले से स्टार्ट हो रही हैं तो उसकी वजह से बीपी भी बढ़ सकता है। कई बार देखा गया है कि अगर एक बार किडनी डैमेज हो गया तो हमें ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि बीपी की वजह से किडनी ख़राब हो रही है, किडनी की वजह से बीपी में बढ़ोतरी हो रही है। तो बीपी कंट्रोल रखना है, एक गाइडलाइंस मानक के अनुसार बीपी को कंट्रोल रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बीपी अगर बार बार बढ़ता है, खासतौर से ऐसा जिसमें अचानक से बीपी बढ़ता है और कम रहता है, या दवाइयाँ कई बार छूट जाती हैं, तो उसमें किडनी के डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।
0: क्या कोई ऐसा परीक्षण है जिसको कि हर एक 6 महीने इंटरवल पर या साल भर पर कराते रहना चाहिए कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी किडनी ठीक है, सुरक्षित है?
1: जी हाँ बिल्कुल, बीपी और शुगर तो आपको चेक करना ही करना है, साथ में जो मैंने पहले टेस्ट बताए थे, 3 टेस्ट, किडनी
0: जी जी
1: फंक्शन
0: जी
1: टेस्ट,
0: जी
1: यूरिन का टेस्ट और सीबीसी।
0: मतलब आपको टेस्ट कराते रहने हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी ठीक है, और यदि कोई दिक्कत हो रही है आप तुरंत डॉक्टर
1: हाँ
0: को
1: बिल्कुल
0: दिखाएं।
1: बिल्कुल,
0: जी, मोटापे से हम लोग बात कर रहे थे, क्या मोटापा यदि किसी व्यक्ति में है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किडनी में दिक्कत हो सकती है?
1: जी हाँ, किडनी मोटापे की वजह से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो
0: जी
1: किडनी में समस्या पैदा करता है, ख़ास तौर से यूरिन में प्रोटीन आना, जो मोटापे की वजह से देखा गया है कि यूरिन में भी प्रोटीन आने की समस्या रहती है। इसके अलावा ख़ास तौर से ऐसे पेशेंट जो ओबीज हैं, वो ज़्यादातर डायबिटिक या हाइपरटेंशन रहते हैं, तो उनमें देखा गया है कि डायबिटिक या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बीपी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और सारी चीज़ें मिलकर अल्टीमेटली फिर आपकी किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं।
0: दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हम इस कार्यक्रम में आपको प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाते हैं, तो आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों एक बार पुनः आपका कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत है और हम डॉक्टर अमित कुमार सिंह से किडनी संबंधी रोगों के बारे में बातचीत कर ही रहे हैं।
1: एक श्रोता है, उन्होंने पूछा हमसे कि जब मान लीजिए किडनी खराब हो गई हो या किडनी में दिक्कतें हो रही हो तो क्या खाने का कोई डाइट ऐसा चार्ट बनना चाहिए कि जिससे हमें ये पता रहे कि हमें प्रोटीन इतना लेना या ये पदार्थ हमें नहीं खाने।
2: किडनी की समस्याओं के आधार पर मोटा मोटा किडनी की बीमारियों को दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, सडन या अचानक होने वाली किडनी बीमारी। दूसरी होती है क्रोनिक किडनी इंजरी, जिसमें किडनी की बीमारी लंबे समय से चल रही होती है और उसको भी हम लोग 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक।
1: जी जी,
2: हर स्टेज के अनुसार आपकी डाइट में चेंजेस करने होते हैं, खासतौर से आप डेली कितना कैलोरी ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं। इसके अलावा अगर किडनी का स्टेज ज़्यादा रहता है तो देखा गया है कि कई बार यूरिन कम होने की संभावना रहती है, तो उस स्टेज में कई बार बोला जाता है कि पानी या फ्लूड का सेवन भी जिस तरह का आपका पेशाब आ रहा है उसके अनुसार ही रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन का इनटेक
1: जी।
2: एक हेल्दी जो मनुष्य है उसके कंपैरिजन में किडनी की बीमारी स्टेज के आधार पर प्रोटीन के इंटेक को कम करना है या ज्यादा करना है डिपेंड करता है।
0: अब डॉक्टर साहब, जैसे हमने ये जान भी लिया कि ये दिक्कतें हो सकती हैं, ये स्टेजेस हैं, किडनी का जो परीक्षण है वो करा कर ये आप जान सकते हैं कि ये सुरक्षित है या नहीं है, खान पान में भी हमने ये बदलाव कर लिए। डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता है, उनका एक बड़ा बेसिक सा सवाल है। जी, अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्ते सर, किडनी को कैसे सुरक्षित रखें?
2: देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खान पान और एक्सरसाइज, जिसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप बोल सकते हैं।
1: जी जी जी।
2: अपने खान पान में खासतौर से बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, नमक वाली चीजें या प्रोसेस्ड फूड जिनको बोलते हैं, प्रिजर्व्ड फूड बोलते हैं, उनको अवॉइड करना है। नमक का सेवन कम करना है, खासतौर से वो पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन है या फिर शुगर की समस्या है। और इसके अलावा इसका एक फिक्स क्वांटिटी है जिसके आधार पर उसको आपको नमक लेना है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा अगर लग रहा है कि एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है या फिर एज के अनुसार या किडनी का स्टेज या

0: कमजोरी है तो योगा या फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट फिजिकल एक्टिविटी एक तरह से आपके मांसपेशियों को मजबूत करती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करती है, शुगर कंट्रोल, पीपी कंट्रोल, हर चीज़ में आपकी मदद करती है। इसके अलावा एडिक्शन जिसको बोलते हैं, खासतौर से मैंने पहले बताया स्मोकिंग, तो स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है किडनी की हेल्थ के लिए, तो जितना हो सके स्मोकिंग नहीं की जाए और अल्कोहल वगैरह का सेवन भी कम से कम किया
1: कम
0: जाए।
1: किया जाए। डॉक्टर साहब, एक और हमारे एक कॉलर हैं जिन्होंने अपना सवाल पूछा है। जी, अपना सवाल। जी
2: नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 25 वर्ष है। लेट नाइट खाना या अनियमित जो दिनचर्या है, उससे क्या मुझे किडनी संबंधी कोई समस्या हो सकती है?
0: बिल्कुल, अगर इस तरह की लाइफस्टाइल है जिसमें डाइट का कोई कंट्रोल नहीं है या लेट नाइट जागना है, सारी चीज़ें हैं, तो अल्टीमेटली ये भी किडनी की समस्या बढ़ाती हैं। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म चेंज करती हैं जिसकी वजह से आपका शुगर अनकंट्रोल हो सकता है या नहीं है तो शुगर की समस्या हो सकती है, बीपी अनकंट्रोल हो सकता है, बीपी की समस्या, सारी चीज़ें हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें किडनी को इफेक्ट करेंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं को किडनी को सुरक्षित रखने के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाइए, ख़ास तौर से अपने डाइट में परिवर्तन कीजिए, प्रोसेस्ड फूड, तला भुना, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ये सब अवॉइड करिए, स्मोकिंग अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, और पहले से अगर किडनी की समस्या नहीं है तो अपने शरीर को हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। फ्लूड या पानी एक इंटेक जो है वो
1: जी
0: हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे और किडनी आराम से अच्छी तरह से फिल्टर कर सकें।
1: तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अमित कुमार सिंह, और आपने किडनी संबंधी ढेर सारी ऐसी जानकारियां डॉक्टर साहब से ले ली होंगी। आपके जो सवाल हैं उनके जवाब भी डॉक्टर साहब ने दे दिए हैं, आपके कई भ्रम डॉक्टर साहब ने दूर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने किडनी की सुरक्षा कर लेंगे, ढेरों ऐसी बातें जान लेंगे कि जिससे आप अपने खान पान में, अपने रहन सहन में बदलाव करके अपने किडनी को सुरक्षित कर पाएंगे। आप खुद भी अपने किडनी को सुरक्षित रखेंगे, अपने आस पड़ोस में भी ये बातें साझा करेंगे, बातें बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि कोई ऐसी दिक्कत हो रही हो तो खुद ना डॉक्टर बनकर तुरंत अस्पताल में दिखाने जाएं। आपके नजदीक में ढेर सारे ऐसे अस्पताल उपलब्ध हैं। तो डॉक्टर अमित, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमें यूं ही सुनते रहें, हमें लगातार फोन करते रहें, अपने संदेश भेजते रहें। हमारे अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो है योग और प्राणायाम की हमारे जीवन में भूमिका। आप इससे संबंधित हमें सवाल, अपने संदेश भेज सकते हैं, हम आपके सवाल और संदेश अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हम अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपके सवाल साझा करेंगे और उनकी राय आपके सवाल पर जानेंगे। नमस्कार, हमें यूं ही सुनते रहें, धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया सुभाष खन्ना ने। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने

0: का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है दिव्यांगजनों हेतु कार्यक्रम संकल्प। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर सितांशु कुमार से भेंटवार्ता। विषय है दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार के अवसर। आपसे भेंट कर रहे हैं देवाशीष।
2: संकल्प कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को देवाशीष का नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है दिव्यांगजन के लिए स्वरोजगार के अवसर। जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, अगर वो कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं तो वो कौन सा स्वरोजगार कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मापदंड होते हैं, उन्हें धन कहाँ से प्राप्त होगा, जो हमारे बैंक हैं वो क्या उन्हें सुविधा दे सकते हैं, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ प्राप्त करके वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सितांशु कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि बैंक से सेवानिवृत्त होने के साथ साथ एक अस्थिभांति दिव्यांग भी हैं और ये रिटायर होने के बाद स्वरोजगार भी कर रहे हैं। तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर।
3: धन्यवाद देवाशीष जी।
2: तो हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं तो काफी कुछ आपका अनुभव भी रहा बैंक को लेकर के, और अगर बात की जाए हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए तो कौन सी ऐसी योजनाएं बैंक द्वारा उनके लिए चल रही हैं?
3: बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से बैंकों के माध्यम से हमारे आप तक पहुंचती हैं। उसमें एक MSME है, MSME के माध्यम से उसमें रजिस्टर करा के और जो भी दिव्यांगजन अपना रोजगार करना चाहते हैं तो वो आर्थिक सहायता भी और आर्थिक ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, और उस पे सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी भी उनको अच्छी खासी अनुपात में मिल जाती है। और दूसरा, कृषि से संबंधित उद्योगों के लिए या कृषि से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनके लिए भी बैंकों से डायरेक्ट हमारे दिव्यांग बंधु उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जा सकता है।
2: अच्छा, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए एक जो सबसे बड़ी समस्या कह सकते ये रहती है कि उनको जानकारी का अभाव होता है, तो कैसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौशल विकास के माध्यम से हम कौन से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं?
3: दिव्यांगजनों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक शहरी क्षेत्र के दिव्यांगजन और एक ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजन। शहरी क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को तो कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत उनकी योग्यता के अनुसार और उनके क्वालिफिकेशंस के अनुसार वो कौशल विकास केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और अपने हिसाब से वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपना रोजगार कर सकते हैं। वो चाहे कंप्यूटर से संबंधित हो, चाहे कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित हो, चाहे और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कर सकते हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पारंपरिक खेती है हमारी, उस पारंपरिक खेती के अलावा दिव्यांगजन बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो उनको नियमित आमदनी और नियमित धन लाभ भी प्रदान कर सकते हैं।
2: तो जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि शहरी हमारे जो दिव्यांगजन हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो तो चलिए ये है कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आसपास के क्षेत्रों से, लेकिन जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं दिव्यांगजन, वो कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो उनको कौन सा रोजगार करना चाहिए? क्योंकि समस्या ये आती है सबसे पहले धन की, कि कोई भी रोजगार होगा उसमें लगता है धन, तो सबसे पहले कि धन कहाँ से प्राप्त होगा, तो ऐसे कौन से स्कीम है जिसके माध्यम से वो ले सकते हैं, और दूसरी बात ये भी आती है कि धन प्राप्त करने के लिए हमें क्या कोई सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है कि जिससे हम वो धन ले सकते हैं?
3: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लोगों को शंका रहती है। कृषि कार्यों के लिए या जो कृषि से संबंधित और दूसरे रोजगार हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती अधिकांश चीजों में, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं दिव्यांगजन। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई है तो वो मधुमक्खी पालन कर सकता है, वो मुर्गी पालन कर सकता है, वो मत्स्य पालन कर सकता है, वो मशरूम उत्पादन कर सकता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए बैंक से बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण प्रदान किया जाता है और सरकार की तरफ से भी उसमें अनुदान होता है, तो वो अच्छे मात्रा में होता है, जैसे 35-40% तक वो अनुदान होता है।
2: तो अगर आपकी बात की जाए तो आप भी सेवानिवृत्त होने के बाद स्वरोजगार कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा रोजगार है या स्वरोजगार है जो आप कर रहे हैं इस वक्त?
3: मैं पहले ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूंगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो आप मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे से कर सकते

0: सकते हैं और बहुत छोटे स्तर से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा या जानते होंगे कि मधुमक्खी के बॉक्स होते हैं जिसको हम कॉलोनी कहते हैं, और एक बॉक्स में करीब 50-60 हज़ार मधुमक्खियां रहती हैं। तो वो एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली दुनिया भी है वो। अगर किसी को रुचि आ जाती है तो फिर वो उससे हटने की कोशिश ही नहीं करता है। और उसमें आप 5 बक्से से या 4 बक्से से भी शुरुआत कर सकते हैं, और उसमें एक प्रशिक्षण होता है जो उद्यान विभाग के माध्यम से आपको प्रशिक्षण मिलता है, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, या आसपास कोई ऐसे बड़े जो मधुमक्खी पालक हैं उनके पास जाकर भी सीख सकते हैं। तो उसमें वो 4 बक्सों से भी 14 बक्से बना सकते हैं। मतलब उसकी प्रक्रिया एक होती है जो प्रशिक्षण में बताई जाती है, और उसके माध्यम से वो उस 4 बक्सों से अपना व्यवसाय बढ़ाते बढ़ाते जहां तक, कोई लिमिट नहीं है, जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकते हैं।
1: तो अभी आपने कहा कि आप मधुपालन क्षेत्र में अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, तो कितनी लागत आती है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें किन किन विभाग के पास जाना पड़ता है?
0: देखिए, मौन पालन में होता क्या है कि आपको उद्यान विभाग से संपर्क करना होता है। उद्यान विभाग के पास हर साल ऐसी योजना होती है कि वो कुछ लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करके और उनको बिना किसी कीमत के भी बक्से प्रदान करते हैं जो मधुमक्खियों सहित होते हैं। और एक तो रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये है कि वो सब्सिडाइज्ड रेट पे, मतलब जो उसमें बहुत सारी छूट होती है 40% तक, तो वो उसके माध्यम से भी वो बक्से प्रदान करते हैं, तो किसान या हमारे दिव्यांगजन उसका लाभ ले सकते हैं।
1: अगर बात की जाए थी मधुमक्खी पालन की, तो हमारे जो श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन जो व्यवसाय है इसमें लगभग कितना धन खर्च होता है?
0: धन बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा नहीं खर्च होता है। अगर आप 5 बक्से से शुरू करते हैं तो 10-12 हज़ार में आप शुरुआत कर सकते हैं।
1: और लगभग इसमें मतलब कितना मुनाफा होता होगा, कितना समय लगता है? क्योंकि कोई भी नया व्यवसाय शुरू करते वक्त सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ रहती है कि कितना पैसा खर्चा होगा, कितने लागत लगानी पड़ेगी, कितना अर्जन होगा मतलब हमको धन का, और इसके साथ ही कितने लोग लगेंगे इसमें?
0: इसमें केवल शहद ही नहीं प्राप्त होता, और अगर केवल शहद की बात करते हैं तो हमें, अगर हम प्रॉपर प्रशिक्षण लेकर हम उसको उचित रूप से उसको करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो आप एक बॉक्स से 30-35 किलो तक शहद एक सीजन में निकाल सकते हैं। सीजन हमारा स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक रहता है। उस बीच में आप शहद भी निकाल सकते हैं, आपको मोम भी मिलता है, आपको प्रोपोलिस, और वो सारे चीज़ें आपको प्रशिक्षण में बताई जाती हैं। और एक उसमें बहुत ही कीमती चीज़ आप निकाल सकते हैं, जो विष होता है मधुमक्खी का, वो बहुत बहुत महंगा, मतलब उससे महंगा तो मुझे लगता है बहुत कम ही चीज़ें होंगी। उसको कहते हैं बी वेनम, और वो बाजार कीमत उसकी कम से कम 1 करोड़ रुपए पर केजी है। तो उसका थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रशिक्षण के बाद वो दिव्यांगजन कर सकते हैं। और दूसरा, उसमें बहुत मेहनत नहीं होती। एक अगर सहायक है आपके पास जिसको आपने काम बता दिया है या आपके गाइडेंस में वो कर रहा है, तो वो एक सहायक के साथ भी काम करता रह सकता है। उसमें 20 बक्से, 25 बक्से, 30 बक्से तक दूसरे सहायक की जरूरत नहीं पड़ती।
1: तो इस प्रकार इसमें लगभग कितना लाभ हो जाता है? और दूसरी बात, आपने एक चीज़ बताई कि यहाँ पर हमारा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो आपने एक सीज़न बताया, तो क्या इसी समय हमारा मधुमक्खी पालन कर सकते हैं या इसके बाद भी हम अपना साल भर जारी रख सकते हैं?
0: देखिए, मधुमक्खी पालन में सबसे ज़्यादा जो कठिन कठिनाई है, वो कठिनाई है अप्रैल से लेके और सितंबर तक उन मधुमक्खियों को संरक्षित करना। वो मौसम, उत्तर प्रदेश के मौसम में बहुत गर्मी होती है, बहुत टेम्परेचर हाई होता है, फसलें नहीं होती हैं, तो उस समय हमें एक माइग्रेशन, उसको बोलते हैं टेक्निक हमारी भाषा में, माइग्रेशन करना पड़ता है, और किसी ऐसे स्थान पर मधुमक्खियों को लेकर जाना पड़ता है या किसी के साथ भेजना पड़ता है, ताकि वहाँ वो उचित रूप से जीवित भी रह सकें और उनकी वंश वृद्धि भी हो सके।
1: तो लगभग इसमें ये रहता है कि हम एक सीजन में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, तो उसके बाद जो हमारे बीच का समय होता है मार्च से लेकर सितंबर तक का, आपने कहा कि उसमें तो हम मधुमक्खियों को चलिए एक सुरक्षित जगह पर, एक अनुकूलित वातावरण में लेकर के जाते हैं जहाँ पर वो अपना, ये कह सकते हैं कि जीवन यापन कर सके, या यूँ कहा जाए कि वो सुरक्षित रह सके। तो इस दौरान हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो क्या कर सकते हैं?
0: उस दौरान देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे वो मत्स्य पालन कर सकते हैं अगर उनके पास छोटे तालाबों की सुविधा है, या कोई ऐसी जमीन है जो बेकार पड़ी है तो उसमें वो तालाब खुदवा सकते हैं और तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। मछली

0: पालन में भी बहुत खर्चा नहीं होता। कुछ एक किस्में जो वहाँ के जो स्थानीय बाजार में जो ज्यादा बिकता हो उस प्रकार की मछलियों का पालन वहाँ करा जा सकता है। तो जैसे आमतौर से हम लोग रोहू, कतला या इस तरह की मछलियाँ पालते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खाने पीने का उनके ऊपर व्यय नहीं करना पड़ता, तो मछली पालन कर सकते हैं। दूसरा, अभी तो बिहार में बहुत होता है, एक चीज आप जानते हैं सब, मखाना। तो मखाने की शुरुआत भी अब उत्तर प्रदेश में संभवतः हो जाएगी इस साल या अगले साल से, तो आप मखाना भी उस तालाब में डाल सकते हैं मछलियों के साथ।
1: तो मतलब ये कह सकते हैं कि हम कई चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, मल्टी फार्मिंग टाइप की चीज़ है कि अभी हमने मधुमक्खी पालन किया, उसके बाद मत्स्य पालन किया, फिर उसमें हमने मखाना किया। तो लगभग इसमें कितना, जैसे कि आपने कहा कि आप इस फील्ड में हैं, तो कितना लगभग स्टार्टिंग बिजनेस में पैसे खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई बिजनेस नहीं चल सकता है। तो लगभग कितने खर्चे हो जाते हैं और क्या इसकी आमदनी हो जाती है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो इसको प्राप्त कर सकते हैं?
0: देखिए, मछली पालन है या मौन पालन, मधुमक्खी पालन है या कुछ भी ऐसा काम करेंगे तो आप

0: में बहुत होता है। एक चीज आप जानते हैं सब, मखाना। तो मखाने की शुरुआत भी अब उत्तर प्रदेश में संभवतः हो जाएगी इस साल या अगले साल से, तो आप मखाना भी उस तालाब में डाल सकते हैं मछलियों के साथ।
1: तो मतलब ये कह सकते हैं कि हम कई चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, मल्टी फार्मिंग टाइप की चीज़ है कि अभी हमने मधुमक्खी पालन किया, उसके बाद मत्स्य पालन किया, फिर उसमें हमने मखाना किया। तो लगभग इसमें कितना, जैसे कि आपने कहा कि आप इस फील्ड में हैं, तो कितना लगभग स्टार्टिंग बिजनेस में पैसे खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई बिजनेस नहीं चल सकता है। तो लगभग कितने खर्चे हो जाते हैं और क्या इसकी आमदनी हो जाती है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो इसको प्राप्त कर सकते हैं?
0: देखिए, मछली पालन है या मौन पालन, मधुमक्खी पालन है या कुछ भी ऐसा काम करेंगे, तो आप छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं। एकदम से हम लाखों की बात अगर ना सोचें, हम शुरुआत करें जो हमारी पारंपरिक खेती है उसके अलावा। ये चीजें जैसे मधुमक्खी पालन है, उसमें पारंपरिक खेती में कोई व्यवधान नहीं होता। उसी खेत में आप मधुमक्खी के जो बक्से हैं वो रखे जा सकते हैं। उसी खेत के बगल में अगर कोई बेकार जमीन है, उसमें आप तालाब बनवा के उसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चे की बात नहीं है, और छोटे स्तर से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ा सकते हैं।
1: तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग के 30-40 हज़ार के आसपास से अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं और या वो बैंक से सुविधा प्राप्त करके इतने पैसे क्रेडिट कर लेता है, तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है।
0: जी, एक और व्यवसाय वो कर सकते हैं जो मुर्गी पालन है। थोड़ा इसके तुलना में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मुर्गी पालन के लिए भी बैंक से लोन मिलता है। मत्स्य पालन के लिए भी मत्स्य विभाग है उत्तर प्रदेश में, मत्स्य विभाग के माध्यम से उनको ऋण प्राप्त हो सकता है, अनुदान मिलता है उसमें, तो दिव्यांगजन वहां संपर्क कर सकते हैं।
1: तो अंत में आप हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं एक चीज और शॉर्ट में बोल सकता हूं कि मशरूम का उत्पादन भी बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे शहरी क्षेत्र हो। दोनों क्षेत्रों के दिव्यांगजन इसको कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, आप अपने घर के किसी एक कमरे में भी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो शहरी क्षेत्र में फ्रेश मशरूम भी बिकता है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आपको मंडी की सुविधा नहीं है या ताजा मशरूम आप नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप उन मशरूम को सुखा कर भी, उनकी जो लाइफ होती है वो बढ़ती है, और सुखा कर भी वो बाजार में आप बेच सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है, बहुत कम पैसे से वो शुरुआत कर सकते हैं और बहुत कम जगह में।
1: तो मशरूम पालन के लिए मतलब किससे संपर्क करना पड़ेगा?
0: मशरूम पालन के लिए तो ये भी उद्यान विभाग की तरफ से आपको सुविधा मिलती है, वहाँ पर आपको प्रशिक्षण मिलता है, और बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं या आसपास जो अगर कोई करते हैं तो उनसे भी हेल्प मिल सकती है। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने तो आसपास के किसी व्यक्ति से ही अपना प्रशिक्षण लिया और उससे ही कर रहा हूँ।
1: सितांशु कुमार जी, आज हमारे आप कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं आपने उनको ये बताया कि जो दिव्यांगता है वो कोई अब एक प्रकार की रुकावट नहीं बची है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, स्वरोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। अब कहीं ना कहीं दिव्यांगता सिर्फ एक शब्द रह गया है, बाकी अगर आपको अपना स्वरोजगार करना है तो जैसा कि आपने बताया कि मधुपालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, इसके साथ ही अब तो आपने बताया कि मखाने की खेती भी शायद आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में होने लगे और मशरूम पालन, ये सब काफ़ी कैसे चीज़ें हैं कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन को बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा उनके लिए एक दुविधा यही होती है, एक बाधा भी यही होती है कि वो कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे कोई भी काम या कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए। आपको काफ़ी दौड़ भाग रहती है उसमें, विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन शायद इन सब व्यवसाय के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं भागना पड़ेगा।
0: और मैं एक चीज और दिव्यांगजनों से कहना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दें कि वो दिव्यांग। दिव्यांग जो हमारे प्रधानमंत्री ने शब्द दिया है वो है दिव्यांग, तो आप डिवाइन पावर हैं। आप ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और इंग्लिश में भी मैंने खुद ये बात कही है और मैंने इस पे मिशन भी चलाया, पर्सन्स विद स्पेशल कैपेबिलिटीज, जो किसी के पास नहीं है वो आपके पास है, वो आप कर सकते हैं। तो ये सोचना छोड़कर जब आप काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे।
1: तो सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सभी श्रोताओं का।
2: दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार के अवसर, अभी आप डॉक्टर सितांशु कुमार से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे, आपसे भेंट की देवाशीष ने। इसके साथ ही आज का संकल्प कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत के बोल SH बिहारी के और संगीत OP नैयर का है।

और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म जंगली का ये गीत। शब्द रचना हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का है।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म राजकुमार का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का है।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक झनकार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विवेकानंद व्यास के स्वर में कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आपके गाए इस पचरा के साथ।

लोक झंकार कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विवेकानंद व्यास के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। अभी आपने सुना विकास गीत और लोक भजन, अब हम आपको सुनवा रहे हैं आपके ही स्वर में ये पूर्वी।

लोक झनकार कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे हैं विवेकानंद व्यास के गाए भोजपुरी लोकगीतों का, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं की आवाज़ में विदेशिया।

अभी आप विवेकानंद व्यास के स्वर में ये निर्गुण सुन रहे थे। इसी निर्गुण के साथ ही लोक झनकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट गोस्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी का राजौरी जिले में अभियान के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से निधन हो गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। न्यू चंडीगढ़ में भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात्रि 11:10 पर। आज का विषय है वंचितों को वरीयता। कार्यक्रम में उपस्थित होंगे सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर की होगी। हिंदी कार्यक्रम होगा रात 8:00, जिसमें आज सुनिएगा व्यंग वार्ता हवा में फड़फड़ाते शब्द। वार्ताकार होंगे अमन मणि त्रिपाठी। युवा तरंग कार्यक्रम में 5:10 पर सुनिएगा दूषित जल से होने वाली समस्याएं और उपचार पर डॉक्टर संजय कुमार सिंह से सुभाष खन्ना की भेंट वार्ता। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा 5:45 पर, जिसमें नई सुबह के लोक के अंतर्गत सुनिएगा सामाजिक नवाचार के युवा चेहरे, बदलाव के चेहरे, आरती की ओबी पर आधारित ये कार्यक्रम। लोकायतन कार्यक्रम में 6:30 पर सुनिएगा लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश, रामकरण मिश्र सेलानी और कार्यक्रम का संचालन करेंगे रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर। ओम बाबू वर्मा से डेयरी व्यवसाय में उनकी सफलता की कहानी आप सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम में 6:50 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शोभित के गाए भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी नगमे सुन सकेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में रात 9:30 पर। और शामे अवध कार्यक्रम होगा 7:45 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 8 जून 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात्रि 11:10 पर। कल का विषय होगा किसान सशक्तिकरण। कल इस कार्यक्रम में होंगे सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जिले की हलचल आप सुनते हैं हर रोज प्रातः 9:15 पर। कल सुनिएगा अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। उर्दू कार्यक्रम में 9:30 पर समात फरमाइएगा नगमगी, पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। जायद फसलों में कीट रोग प्रबंधन पर डॉक्टर अरुण कुमार राय से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता सुनिएगा खेती किसानी माफ कीजिएगा कृषि चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 6:05 पर। विश्व महासागर दिवस पर कल प्रातः 7:00 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर बताएंगी समंदर की सेहत से हमारी सेहत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर सुनिएगा उस्ताद राशिद खान का गायन और रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे निशांत खान का सितार वादन। विमला कठेरिया के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक रंग कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। अलका गुप्ता का कविता पाठ प्रसारित होगा घर आंगन कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर। धान की सीधी बुवाई तकनीक के बारे में डॉक्टर दीक्षा मिश्रा बताएंगी विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। आपसे भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। चलो गांव की ओर डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव की ये वार्ता होगी कल के युवा तरंग कार्यक्रम में 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम होगा 5:45 पर, जिसमें कल नेशन नेक्स्ट के अंतर्गत सुनिएगा अभिषेक की ओबी पर आधारित भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारत, कल की अर्थशक्ति भारत। गुर्दे की पथरी कारण और निवारण पर डॉक्टर विवेक कुमार सिंह जानकारी देंगे लोकायतन कार्यक्रम में 6:30 पर। मत्स्य तालाब की तैयारी और मिश्रित मत्स्य पालन पर डॉक्टर काजल चक्रवर्ती से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता सुनिएगा खेती किसानी कार्यक्रम में 6:50 पर। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम होगा 7:31 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे

डॉक्टर बी पटेल की वार्ता, दवाओं को लेने का सही तरीका। इसके अलावा सुनिएगा, गर्मियों में आंखों की देखभाल के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर रचना अग्रवाल। हिंदी कार्यक्रम होगा कल रात 8 बजे। कल सुनिएगा कहानी उलझन, कहानीकार होंगे मुक्तिनाथ झा। पंडित कैलाश श्रीवास्तव के गाए गीत और भजन सुनिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। कीर्ति श्रीवास्तव का लिखा रूपक विकल्पों के द्वार आप सुनेंगे कल रात 10 बजे। प्रस्तुति अतीश कुमार श्रीवास्तव की होगी। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मांडवी, और मेरे साथ है मेरी दोस्त
1: आयुषी, और हम लेकर हाजिर हो चुके हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम युवा तरंग।
0: बिल्कुल। और अच्छा आयुषी, एक बात बताइए, दिन में कितनी बार हम खाने के बारे में सोचते हैं? सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, कभी पराठे, कभी दाल चावल, कभी फल, कभी स्नैक्स। खाना तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी खाने की प्लेट के सामने आने पर ये सोचा है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो सिर्फ टेस्टी है या सेफ भी?
1: देखिए, हम अक्सर बात करते हैं हेल्दी फूड की, बैलेंस डाइट की, न्यूट्रिशन की, लेकिन एक चीज है जो इन सबसे पहले आती है और वो है फूड सेफ्टी।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी महंगा हो, उसमें कितने भी न्यूट्रिएंट्स क्यों ना हो, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
0: बिल्कुल। और आयुषी, आज के समय में जब पैक्ड फूड, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, स्ट्रीट फूड और जो ये प्रोसेस्ड फूड है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, तब फूड सेफ्टी जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि गलत तरीके से रखा गया है खाना, या फिर साफ़ सफाई की कमी, या फिर एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल किया गया प्रोडक्ट हमारी सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकता है।
1: और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया में हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। ये दिन हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी बताता है कि जो खा रहे हैं वो कितना सेफ है।
0: वैसे एक दिलचस्प बात यह है फूड सेफ्टी को लेकर के, कि सिर्फ किसानों, फूड कंपनीज या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारी और आपकी उतनी ही बड़ी भूमिका है। पता है कैसे?
1: कैसे?
0: घर में खाना बनाते समय, बाजार से सामान खरीदते समय, बाहर खाना खाते समय, या बच्चों के लिए स्नैक्स चूज करते समय, हम सब फूड सेफ्टी से जुड़े फैसले खुद लेते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी पहले है।
1: बिल्कुल। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फूड सेफ्टी की, जानेंगे कि दूषित भोजन कैसे हमारी सेहत को प्रभावित करता है, समझेंगे कि छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानियों से कैसे बचा सकती हैं, और ये भी जानेंगे कि सुरक्षित भोजन आखिर एक स्वस्थ समाज के लिए कितना जरूरी क्यों है।
0: तो अगले कुछ समय तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज की चर्चा आपकी थाली से जुड़ी है, आपके परिवार से जुड़ी है, और सबसे बढ़कर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। और आयुषी, क्यों ना अपने दोस्तों को अब सुनवा दिया जाए एक लजीज सा गाना।
1: बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मानवी, हम बार बार फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे?
6: बहुत आसान है। फूड सेफ्टी का मतलब है कि जो खाना हमारी प्लेट तक पहुंच रहा है वो खाने के लिए सुरक्षित है, उसमें ऐसे जर्म्स ना हो, बैक्टीरिया या केमिकल्स या फिर दूसरी ऐसी चीज़ें ना हो जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
4: यानी बात सिर्फ खाने की नहीं बल्कि सेफ खाने की है।
6: बिल्कुल, कई बार खाना देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तो खाना बीमारी की वजह बन सकता है।
4: और यही वजह है कि फूड सेफ्टी को लेकर जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है।
6: आयुषी, अब आपने बात तो ठीक कही, लेकिन अब क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बात कर ले।
4: बिल्कुल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग दूषित भोजन की वजह से बीमार पड़ रहे हैं?
6: और इन सबसे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो हैं हमारे छोटे

0: बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि उनकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने में कंपैरेटिवली वीक होती है।
1: एक और इंटरेस्टिंग बात, कई बार बीमारी की वजह कोई बड़ी चीज नहीं होती बल्कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं, जैसे बिना हाथ धोए खाना बनाना, कटे हुए फलों को लंबे समय तक खुला छोड़ देना, या फिर बार बार गर्म और ठंडा किया हुआ खाना खाना।
0: बिल्कुल, और यानी फूड सेफ्टी की जो शुरुआत है वो हमारे अपने किचन से होती है।
1: दोस्तों चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता जिसका विषय है दूषित जल से होने वाली समस्याएं और उपचार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, भेंट करता है श्री सुभाष खन्ना, तो आइए सुनते हैं।
2: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब जीवन की चर्चा होती है तो उसमें एक जल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल जिसे हम पीते हैं और हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा जल से ही बना है, और यदि हम ये जो जल है ये शुद्ध नहीं लेते, साफ नहीं लेते, तो इससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कई प्रकार के ऐसे जो रोग हैं, विकार हैं, वो हमें उत्पन्न होने लगते हैं जो आगे चलकर कई विकराल रूप ले सकते हैं। तो दूषित जल से कैसे बचें, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, खुद को सुरक्षित कैसे रखें, और हम कैसे आज ही ये जान लें कि भाई यदि हम दूषित जल का सेवन कभी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आगे हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनसे बचने के क्या उपाय हैं, आइए इसके बारे में ढेर सारी जानकारी लेते हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह से, जो क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान लखनऊ से हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कोई व्यक्ति है और वो ये कैसे जाने कि भाई ये जो हम जल पी रहे हैं वो दूषित है?
3: जल ही जीवन है। अगर जल ही शुद्ध नहीं होगा तो पूरा जीवन ही समझ लीजिए बेकार है। तो जल की शुद्ध होने का एक लक्षण है कि जल जो है पारदर्शी होना चाहिए। दूसरा, उसमें लसलसा या इस तरह के झागदार या इस तरह के गुण उसमें नहीं होना चाहिए। और जल जो है स्वादयुक्त होना चाहिए। स्वादयुक्त कहने का मतलब उसमें अगर कुछ मिनरल्स मिले हैं या दूषित है तो जल का जो एक नॉर्मल स्वाद होता है वो नहीं आ पाता है। अगर इस तरह के लक्षण मिलते हैं पानी में या उसके कलर्स चेंज हैं, कभी मटमैला भी जल आता है, तो वो दूषित जल के अंतर्गत गिना जाता है। और रही बात दूषित जल, जो बहुत पानी कहीं इकट्ठा कर लीजिए आप तो वो भी दूषित जल के ही अंतर्गत आता है। जब तक उसका बहाव अगर नहीं रहता है तो दूषित जल के अंतर्गत ही उसको लिया जाता है।
2: जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे जल दूषित है तो उसे स्वास्थ्य में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर दूषित?
3: आजकल दूषित जल के ही खान पीन से उदर रोग की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें आप मतलब आज की वर्तमान समय में सबसे जो अगर दूषित जल से अगर बीमारी हो रही है तो लोग कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस हो रहा है, कृत का रोग,
2: जी जी जी,
3: टाइफाइड का फीवर, आंतरिक बुखार, डायरिया है, वोमिटिंग है
2: जी,
3: अतिसार है। और दूषित जल तो ये तो पीने और खाने की वजह से जो पेट की बीमारियां हो रही हैं, और दूसरी जो जल के स्नान करने से भी जो स्किन की बीमारियां हैं वो दूषित जल के स्नान करने से भी होती हैं। अगर आप उस दूषित जल में स्नान करते हैं तो त्वचा रोग की जितनी बीमारियां, खजली है, कुष्ठ है, इस तरह की अनेक बीमारियां दूषित जल के मतलब लोकल यूज करने से या आंतरिक यूज करने से भी जो होती हैं। तो बीमारियों की अगर आप बात करते हैं तो आज के मतलब इस ऋतु में जो सबसे ज्यादा होती है वायरल हेपेटाइटिस। आप बाहर के जो भी चीज अगर दूषित जल में बनता है उसका बार बार सेवन करते हैं तो आज कामला जांडिस जो होती है वो दूषित जल के एक प्रकार से होती है। दूसरा, आप बाहर की चीजें खा लिए, कामला बीमारी होती है, आदमी एकदम परेशान हो जाता है, भूख की इच्छा नहीं होती है, आंखें पीली होने लगती हैं, मलमूत्र उसका पीला होने लगता है
2: जी,
3: तो वो समझ जाना चाहिए कि उसको कामला या जांडिस रोग हुआ है।
2: हाँ,
3: वो दूषित जल के सेवन के उपरांत ही होती है।
2: जी जी जी।
3: जब अगर उसको जांच भी पता चला SGOT SGPT होता तो वायरस के द्वारा ये है,
2: हाँ,
3: वायरल हेपेटाइटिस, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव होता है। तो उसमें यही कहा जाए पहले पानी को जो है अपना शुद्ध करके पीजिए। दूसरी जो कॉमन, एकदम जो कॉमन है आज के जमाने में, कि टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर भी इस दूषित जल के सेवन से ही उपरांत ही होता है।
2: जी जी जी।
3: उसमें आदमी को बुखार पड़ा रहता है, धीरे धीरे बुखार आता है, एकदम दुर्बल होता जाता है, हाथों में दर्द, लैट्रिन का साफ नहीं आना बहुत दिनों तक, ऐसे कभी सूखी कभी ढीली स्ट्रेस होती रहती है। तो बुखार की वजह से आदमी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है। तीसरा जो मेन डायरिया है, जिसमें बार बार आप अगर थोड़ा भी पानी सही नहीं पिया तो दूषित पानी पीने से डायरिया, बार बार स्टूल जा रहे हैं, तो ये कॉमन कुछ बीमारियां हैं जो कि दूषित जल के पीने से होती हैं।
2: तो क्या ये किसी विशेष उम्र में, जैसे बच्चे हैं या वृद्ध हैं, तो उन पर ज़्यादा ये प्रभावी होती हैं बीमारियाँ?
3: ये बीमारियाँ किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं।
2: जी जी।
3: ऐसा नहीं है बालक बच्चे सबके, लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी जो होती है यदि सही होती तब तक तो असर नहीं करती है।
2: जी जी।
3: खास तौर

0: सब उन लोगों को जरूर सचेत होना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि जो घर में मिनरल वाटर या आरओ का पानी पी रहे हैं, अगर वो बाहर नॉर्मल पानी पीते हैं, तो नॉर्मल पानी या दूषित पानी कह लीजिए, घर
1: जी
0: का
1: जी
0: अगर
1: जी
0: बाहर के आरओ पानी नहीं पिया तो आपको जल दूषित जल से होने वाली बीमारियां होने का ज़्यादा चांस रहता है। और ये किसी को भी हो सकती हैं,
1: जी
0: बालक
1: जी
0: हो चाहे वृद्ध हो, किसी को भी हो सकते हैं।
1: जी जैसे ये जल जनित बीमारियां व्यक्ति को हो गई, जैसे आपने बताया कि टाइफाइड हो गई या अतिसार होने लगा उनको, तो इसका जो बचाव या उपचार है वो क्या है कि भाई कौन कौन से हम तुरंत ऐसे इलाज करें जिससे हम जल्दी ठीक हो जाएं?
0: बचाव के लिए पहला काम जो घर से प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए, घर में पानी अगर इस तरह का हो गया तो आप उसे या तो शुद्ध करके पीजिए। तो शुद्ध करने के भी घर में अगर जैसे आपके पास आरओ नहीं है तो सिंपल पानी को लेके उसमें थोड़ा सा 1 ग्राम फिटकरी डाल दीजिए
1: जी।
0: तो वो पानी शुद्ध हो जाता है, उसको छान करके पिया करिए।
1: हाँ
0: दूसरा सबसे कॉमन है कि आप पानी को बॉयल कर लीजिए, बॉयल हो जाए पानी
1: जी जी
0: पूरा,
1: जी
0: मतलब खौलना हो तो उसके बाद ठंडा करिए तब पीजिए। दूसरा शुद्ध करने के उपाय आजकल है कि उसमें जल में थोड़ी सी तुलसी के पत्ते डाल दिए तब भी वो जल शुद्ध हो जाता है।
1: जी। हाँ
0: गांव के लोग हैं तो उसमें शुद्ध करने के लिए कुएं का अगर पानी यूज करते हैं, नल का पानी यूज करते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। तो इस तरह के करके हम जल को शुद्ध कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।
1: किसी व्यक्ति को जल जनित बीमारियां हो गई हैं तो वो जो घरेलू उपचार है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिला के तुरंत सेवन करने लगे कि ये बीमारियां जो है प्राथमिक इसका उपचार हो सके, उसके बाद इलाज की तो बात हो।
0: सबसे पहले पानी को शुद्ध करने, सडंग पानी करके ना पित्त पापड़ा मोथा ये सब नागर पड़ा है तो उसको पानी में डाल दीजिए तो पानी शुद्ध हो जाता है। उसके सेवन से चाहे टाइफाइड का बुखार हो या आपके यकृत की कोई संबंध दिक्कत हो, ये सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन लोग जल को शुद्ध करने के लिए आयुर्वेदिक जो करते हैं,
1: जी
0: पित्त पापड़ा को पानी में बॉयल कर देते हैं और उसको ठंडा करके धीरे धीरे दो दो चार चार चम्मच उसको देना चाहिए
1: जी जी जी
0: तो उसकी जो पिपासा होती है धीरे धीरे कम होने लगती है।
1: जी जी
0: ज्वर के बाद एक लगता है पिपासा बढ़ती है प्यास की से,
1: जी
0: तो वो और उसके जो गुण है ज्वरघग्न है, मतलब ज्वर को हरता भी है,
1: हाँ
0: तो इसलिए वो उससे तुरंत आराम मिल जाता है।
1: जी जी
0: कुछ लोग
1: जी
0: आजकल पानी को और थोड़ा थोड़ा उसमें धनिया भी डाल देते हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं उसको भी प्रयोग करना चाहिए
1: जी जी जी
0: तो वो जल जो होता है शीत गुण के कारण अत्यंत उत्तम हो जाता
1: जी
0: है।
1: जी ये तो रही पीने वाले जल से होने वाली बीमारियाँ और उनका उपचार रहा। तो यदि किसी व्यक्ति को जल प्रयोग करने से, जैसे नहाने से या आप त्वचा संबंधी उसको बीमारियाँ हो गई हैं, तो उसका क्या उपचार रहेगा, उसके कौन कौन से ऐसे उपचार रहेंगे कि जिससे वो ठीक हो जाए?
0: यदि सामान्य बीमारी से त्वचा की बीमारियां हो गई, जैसे लोग कहीं रुका हुआ जल है उसमें बार बार स्नान करते हैं, उस जल का बहाव नहीं है, तो स्किन रोग के होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो उसका हम लोग यही कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम नीम की पत्ती सुबह शाम 10 ठे उबाल के
1: जी जी जी
0: एक काढ़ा पी लो, हल्दी का दूध में डाल के पी लो, तो जितनी भी स्किन की बीमारियां हैं सिर्फ इन दो चीज़ों के घरेलू नुस्खे सेवन से स्किन की काफ़ी बीमारियां तेल ठीक हो जाती हैं। अगर कभी इचिंग या खुजली इस तरह की होती है तो आप नीम का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं रात में।
1: जी जी
0: उससे
1: जी
0: अगर कभी जलन होती है तो नारियल के तेल में थोड़ा कर्पूर मिलाकर लेप करें, तब भी उसके स्किन की बीमारियों में फ़ायदा हो जाता है। ये तो लोकल अगर दूषित जल है उसमें स्नान करने से इसका उपयोग किया जा सकता है।
1: जी। जैसे हमारे कुछ ऐसे श्रोता बंधु हैं जो गांव में रहते हैं या इसके लिए जागरूकता नहीं है कि भाई स्वच्छ जल कौन सा है और ये दूषित जल कौन सा है, तो एक मोटी मोटी बात कौन सी हो कि वो ये जान जाएं कि ये दूषित जल है और इसका प्रयोग ना करें अथवा इसे ठीक करने का प्रयास करें कि ये स्वच्छ जल के रूप में हो
0: मैं
1: जाए?
0: ऐसे श्रोताओं से कहूँगा कि देखिए गांव में जो पीने का पानी दो ही तरह से आता है, एक हैंड पाइप से है,
1: जी जी जी
0: पंपिंग सेट है, और कुएं का पानी है। कुछ जगह अब जो कुएं के लोग बहुत ज़्यादा चला गया है तो लोग कुएं का पानी यूज बहुत हम कब करते हैं, हैंड पाइप आ गया है। तो
1: हाँ
0: हैंड पाइप का जो गंदा पानी निकलता है वो जमीन के स्ट्रेटा में नीचे पहुँचता रहता है
1: जी जी जी
0: दूषित जल, और वही दूषित जल जो है भूमि जल के द्वारा इसमें आने लगता है हैंड पाइप में। तो जब हैंड पाइप का पानी आता है तो वो शुद्ध नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में उनको चाहिए कि जब भी पानी का सेवन करें वो बॉयल कर लें, सबसे सरल तरीका है बॉयल करके उसे ठंडा करके पिएं, बेस्ट है। अगर आपको गांव में ऐसी कुछ नहीं मिलता है, अगर तुलसी का पौधा है तो उसमें ठंडे के बाद तुलसी डाल लो, एकदम स्टलाइज पानी हो जाता है।
1: जी। तो श्रोताओं, आज डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि भाई दूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी आगामी हमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं और हम किस प्रकार जल को शुद्ध कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें इसके विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता जिसका विषय था दूषित जल से होने वाली समस्याएं और उपचार। अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और मिलते हैं आपसे।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: मानवी, अगर किसी को फूड सेफ्टी इम्प्रूव करनी हो तो सबसे आसान शुरुआत कहाँ से की जा सकती है?
6: अपने किचन से।
5: अच्छा, कैसे?
6: देखिए, कुछ बहुत सिंपल हैबिट्स हैं, जैसे कि खाना बनाने से पहले हाथ धोना, सब्जियां और फल अच्छी तरह से धुलना, कच्ची और पक्की हुई सब्जी को अलग रखना, और फ्रिज को साफ रखना, और सबसे जरूरी, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करना।
5: सही कहा मानवी, कई लोग तो डिस्काउंट देखकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं लेकिन एक्सपायरी डेट तो देखना ही भूल जाते हैं,
6: और बाद में वही चीजें परेशान का कारण बनती हैं।
5: मानवी, अब एक मुश्किल सवाल।
6: पूछिए पूछिए।
5: गोलगप्पे, चाट, टिक्की, मोमोज, इन सब का क्या होगा?
6: अरे, इन सब के बिना तो जिंदगी अधूरी है। लेकिन मजाक से हटकर, स्ट्रीट फूड खाना गलत नहीं है, बस थोड़ा सावधानी बरतिए।
5: जैसे साफ सफाई वाली जगह चुनना, बहुत देर से खुले में रखा खाना अवॉइड करना, और पीने के पानी की क्वालिटी पर ध्यान देना।
6: बिल्कुल, और टेस्ट और सेफ्टी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अच्छा आयुषी, अब क्यों ना अपने दोस्तों को एक और गीत सुनवा देते हैं।
5: बिल्कुल, तो दोस्तों चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मानवी फूड सेफ्टी की बात करते करते एक और मुद्दा याद आता है और वो है फूड वेस्टेज का।
1: बिल्कुल, दुनिया में एक तरफ लोग भूख का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में खाना बर्बाद हो जाता है।
0: कई बार हम जरूरत से ज्यादा खाना बना लेते हैं, ज्यादा ऑर्डर कर लेते हैं या फिर लेफ्ट ओवर्स को सही तरीके से स्टोर नहीं करते।
1: और अगर हम खाने की प्लानिंग बेहतर करें और ज़रूरत के हिसाब से खाना लें तो फूड वेस्टेज काफ़ी कम किया जा सकता है।
0: आज के यूथ का लाइफस्टाइल काफ़ी फास्ट हो गया है। ऑनलाइन फूड, इंस्टेंट मील्स और क्विक स्नैक्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।
1: ऐसे में अवेयरनेस और भी ज़रूरी हो जाती है। हमें सिर्फ स्वाद नहीं, क्वालिटी भी देखनी चाहिए।
0: और सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर फूड ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, हेल्दी चॉइस और सेफ चॉइस दोनों साथ साथ होनी चाहिए।
0: मानवी, अगर आपको फूड सेफ्टी को एक लाइन में समझाना हो तो कैसे करेंगे?
1: मेरा ख्याल है, मैं कहूँगी कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए खाना चाहिए।
0: और मैं कहूँगी कि जो खाना सेफ है वही सच में हेल्दी है।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ आज के युवा तरंग कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हम आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम का विवरण। कल के कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, विश्व महासमुद्र दिवस, जिसमें जानेंगे महासागरों के महत्व, समुद्री जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और हमारे जीवन में महासागरों की भूमिका के बारे में। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी एक विशेष वार्ता जिसका विषय है चलो गांव की ओर। इस विषय पर हमारे साथ होंगे डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, जो गाँव के विकास, ग्रामीण जीवन की संभावनाओं, कृषि, स्वरोजगार और ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर पर अपने विचार साझा करेंगे। ये वार्ता हमें गाँव की ओर लौटने और उनकी संभावनाओं को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। तो सुनना ना भूलिएगा युवा तरंग का अगला अंक कल इसी समय और इसी जगह पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आयुषी
1: और मुझे यानी के मांडवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग, आकाशवाणी लखनऊ से। अब आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नई उड़ान।

नमस्कार दोस्तों, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आशीष सोनी। आज हम बात करने वाले हैं एक

ऐसे विषय पर जो हम सभी की ज़िंदगी से हर दिन जुड़ा हुआ है। हम खाना खाने के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी खाते रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो भोजन हमारी थाली में पहुंचता है वह कितना सुरक्षित है? इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है, इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है, भोजन को सुरक्षित रखने के आसान उपाय क्या हैं, और हम सब मिलकर कैसे स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, उसमें किसी प्रकार के हानिकारक जीवाणु, रसायन या अशुद्धियां ना हों। यदि भोजन सुरक्षित होगा तो वह शरीर को पोषण देने के बजाय बीमारियों का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष दुनिया में करोड़ों लोग दूषित भोजन खाने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए भोजन केवल स्वादिष्ट होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सुरक्षित होना भी उतना ही आवश्यक है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर इस दिवस की शुरुआत की ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि भोजन की सुरक्षा केवल सरकारों या खाद्य उद्योग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सब की जिम्मेदारी है। किसान से लेकर दुकानदार, रसोइयां और उपभोक्ता तक हर व्यक्ति खाद्य सुरक्षा की श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरा सोचिए, यदि शुद्ध दूध ना हो, यदि सब्जियों में अत्यधिक रसायन हो, यदि भोजन में खुले में रखा गया हो तो क्या होगा? ऐसा भोजन कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी, पेट संक्रमण, टाइफाइड, हैजा और कई अत्यधिक गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों का आधार है। घर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के कुछ आसान उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। फल और सब्जियां अच्छी तरह धोएं, बचे हुए भोजन को फ्रिज में रखें, एक्सपायरी डेट देखकर सामान खरीदें, खुले में बिकने वाले कटे फल खाने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरीके से धुलें, भोजन बर्बाद न करें, क्योंकि सुरक्षित भोजन और जिम्मेदार उपभोग साथ साथ चलते हैं। भोजन की बर्बादी भी एक बड़ी चुनौती है। हर वर्ष बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद हो जाता है, जबकि दुनिया में लाखों लोग पर्याप्त भोजन नहीं पा रहे हैं। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन लें और भोजन का सम्मान करें। यह भी खाद्य सुरक्षा और खाद्य संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य की शुरुआत हमारी थाली से होती है। यदि भोजन सुरक्षित होगा तो परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा और देश भी मजबूत बनेगा। दोस्तों, भोजन जीवन का आधार है। हम रोज खाते हैं, वही जो खाना वो हमारे शरीर और भविष्य दोनों का निर्माण करता है। इसलिए भोजन का चयन करते समय केवल स्वाद नहीं बल्कि सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें। एक छोटी सी सावधानी हमें कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। दोस्तों, बातों का सिलसिला हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित कार्यक्रम नई सुबह के लोग श्रृंखला के अंतर्गत, जिसका विषय है सामाजिक नवाचार के युवा चेहरे, बदलाव के चेहरे, अपने रेडियो साथी आरती यादव के साथ।

0: जब कोई युवा गोबर से रोजगार की संभावना तलाश ले, जब एक स्कूली छात्रा प्लास्टिक से माइक्रोस्कोप बना दे, जब तकनीकी लोगों का समय बचाने लगे, मन के भावों को समझने लगे, जब टेक्निकल वे ऑफ लर्निंग को आम लोगों की पहुंच तक लाने के प्रयास शुरू हो जाएं, तब समझिए कि समाज में बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। तो आकाशवाणी लखनऊ के लोकप्रिय कार्यक्रम नई उड़ान के विशेष खंड नई सुबह के लोगों के साथ मैं आरती आज आपको मिलवाने वाली हूँ ऐसे युवा नवाचारकों से जिन्होंने समस्याओं को केवल देखा ही नहीं बल्कि उनके समाधान भी खोजे। इन लोगों ने अपने विचारों, प्रयोगों और नवाचारों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। आइए मिलते हैं सामाजिक नवाचार के इन युवा चेहरों से। अक्सर हम गोबर को केवल एक पारंपरिक संसाधन के रूप में देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर के युवा उद्यमी और गाय के गोबर से वैल्यूबल प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी के सह संस्थापक प्रांजल अग्रवाल जी ने इसे रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता का माध्यम बना दिया है। किस तरह का सामाजिक नवाचार ये लेकर आए हैं समझते ही इसे।
1: हम लोगों ने काम किया है गाय वाला इंटीरियर पर, मतलब गौशाला से जो गोबर मिलता है तो उसको इतना कंप्रेस करके हम लोग एक कार्डबोर्ड की तरह, लकड़ी की तरह बना दिया है, जिससे अगर उस पर 8 घंटे बरसात भी होगा तो वो खराब नहीं होगा और उसको घर में आप शोभायमान कर सकते हैं। जैसे किसी भी टेम्पल का स्ट्रक्चर हो, चाहे अपने घर की नेम प्लेट हो, या फिर आपके घर में वॉचेस हो, या फिर आपके कंपनी का लोगो हो, या फिर आपने

0: कंपनी के कस्टमाइज की रिंग हो, वो सभी हम लोग गाय के गोबर से बना देते हैं और वो ऐसे हैं कि बहुत ड्यूरेबल भी हैं और कहीं ना कहीं अगर आप 7-8 साल बाद या उससे ऊब कर उसको फेंकते भी हैं तो पर्यावरण से नुकसान नहीं है और एक कार्बन फुटप्रिंट को आप बहुत कम कर देते हैं और उसके अंदर जो सीड्स का उपयोग किया है उन गोबर के उत्पादों में अगर वो फेंकते हैं तो वो उसके अंदर जो सीड्स है चाहे वो टमाटर के पेड़ का हो चाहे वो तुलसा का हो कहीं ना कहीं जर्मिनेशन होगा और एक प्लांट हमें प्रकृति को गिफ्ट करके जाएगा ना कि प्लास्टिक को बढ़ा के जाएगा। हमारे सनातन धर्म में हवन करने के लिए नित्य बताया गया लेकिन बड़े हवन लोग नहीं कर पाते तो एक छोटा हवन कुंड जैसा बनाया जिसमें हवन सामग्री पूरा रहता है उसको जलाने के बाद आप हवन के रूप में अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ये धूपबत्ती कोन वाली भी है, स्टिक में भी है और एक मिनी हवन कुंड है।
1: डेकोरेशन से रिलेटेड भी चीजें बना रहे हैं और पूजा से संबंधित भी चीजें आपने बनाई हुई हैं। किस स्टार्टअप में किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग अभी काम कर रहे हैं?
0: हमने ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का संकल्प लिया था तो उसमें करीब 20 महिलाएं ऐसी हैं जो गाय के गोबर के उसको रॉ मटेरियल को बना के फिर उसको सांचे में डालती हैं। बाकी कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी रखे हैं जो सेल्स कटिंग कर लेते हैं और उस पर पॉलिशिंग वगैरह कर लेते हैं। पेंटिंग के लिए भी कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट को हम लोगों ने हायर किया है तो कहीं ना कहीं वो सबको रोजगार भी मिल रहा है और भारत के लोगों को, भारत की गौशाला को कहीं ना कहीं एक उत्थान मिल रहा है।
2: नवाचार की सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है कि वो किसी भी चीज को संसाधन में बदल सकता है। वैसे एक ऐसी ही प्रदेश की बेटी है जिसने वहां पर संभावना देखी जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे देश के स्कूलों में ऐसे युवा वैज्ञानिक अब तैयार हो रहे हैं जो समाज की जरूरतों को समझते हुए समाधान खोज रहे हैं। विज्ञान तभी सार्थक होता है दोस्तों जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आज भी देश के अनेक ग्रामीण और छोटे स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी देखने को मिलती है और इसी सोच के साथ इंस्पायर्ड अवार्ड विजेता युवा वैज्ञानिक अनन्या सिंह ने प्लास्टिक की सहायता से कम लागत वाला एक माइक्रोस्कोप विकसित किया। अनन्या, कैसे इस इनोवेशन का आइडिया आया आपको?
3: जी, मैं अपनी स्कूल की तरफ से गई थी एक मेरठ में विलेज, तो वहाँ के मैंने ग्रामीण विद्यालय विजिट किया था तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, टिश्यूज जैसे कि स्टोमाटा है, सब कुछ टीचर्स बोर्ड पे ड्रॉ करते थे। और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं जानती हूँ आई लव साइंस, और एक स्टूडेंट अगर कोई इंटरेस्टेड है साइंस में तो उसको एक लाइव एक्सपीरियंस मिलना चाहिए बिकॉज साइंस लिमिटलेस है, उसे एक्सप्लोर करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो स्टूडेंट्स बिना किसी फाइनेंशियल बैरियर्स के परचेज कर सके और स्टडी कर सके।
2: तो किस तरह से आपने बनाया इसे अगर आप बता सके?
3: मैंने प्लास्टिक बॉटल्स का यूज करके इसको बनाया है। इसमें मैंने लेंसेज कैप में फिट किए हैं तो जो नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें कोर्स ट्यूनिंग होती है। इसमें हम लोग बॉटल के स्क्रोइंग अप एंड डाउन मोशन से हम लोग कोर्स ट्यूनिंग करते हैं और जो कैप का ऊपर स्क्रूइंग अप एंड डाउन मोशन है उसे हम लोग फाइन ट्यूनिंग करते हैं। सेम फीचर्स है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, बट इसका मेन एडवांटेज जो है वो है इसकी कॉस्ट। जो नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी स्टार्टिंग रेंज है 3,000 रुपीज, और अगर आप और अच्छी क्वालिटी के लिए जाएंगे तो वो और कॉस्टली है। इसकी कॉस्ट 10 times चीपर है नॉर्मल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आपको मार्केट में मिलते हैं, और रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम है जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
2: तो अनन्या के इस सामाजिक नवाचार का उद्देश्य यही कि गांवों और छोटे कस्बों के विद्यार्थी भी विज्ञान को केवल किताबों में ना पढ़े बल्कि उसे करीब से समझे, देखे और अनुभव करें और समय के साथ कदम ताल करके अपने भविष्य को बेहतर बना सके। वैसे समय हमेशा से ही सबसे कीमती संसाधनों में से एक है और तकनीकी का असली उद्देश्य भी यही है कि वह लोगों के समय को बचाए और काम को आसान बनाए। इसी सोच के साथ युवा नवाचारक और एक निजी कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनंजय यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी वॉइस आधारित तकनीकी विकसित की है जो मीटिंग्स में चर्चाओं और महत्वपूर्ण संवादों को रिकॉर्ड करके व्यवस्थित करने में मदद करती है। और यही नहीं, वो आवाज सुनकर भावनाओं को भी आइडेंटिफाई कर सकती है और उसी अकॉर्डिंग आपको रिमाइंड करा सकती है आपकी प्रीवियस मीटिंग्स को। थोड़ा दिलचस्प है, थोड़ा हटके, थोड़ा टेक्निकल ये साउंड कर रहा है, राइट? तो क्या है ये एग्जैक्टली? क्यों ना इसे धनंजय जी से समझते हैं कि कैसे ये डिवाइस लोगों की लाइफ को आसान करने वाली है।
4: जब आप नई कंट्री में जाते हो, नई प्लेस में, राइट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप से लैपटॉप से मोबाइल मूव हुए, नाउ इट्स द एज ऑफ पर्सनल असिस्टेंट, पेंडेंट काइंड ऑफ फॉर्म फैक्टर पहनेगा, लाइक यू क्लियरली सेड, राइट, which it will understand your emotions, it will also understand everything which I have spoken to you. मैं आपसे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बात कर रहा हूँ, it will understand what I spoke first time, second time, third time. Similarly, ये notes बना देगा।
2: But ये identify कैसे करेगा कि बोल कौन रहा है?
4: So, सबकी एक unique voice होती है, तो उसके basis में it starts tagging and creates a small knowledge graph. तो उसको facts and figures आपके और मेरे पता होते हैं, facts and figures between

0: my family, my parents, my brother. Okay, and then like a second brain. Where now what I can do is I can ask ke meri pehli meeting kya thi, second meeting kya thi, what were some of my key action points. Can understand ke kisse kya baat kar raha hu. Also voice reduction. So if you are going on places which are very loud, it can still recognize your voice. So all these capabilities you have to build within a hardware, which is what you continuously keep on iterating. So this is the version 5.
1: So basically kaise device banayi hai jise pendant ki tarah gale mein pehen sakte hain and wo aapki baaton ko sunega aur us voice ke basis pe wo cheezon ko analyze karke aapko remind karayega.
0: Right.
1: तो धनंजय जी का ये इन्वेंशन समाज के उन तबके के लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जिन्हें हर रोज तमाम मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, बिजनेस बिल्ड करने में काम करते हैं, कॉरपोरेट के हाई पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं और उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज अपनी पर्सनल लाइफ को इफेक्टिवली मैनेज करने, रिमाइंड रखने और सही फीलिंग्स को फैक्ट्स के साथ डिलीवर करने में मदद करेगा. यानी कुल मिलाकर कहें तो टेक्नोलॉजी की मदद से आपका दूसरा माइंड बनकर, आपकी याददाश्त बनकर, आपके रिश्तों और आपके काम के बीच में एक खूबसूरत सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेगा. वैसे याद रखने की कैपेसिटी हमें बचपन से ही बोली जाती है कि इस पर ध्यान दिया जाए, खासकर जब हम एक स्टूडेंट होते हैं. और स्कूल टाइम में बच्चों को याद रखने के लिए रटने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत होती है. और वो कहते हैं ना कि किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था से तय होता है. लेकिन आज भी अनेक ऐसे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं जहां पर टेक्निकल क्वालिटी वाली शिक्षा की पहुंच शायद बहुत अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाई है और समाज के इस गैप को समझकर इस पर काम करने की नवाचार की कोशिश कर रही हैं देश के स्कूलों को टेक्नोलॉजी में लीड दिलाने वाली एक निजी कंपनी की सह संस्थापिका स्मिता देवरा जी. समाज में बड़े बदलाव को लेकर शिक्षा जगत में क्या इनोवेशन वो कर रही है उन्हीं से समझते हैं.
2: दुनिया आगे बढ़ गई है विद टेक्नोलॉजी. बच्चों को खाली किताबों से हम अब नहीं पढ़ा सकते. हम सब ऑल्सो एज एडल्ट्स कई अलग अलग तरीकों से सीखते हैं तो हमें वो सब टीचिंग प्रैक्टिसेस स्कूलों में लानी चाहिए और अपने बच्चों को एक्सपोज करनी चाहिए. तो इसलिए आई वुड से कि हमारा यूएसपी जो है मेन कि हम स्कूल में क्या चेंज लाते हैं, आई थिंक आई वुड से कि हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं. पहले ये कि हम स्कूल में जो लर्निंग रोट लर्निंग थी उसको डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाते हैं थ्रू वॉट आई कॉल मल्टी मॉडल लर्निंग. उसका मतलब ये कि टीचर खाली ब्लैक बोर्ड और किताबों से पढ़ाने की बजाय अलग अलग तरीकों से पढ़ाते हैं बच्चों को. तो उसमें हम ऑडियो विजुअल भी होता है क्लासरूम में, बुक्स एंड एक्टिविटीज भी होती हैं, काफ़ी सारी इंटरैक्टिव ग्रुप एंड टीम एक्टिविटीज होती हैं जो हम स्कूल्स को प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए सारा मटेरियल. तो हम इस तरीके से अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि सब बच्चे समझ सकें और वो जो सीख रहे हैं वो अपनी जिंदगी में उसको एक्चुअली अप्लाई कर सकें, जिसको हम रियल लर्निंग बोलते हैं. सेकेंड इज कि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा तकलीफ एक्चुअली टीचर को है. इतना ज्यादा हम टीचर के ऊपर प्रेशर डालते हैं और इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है बट हम टीचर्स की हेल्प नहीं करते बाय सिंपलीफाइंग थिंग्स फॉर देम. और टीचर को इतना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होता है. तो जो सेकंड हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कि हमने टीचर की लाइफ को बहुत सिंपलीफाई कर दिया, जहाँ हमने एक टैबलेट और टीचर ऐप के जरिए टीचर को सब कुछ जो उनको करना है उनके लिए ईजी कर दिया ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में बहुत ज्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े, वो अपने बच्चों पे अपने क्लासरूम पे फोकस करें. सेकेंडली जो बेस्ट टीचर्स अराउंड द वर्ल्ड करती हैं वो प्रैक्टिसेस हम इन सब टीचर्स के पास ला सकें. टीचर्स बहुत मेहनत करना भी चाहती हैं और आई वुड से कि होनहार भी बहुत होती हैं पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते ऐसी छोटी जगहों पे और एक या दो ट्रेनिंग करके नहीं उनको मदद मिलती. तो वो हमारा सेकेंड यूएसपी है कि अल्टीमेटली अगर हम उस टीचर को बहुत अच्छा बना दें, एक्सेलेंट बना दें, तो उस क्लासरूम में एक्सेलेंट पढ़ाई होगी. तीसरा आई वुड से कि स्कूल में टीचर के अलावा पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर, स्कूल ओनर, उन सबको अगर हम एक कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं तो उन सबको पता होता है कि बच्चों के साथ अभी कौन सी चीज़ अच्छी चल रही है, कौन सी चीज़ में बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या मदद करनी है. और इस स्टेक होल्डर को कनेक्ट करना हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम करता है.
1: इस तरह का इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम आपने करीबन 1600 से ज्यादा स्कूलों में लगा दिया है. तो रूरल और अर्बन एरिया के बीच में क्या कुछ डिफरेंसिएशन आप देखते हैं कि वहाँ के स्कूल, वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस तरह के नवाचार पर काम करना चाह रहे हैं या कितना आसान या मुश्किल दिखता है अभी आपको?
2: अगर हम देखें तो पहले स्कूल्स में स्मार्ट क्लास एंड स्मार्ट बोर्ड्स लगाना बहुत महंगा होता था स्कूल्स के लिए. हमने क्या किया स्कूलों के साथ में कि हमने टीवी और टैबलेट्स के साथ में हर क्लासरूम को स्मार्ट क्लास बना दिया. अब वो 1/5 ऑफ द कॉस्ट में होता है. तो जहाँ स्कूलों में वो 2 या 3 स्मार्ट क्लास अफोर्ड कर सकते थे अब वो हर क्लास उनका स्मार्ट क्लास हो जाता है, जिसकी वजह से हर क्लास, हर सब्जेक्ट, हर पीरियड में बच्चा ऑडियो विजुअल

0: कंटेंट देख सकता है। ये सब ऑफलाइन मोड पे वर्क करता है, तो क्लासरूम में अगर इंटरनेट नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने उसको इनोवेट किया है इन अ वे कि जो चैलेंजेस थे उसको हमने ओवरकम कर दिया। दूसरी एक जो बात है, एंड अब कोविड के टाइम पे ये काफी हुआ है कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और डेटा का पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है स्मॉल टाउन इंडिया में भी, तो हम उन्हीं डिवाइसेस को, मोबाइल फोन को कैसे स्मार्टली यूज कर सकें, और बच्चे जो फोन पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं या वेस्ट करते हैं उसको हम कैसे इंटरेस्टिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो हमने एक मोबाइल फोन और पेरेंट का जो फोन है उसका भी एक्सेस यूज करके, इनफैक्ट हम मार्च से फुल्ली ऑनलाइन स्कूल चला रहे हैं अपने स्कूलों के साथ, जहाँ पे हम लीड स्कूल एट होम के द्वारा हमारी टीचर्स भी जो स्कूल टीचर्स हैं उनके साथ काम करके बच्चों को पढ़ा रही है। तो आई वुड से कि चैलेंजेस हैं, और अगर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जाएंगे, ये बेटर हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं देखती कि ये चैलेंजेस की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आई थिंक डेटा है, मोबाइल फोन्स हैं, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी चीप हो गई है, तो हम काफ़ी इनोवेट कर सकते हैं ताकि इन सब छोटे शहरों में भी स्कूल्स कंप्लीटली टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हों, और अब इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये खाली मेट्रोज में, बड़े स्कूलों में ही प्रोवाइड किया जाए।
1: तो ये तमाम पहले अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सके। किसी का प्रयास शिक्षा की गुणवत्ता को टेक्नोलॉजी से जोड़कर बेहतर और आसान करना, कहीं टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदगी आसान करना, कहीं प्लास्टिक के बीच में ज्ञान की संभावनाएं ढूंढना, तो कहीं गोबर से रोजगार, ये तमाम कोशिशें हमारे ही समाज के अलग अलग नवाचारक कर रहे हैं, और ये उन्हीं लोगों में से हैं जो हमारे सवेरे को हर रोज नई उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिशें हमें बताती हैं कि बदलाव संसाधन से बाद में, सोच से पहले आता है। एक संवेदनशील सोच, एक रचनात्मक सोच, और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की सोच अगर हम अपने भीतर भी पालना शुरू करें तो हम अपने संग संग समाज को भी दे सकते हैं नई उड़ान। आज के हमारे खास सेगमेंट नई सुबह के लोग में आरती के साथ फिलहाल के लिए इतना ही।

बिल्कुल दोस्तों, कहा गया है किसी बड़े बदलाव की शुरुआत युवा शक्ति से होती है, तभी देश प्रगति करता है। हमारे श्रोताओं तक इतने महत्वपूर्ण विषय को लाने के लिए आरती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपको उत्तर प्रदेश विकास और अवसर समाचारों से रूबरू कराने का। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं का गुणवत्ता ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इससे औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने और निवेशकों को का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ में शहरी विकास और सुनियोजित विस्तार को लेकर नई पहलें जारी हैं। LDA ने IT सिटी और वेलनेस सिटी जैसी प्रमुख परियोजनाओं के आसपास अनियोजित भू खरीद और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के कदम उठाए हैं, जिससे भविष्य की विकास योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 30 जून तक विभिन्न जिलों में 13 रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों के माध्यम से 6,000 से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाने की योजना है। जून माह में स्नातक युवाओं के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में अनेक भर्तियां निकली हैं। SSC, बैंकिंग, रक्षा सेवाओं तथा अन्य सरकारी क्षेत्रों में आवेदन के अवसर उपलब्ध हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के विकास और अवसर से जुड़े प्रमुख समाचार। प्रदेश में आधारभूत संरचना, निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में लगातार प्रयास जारी हैं, जो राज्य की प्रगति को नई दिशा दे रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, ये मुलाकात एक बहाना तो नहीं है। हम फिर मिलेंगे और यूं ही मिलते रहेंगे इसी प्रोग्राम में। लेकिन आज हमें आपसे विदा लेना होगा, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है। मिलेंगे हम फिर किसी दिन इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नई उड़ान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए सुनिए आवश्यक सूचना। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prasarbharti.gov.in/NIPP/ या आप akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF पर भी विजिट कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ।

0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
3: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
2: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत, हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: आंगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञानविभागेन पूर्वानुमानितम्। उत्तरपश्चिमभारते मध्यभारते च आगामिषु त्रिषु दिनेषु अधिकतमं तापमानं 2-6 डिग्री सेल्सियस् पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। तेलुगुदेशं पार्टीति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण एन् चन्द्रबाबू नायडुवर्येण आगामि जून् मासस्य 18 दिनाङ्के राज्यसभानिर्वाचनाय स्वकीयस्य दलस्य 3 प्रत्याशिनः घोषिताः। तेषु उद्योगपतिः सना सतीशः, शिक्षाविदभाष्यं रामकृष्णः तथा TDP सामाजिकमाध्यमप्रकोष्ठस्य प्रमुखः चिन्तकयाला विजयः च सन्ति। अमेरिका ईरान देशयो मध्ये संघर्षस्य शतदिनानि जातानि। फरवरी मासस्य अन्ते ईरान देशे अमेरिका इज़राइल देशाभ्यां कृतैः आक्रमणैः आरब्धः अयं संघर्षः अधुना विस्तृतक्षेत्रीय सङ्कटे परिणतः जातः। अस्मात् संघर्षात् होर्मुज्जल सन्धि मध्ये सुरक्षित समुद्रयान परिवहनाय सङ्कटम् उत्पन्नम्। अधुना लेबनान देशे पुनः संघर्षयुता स्थितिः उत्पन्ना जाता। केन्द्रीय युवकार्याणां क्रीडामन्त्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अद्य प्रातःकाले नवदिल्लीनगरे आयोजितस्य फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य 77वें संस्करणे सहभागित्वं कृतवान्। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् असौ अवदत् यत् साइकिल इति द्विचक्रिकायानस्य सञ्चालनात् पृथ्वी स्वच्छा भवति तथा च यातायात सम्बद्धस्य अवरोधस्य गंभीर समस्यायाः समाधानम् अपि प्राप्यते।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है। तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: अभिनेता विक्रांत मैसी अपि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। एतदभियानम् अद्वितीयम् इति वर्णितवान्। सः अवदत् यत् एषः उपक्रमः अधुना जनान्दोलनरूपं धारयति। अद्य विश्वखाद्यसुरक्षादिवसः आचर्यते। अस्य वर्षस्य विश्वखाद्यसुरक्षादिवसस्य विषयः अस्ति समाह्वानात् समाधानपर्यन्तं सर्वत्र सुरक्षितं भोजनम्। अयं दिवसः खाद्यसुरक्षायाः अधिकाररूपेण तथा सामूहिकदायित्वरूपेण जागरूकतां वर्धयितुं सशक्तम् अवसरं प्रददाति। स्वास्थ्य परिवार कल्याणमन्त्री जगत् प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्याय सुरक्षित स्वच्छ भोजनाय च भारत प्रशासनिक प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे उत्तमम् आहारं स्वीकर्तुं तथा च आत्मनिर्भरभारतस्य निर्माणे योगदानं दातुं जनेभ्यः आहूतवान्। नवचण्डीगढ़नगरे आयोक्ष्यमाणे निकष क्रिकेट क्रीडायाः द्वितीये दिने भारतीयदलेन अफगानिस्तानदलस्य सम्मुखे 8 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 64.5 शतधावनाङ्कान् समर्ज्य प्रथमा चक्रीया क्रीडा घोषिता। भारतीयमल्लक्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्यपदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: अभिषेक भैया।
0: हाँ विवेक भैया,
1: देखो गर्मी कत्ती जर्रा पड़ी रही है, मानो जैसे ऊपर सूरज देवता आग बरसाए रहे हैं और हम सब झुलसे जाई थे।
0: भैया ये तो दिखाए पड़ रहा है और मौसम विभाग तो यहाँ कह रहा है भाई दो चार दिन और सुलगाए वाली है या गर्मी।
1: दादा रे, तो इतनी गर्मी मैया भैया हम लोगों के यहाँ बचे चाहिए। और दूसर चीज, अपन गर्मी से तो सब बचते हैं, मूल खान पान जौन है वही का विशेष ध्यान देख चाहिए।
0: विवेक भैया ऐसी गर्मी में यहाँ खान पान का अगर ध्यान जो तनको न दे हो तो तुरंत ही तबीयत भैया खराब हुई जाए और फिर वही का सुधरावे में रुपया पैसा तमाम लागी। तो खान पान ऐस भैया अपन सबको संतुलित रखें, ऐस हलुक भैया खान पान खाना वाना खाएं, अपने थरिया में है ऐसे ऐस जौन है खान पान हुए जौन आराम तेने तुरंत पच जाए।

0: सके आइस भोजन लें।
1: बिल्कुल तनिको शरीर कहीं नुकसान ना हो पावे कोनो
0: बिल्कुल
1: तरीके से। यह जर तनिके जौन है आज भैया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जौन के रूप में यह मनावा जा रहा है, जिससे कि का होते कि आपन जौन है दूषित भोजन जौन होते वैसे दुनिया भर में कतने जौन है बीमारी फैलत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है, तो इस सब कहीं जौन है हम लोग उनका देखे है और इनसे बचे है, खास तौर पर जौन आपन बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनका जौन है विशेष ध्यान देख है। काहे से मतलब सबका ध्यान देख है, लेकिन ई जौन है दूषित भोजन से हम लोग उनके यहाँ बचे का और अपने शरीर का विशेष ध्यान देखे।
0: विवेक भैया, यू जोन खाद्य सुरक्षा दिवस तुम बतायो ना, इका जोन मनावे के उद्देश्य यह रहा है कि जोन ई तन की चीजें जोन दूषित भोजन से खराब खाना हुई गवा है खा लेन है, और यू खास कर देखा जो गरीब मनाई होते भैया, उनके पास इतनी क्षमता ना होते कि भाई आग दैंक बनावा है दो तीन दाई इस्तेमाल कर लेन खा लेन, तो हमका इसे बचे के भैया अगर ज्यादा भोजन है भैया तो उनका अगर चाहो तो खर्च कर लो, उन्हें कोई ताजे हो तबे का कोनो हराह गुरुन के दे दो खुद इस्तेमाल। इस समय गर्मी में जब है तब तो हमका विशेष ध्यान रखा गया कि रखा हुआ खाना ना खाए, कैसे खराब आजकल तुरंत हो जाए पता नहीं चलत भैया।
1: बिल्कुल, सुबह कर बनाओ दोपहर संझा तक जौन है ये सब बेकार हो जाते हैं, तो हम लोग इनका आइस भोजन करे चाहिए जिससे हम लोग इनके शरीर में यहाँ कोनो रोग दोग ना हो।
0: बिल्कुल भैया, और कुछ चीजें हमका जरूर खाना बनौतो खन खात खन और पूरे दिन में हमका जरूर ध्यान रखेगा, जैसे सफाई हमका जब खाना बना रहे हैं तो ज्यादा हमका सफाई खाली खराब भोजन खाए तेने नहीं, हमका बनाउतो खन भैया ध्यान रखे कि जब खाना बन रहा अपने रसोईया में यहाँ तो इसकी साफ सफाई बहुत रखक है।
1: बिल्कुल, साफ सफाई के जरिए जब पानी की बात करी थे तो पानी जब हम लोग पीते तो वही कहो हम लोग उनके यहाँ देखेंगे कि पानी साफ सुथरा है कि ना है।
0: भैया देखो दो चीजें हैं भाई, खान पीन खाना और पानी, अगर ये दोनों चीजें हैं तो आदमी जीवन अपन नीके तेने जी लेते हैं।
1: और इस गर्मी में यहाँ पानी केर जौन है किल्लत बहुत होत है, काहे केर जौन है हर जगह पानी केर मांग होत है, तो हम लोगन के यहाँ पानी का भी बचाव एक है।
0: बिल्कुल
1: है कि भैया कहूँ बम्बा वम्बा खुला होए वही का जौन है लोग का करते हाथ पैर धोए बल दी जाते हैं या नहाए बल दी जाते हैं तो वही जौन खोल चले जाते हैं, तो भैया बम्बा जौन है अपन बंद कर देख चाहिए और फालतू पानी जौन है हम लोगन के यहाँ बेकार ना करे चाहिए।
0: और विवेक भैया देखो इससे पहले हमका स्वाचक यू है कि जैसे सब जने जानते हैं कि अपने धरती पर जो पानी है पिए वाला वो बहुत कम है।
1: बिल्कुल,
0: वैसे तो भाई कहा जाते हैं कि 70-72% है देखो पानी मुला पिए वाला जो बहुत कम है। तो और उनकी जब मारा मारी हुई पिए वाला जो मीठ पानी कहा जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें अपने सबके पर रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो इका कोशिश हमका यू करे कि जौने तना तने जितना हो सके सरकार तो बहुत ध्यान भैया देखो देते हैं, सरकार और जो हम सब जने नागरिक मिलके कोशिश करब कि तनुक तनुक छोटी छोटी चीजें कहके हम इस्तेमाल करब तो हम इका जरूर बचा सके थे।
1: बिल्कुल भैया, सीमित मात्रा में यहाँ जल बचा है और सीमित मात्रा में यहाँ भी हम लोगों का पेक लिए है, तो वही का जौन है हम लोगों का विशेष ध्यान देख है। और यह तनके आज जौन है इतवार, आज अपन जौन है कार्यक्रम में यहाँ कुछ विशेष कार्यक्रम लेके आवा जाते हैं।
0: बिल्कुल भैया, तो आज देखो इतवार के दिन लोक भाषा कवि गोष्ठी है अपने कार्यक्रम में यहाँ, जिमा प्रतिभागी कवि हैं इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश भैया, रामकरण मिश्र सैलानी भैया और रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर भैया। तो यू और जौन रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी भैया हैं वही संचालन कर रहे हैं, तो या लोक भाषा कवि गोष्ठी सुना जाए।
1: बिल्कुल भैया सुना जाए।
2: भैया आज की लोक भाषा कवि गोष्ठी में यहाँ अवधि कविता पाठ करे इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश भैया मोहम्मद मऊ सठवारा रायबरेली से, रामकरण मिश्र भैया सैलानी जी महसी बहराइच से, और हम रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर पूरे सुबेदार खरावा अमेठी से आए हन। आज की कवि गोष्ठी में सबसे पहले हम रायबरेली की धरती से पधारे इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश भैया से निवेदन करी थे कि वह आज आपन अवधि की रचना पढ़ाएं। इंद्रेश भैया,
3: भैया ये जेठ का महीना है और गर्मी बहुत भयंकर है, तो वही पर एक छोटी सी रचना है कि तपत जेठ बहुते हलकानी।
2: क्या बात,
3: तपत जेठ बहुते हलकानी, 47 के ऊपर पारा चढ़ा बैठ है भैया, और बूढ़ जवान मर्द मेहरारू करत है दैया दैया।
2: सही है,
3: अरे पंखा एसी कूलर चौपट गरम हवा है फ्याकत, और बहुत पसीना जैसे पानी सब वही माँ पाकत, और सूरज देवता काहे कोपे को बात ना जानी, तपत जेठ बहुत हलकानी, तपत जेठ बहुत हलकानी,
2: बहुत सुंदर,
3: और सूरज दादा बहुत तपे।

0: है भयंकर आग के गोला।
1: हाँ।
0: और लोग थपेड़ नमा मनाई का होइगा आधा चोला।
1: हाँ।
0: और घर बाहर नहीं चैन परत कहूं।
1: हाँ।
0: जेठ है तपन बढ़ाए।
1: हाँ।
0: और घर से बाहर बाहर से घर मनाई यह लगाए।
1: हाँ।
0: और भीफड़ गर्मी के झोंकन से सबे धरा को मिलानी।
1: क्या कहना,
0: तपत जेठ बहुते हलकानी।
2: वाह वाह,
0: तपत जेठ बहुते हलकानी।
1: अच्छा है भैया,
0: ताल तलैया नरवा नैया नदियन माँ कम पानी।
1: वाह।
0: और जीव जंतु की बिन पानी के मरी जात है नानी।
1: हाँ।
0: सब ही मरत पियासन होई गवा पानी का कम ताला। और नल फेल आधे से ज्यादा बहुत है गड़बड़ झाला।
1: हाँ।
0: बहुचती हो ना जो तनिको झेली हो सबे परानी।
1: हाँ।
0: तपत जेठ बहुते हलकानी।
1: वाह।
0: तपत जेठ बहुते हलकानी।
1: अरे का कहे थे भैया।
0: तो पर्वत काट्यो बिरवा काट्यो हरियो हरेरी धानी।
1: हाँ।
0: और प्रकृति संतुलन जान बिगारियो की हो खूब मनमानी।
1: हाँ।
0: धरती नव औ हवा बिनाफियो बिनफी आगी पानी।
1: हाँ।
0: और जब कीन हो तफ भोग उताता करो जौन नादानी। और काट पीट सब बंद करो अब मानो हमारी बानी। तपत जेठ बहुते हलकानी। तपत जेठ बहुते हलकानी।
1: का कहे के
0: भैया। और पंचो दूसरी कविता है।
1: हाँ भैया पढ़ा जाए।
0: कि हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी जो बहुत कम हो चली जा रही हैं, दिन का दिन विलुप्त होती जा रही हैं।
1: हाँ,
0: तो वही पर है कि ना देखियो तो कुछ न देखियो, ना देखियो तो कुछ न देखियो। अरे बखरी वाली कोठरी देखियो जलत ताक पे ढिबरी देखियो।
1: हाँ।
0: बखरी वाली कोठरी देखियो जलत ताक पे ढिबरी देखियो। दलान और ओसारा देखियो मनई बैठ द्वारा देखियो।
1: हाँ।
0: दाल भात तरकारी देखियो घर के अपना टारी देखियो। और दांत सफाई दतुवन देखियो। और खाए पिए मा फतवन देखियो। ना देखियो तो कुछ न देखियो।
1: हाँ भैया।
0: और चाह पिए के खुरिया देखियो। और चाह पिए के खुरिया देखियो टाठी और कटोरिया देखियो। बाग बगीचा देखियो फनाई पटुआ ढैंचा देखियो। ओ खात कहू का क्रिया देखियो बाबा केरिया टरिया देखियो। ओ बफुला देखियो फरुहा देखियो। और ना देखियो तो कुछ न देखियो। ना देखियो तो कुछ।
1: वाह भैया वाह।
0: भारी बाग बगीचा देखियो झौआ खेचली खैचा देखियो। भारी बाग बगीचा देखियो झौआ खेचली खैचा देखियो। पोखरी गढ़ही गढ़ा देखियो बाबा वाला मढ़हा देखियो। ना देखियो तो कुछ न देखियो। बरगद वाला भुतवा देखियो रतिया मा जम देखियो। ओ कहूं जलत लालटेन देखियो। ओ कबहू घड़ीमा टेम देखियो। ओ द्रीहे पर ब्रह्म देव देखियो। ओ लरिकन केर कुटियो देखियो। ओ टोला और मुहल्ला देखियो नाचत कहू मुकल्ला देखियो। ना देखियो तो कुछ न देखियो। ना देखियो तो कुछ न देखियो। ओ पुतना और पुतना हरी देखियो। पुतना और पुतना हरी देखियो खात कोहू इर्फी आउर देखियो। और पाथत कोहू का कंडा देखियो बांधे कोहू का गंडा देखियो। ओ हाउदा लेहनी फानी देखियो मनई केर किसानी देखियो। ओ कोहू का बनत बकैया देखियो उड़त कहू का नकैया देखियो। और ना देखियो तो कुछ न देखियो। ना देखियो तो कुछ न देखियो। पंचो अब एक आगे कुछ दो चार दोहा सुन लीन जाए। तो गुरु महतारी बाप का जो न करे सम्मान।
1: हाँ।
0: गुरु महतारी बाप का जो न करे सम्मान वही फबे कलिकाल मा होत बहुत हलकान। चमकत है जिन घरन मा बूढ़ बुजुर्गन बार ओ खुफ नसीब हुई होत सब बहुते घर परिवार। बुजुर्गन करियो सेवा तो आगे पई हो मेवा। बुजुर्गन करियो सेवा तो आगे पई हो मेवा। बूढ़ बिरछ फल द्यात कम द्यात फीतली छाओ। ओ धन तो कम संस्कार अति द्यात है बूढ़े पाओ। करो सब इनकी सेवा खाओ संस्कारी मेवा।
1: बहुत सुंदर इंद्रेश भैया बचपन का याद दिवा दियो। अब हम चाहिए थे कि महसी बहराइच से रामकरण मिश्र सैलानी भैया आए हैं वो अपन रचना पढ़ाए। भैया सैलानी जी
3: या रचना एक नायिका बहुत परेशान है जेठ दोपहरी से इतना तंग हो गए है।
1: अच्छा।
3: ई गीत के माध्यम से हाँ देखा जाए।
1: हाँ भैया।
3: मानो बरसे आगी अंगार।
1: हाँ।
3: मानो बरसे आगी अंगार टप टप चुवे पसीनवक धार। महीना जेठ तपन ते दहिया हो गए करिया दुपहरिया पिया काटे ना कटे। दुपहरिया पिया काटे ना कटे। ताप सहा ना जाए गांव के गई झुराए तलैया। ताप सहा ना जाए गांव के गई झुराए तलैया। झांकी रहे झुआ झनते पंछी फुद के ना गौरैया।

0: तड़पे मछरी सूख सवार, सिगरे जीव भये लाचार। और यह लाइन देखा जाए कि फूली फली सूख गए काका के फुलवरिया, दोपहरिया पिया काटे ना कटे। फूली फली सूख गए काका के फुलवरिया, दोपहरिया पिया काटे ना कटे। बाग बगीचा कटे रात दिन सपन हो गई छहिया, सूना निबिया बिना द्वार। निबियो कट गए सूना निबिया बिना द्वार, सूनी बखरी बिना बखार। ना ही गौआ माव छानी और छपरिया, दोपहरिया पिया काटे ना कटे। और आखिरी पंक्ति और देख लियो।
1: हाँ भैया।
0: त्वचा रोग होई जाए घाम ते खांसी खौरा आवे, त्वचा रोग होई जाए घाम ते खांसी खौरा आवे। आखिन केरी मर जाए बाढ़ है जुरते लू लग जावे। सब ते यह सनेस हमार, घाम हम निकरो सोच विचार। तनिको द्यारन लागी होई जाई डायरिया, दोपहरिया पिया काटे ना कटे। दोपहरिया पिया काटे ना कटे। इके साथे हमारा मन रहा है कि आग अवधि की रचना और सुनाए।
1: पढ़ो भैया, पढ़ो भैया।
0: तो हमारे अवधि जो है
1: ऐसे
0: ऐसे प्रयोग भये हैं। हम लोगों के काम यहाँ है कि जो विलुप्त हो रहे हैं उन्हें शब्दन के लावा जाए, अक्षरन के लावा जाए।
1: हाँ भैया।
0: सिगरे जग मा सरनाम भई सब ते मीठी सुंदर सुतार, सिगरे जग मा सरनाम भई सब ते मीठी सुंदर सुतार। अवधि हमारी अवधि हमारी अवधि हमारी अवधि हमारी।
1: हाँ भैया।
0: जन्मत खन बच्चा किहे किहे जब बोले तब बाजे लुआखर, ओ सोहर सरिया नकटा बधाव गौ नई हो अंगना बाहर। अनकढ़ियू मेहरुए गाय रही औधि माँ गटई फारी फारी। अवधि हमारी अवधि हमारी अवधि हमारी अवधि हमारी।
1: बहुत बढ़िया।
0: रामायण लिख तुलसी बाबा, श्री राम के तु फहराए दिन। रामायण लिख तुलसी बाबा, श्री राम के तु फहराए दिन। और धरती के कोने कोने में अवधि कई वृक्ष लगाए दिन। रसवेद पुराणन कई निचोरी, आखर आखर का रच संवार। अवधि हमारी अवधि हमारे अवधि हमारी अवधि हमार। समय का ध्यान देखत हुए एक पंक्ति में और कही।
1: हाँ भैया। हाँ।
0: कि जायसी केर पद्मावत ते।
1: हाँ।
0: अपनी अवधिक विस्तार मिला, जगजीवन दास मलूक और रघुनाथ दास कई प्यार मिला। रमई काका गुरुवर मृगेश, बंसीधर माथे पलिहिन धार। अवधि हमारी अवधि हमारी
1: जवाब नहीं
0: हमारी अवधि हमार।
1: अरे वाह, बहुत भैया, सैलानी भैया बहुत बढ़िया। कहो इंद्रेश भैया, सैलानी भैया, अब हमहू कुछ कहा चाहिए थे। गर्मी दोनों जनन के सताई से है तो हमहू को नवतपा मार जला दे। कि नवतपा तो ऐस तपा मांजर सब ढील भई, पियत पियत पानी पानी प्यास ना बुझानी है। और खीरा और ककरी तरबूज नारियल पानी, खरबूजा खायन रस गन्ना लासानी है। चिनगी उठे घामे माँ घर तेनी निकसी, तो लप लप लपके दोपहरी जल जलानी है। और पानी भीज गमछा सिर बांधे तबो तपे मूड़, गर्मी तो मारे आग झोंका लूक सानी है। गर्मी तो मारे आग झोंका लूक सानी है। अब देखो भैया का हालत है, इज्जत कैसे बची। कि कुआं है सुखाने नल सगरे फक फक करें, हर घर नल जल वाली टोटी जू बचाए है। अब गैया भैंस गोरू सबे कुकुर बस ढूंढ है ताल, अमृत सरोवर आज बहुत मन भाए है। सेतुआ राब सरबत और छाछ मठा चाप रहे, गावन ओ आर एस घोल बटा जू जुड़ाए है। और चोखा बाटी खिचड़ी दहू दाल भात खाए रहे, पानी पी पी कौन्यू तिना वही का पचाए है। और भैया अब की तीसरे साल पुरुषोत्तम मास यानी मलमास परा, जहाँ देखो बजरंग बली के जय है। और हिया लखनऊ से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना आपका बतावा चाहिए थे। कि पुरुषोत्तम मास हवे कुछ तो कहे मलमास, पूजा पाठ जप तप दान यज्ञ भावत है। और आठ आठ मंगल बड़ के मंगरेब की है भाई, राम भगत हनुमान भगत हर्षावत है। मंगर सनीचर भंडारा हुए चारियु वार, सरबत ठंडाई पूरी सब्जी बटवावत है। और कहो छोला चावल बूंदी हलवा कढ़ी भात बटे, भगतन के टोली जयकारा लगवावत है। भैया गावन ते सहरन तक जय हो बजरंग बली, सुंदर कांड चालीसा पाठ कही सुनावत है। और ढोलक हर

0: राम जीरा झांझ करताल बजय, तबला मृदंग बजय, भगत सबय गावत हैं। हिंदू व मुस्लिम सिख ईसाई साथ दिखे, अली के मुहल्ले बजरंग बली भावत हैं। अपने लखनऊ अलीगंज के किहानी आए, बेगम आलिया के सपन बजरंगी आवत हैं। बेगम आलिया के सपन देखो भैया, बेगम आलिया के गोद भरी नाह चिंता रही, पति थे नवाब सुजाउद दौला जानिए, और सपने माँ उनका हनुमान जी के मूर्त मिली, मिला यो संदेश स्थापना के हित आनिए। खोदी गए मूरत हाथी पा सवार होय के चली, अलीगंज रुकी ठाव पावन अनुमानिए, और हुए थापि मूरत का आलिया के गोद भरी, आलिये थे अलीगंज नाव परा मानिए, आलिये थे अलीगंज नाव परा मानिए। और भैया संकट मोचन हनुमान के द्वारे तो का कहे खे, संकट मोचन के द्वारे लखनऊ माँ भगत खड़े, नंगे पाँव तपय भूमि दर्शन मन भावा है, और भोरहिन सबेरिन ते मंदिर पट खुल जात, आधी रात तक देखो घंटा गहरा है। पासे माँ वही के बेगम हजरत महल पारक है, रोजय भंडारा के प्रसाद मन भावा है, और पूरे जोठ महीना शुद्ध जेठ मलमास जेठ, जय हो बजरंगी कृपा केर छत्र छावा है। और भैया अब 5 जून का पर्यावरण दिवस मनावागा, प्रधानमंत्री को संदेश दिहिन कि 5 जून पर्यावरण दिवस मनावा जाए, पेड़ पौधा ठाव ठाव रोप हरसाइये, और गर्मी से मुक्त मिले छाया फल लकड़ी है, देख देख हरियाली आत्मा जुड़ाइए, और यही ते तो बरखा होए खेती किसानी बदे, पौध रोप बिरवन के छतरी जस छाइए, और मन की बात में यहाँ प्रधानमंत्री जौन कहिन, सबे जन वही का तन मन ते अपनाइए, सबे जन वही का तन मन ते। भैया 21 जून आवे वाला है, आई 21 जून जोग केर दिन जानो, जोग साधना यो प्राणायाम करी डारिये, भस्तिका कपाल भाती अनुलोम यो विलोम, सूर्य नमस्कार करी हालत सुधारिये, सिर के बल खड़े होके आसन मयूर करो, पद्मासन धार साधना ते कष्ट टारिये, और ऋषि और मुनि लंबी जिंदगानी जिए सदा, उन्हीं के कुल गोत्र रोग दोख मारिए, उन्हीं के कुल गोत्र रोग दोख मारिए, कि गंगा दशहरा भवा यही दिन गंगा जी, शिव की जटा ते धरती पर यहाँ आई हैं, गंगोत्री ऋषि के हरिद्वार होती हुई, काशी प्रयाग तीर्थ स्थली बनाई हैं। वही दिन ते देखो उत्तराखंड भीड़ बढ़ी, गंगोत्री जमनोत्री कैसे छटा छाई है, और बदरी केदारनाथ अतनी है भीड़ भाड़, लागत सगरी वसुधा ही है चली आई है, लागत सगरी वसुधा। भैया अब अक्टूबर तक सिगरे कपाट खुले, थोड़े थोड़े जाओ भाई रुक के पधारिये, और छुट्टी का भाई बस सीधे सिधार दिन हो, रुको थमो मौका देख तीरथ सिधारिये, आपन सरकार किए बहुते देख रेख हुआ, जाओ तुम जरूर मन आपन न मारिये, अति हर ठाव बरजी जाति हवे जान लेओ, धीरज ते पार उतरो धीरज मन धारिये, धाने केर बेड़ करो यही मैया कीन जात, अच्छी किस्म वाला धान बीज जाए लाइये, और शोधन कर बीज के पलेवा खूब मार भाई, छिटकौआ बीज फेना बैठे पाबो आइये, और खेती और किसानी माँ बतावा जात रोज रोज, 20 दिन बाद पौध खेत माँ रोपाइये, और चारू वार तेनी रुंधवायो बनाए खेत, सींच पात खाद डारी देहरी भरवाइये, सींच पात खाद डारी देहरी भनवाइये। एक छंद देखो बच्चे गाँव में आए हैं, ये बच्चन का गर्मी माँ नदी नहर पोखर ना भेजो उन्हें, घर मैया कुआं नलके जलते नहलाइये, और दाल भात चोखा बाटी कढ़ी और फुलौरी बने, बिस्नौटी रोटी घी मट्ठा पिलवाइये, शरबत ठंडाई पना दही और सैढ़ा खाएं, दादी नानी घर वाले बिंजन जिमाइये, और साल भर बाद फिर छुट्टी भये घर आई है, एक माह आनंद से उन संग बिताइए, एक माह आनंद से उन संग बिताइए। भैया आज की ये लोक भाषा कवि गोष्ठी माँ हमारे साथे इंद्र बहादुर इंद्रेश भैया मोहम्मद मऊ सठवारा रायबरेली से, रामकरण मिश्र सैलानी भैया महसी बहराइच से, और हम रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर पूरे सुबेदार खरावा शिवरतनगंज से आयन। आपका यह लोक भाषा कवि गोष्ठी कई सलाग हमका जानकारी अपनी चिट्ठी पत्री के माध्यम से दियो।
1: अभिषेक भैया
2: भैया
1: देखो कितनी बढ़िया जौन है कवि गोष्ठी रहा है कि इमा सब चीज के समिश्रण कायदे से जौन है भैया लोग करीन है। और पहली चीज देखो गर्मी के बात बहुत अच्छे से भाई, दूसर चीज की जो जेठ के महीना चल रहा है वही मा जौन है हनुमान जी के जो बड़ा मंगल भंडारा हो रहा है वही की बात बताई गई, और बलमास के महीना चल रहा है, और दूसर चीज यौन है अपन लखनऊ के जौन है इमा चित्रण कायदेस किया गवा है
2: काहे मनावा जाते
1: कि बड़ा मंगल जौन है काहे बदके बनावा जा रहा,
2: सही बात,
1: और जौन है गर्मी के छुट्टी

0: दोस्ती भी चल रही है, सब जौन है बच्चा लड़का बच्चा अपन अपन मामा बिल्कुल, नाना बिल्कुल। मौसी खिया सब गए हैं,
1: और विवेक भाई के साथ जल संरक्षण भैया,
0: हाँ
1: और पर्यावरण संरक्षण खेती पाती और गंगा जी और सब चीज का मतलब मिला एक भैया हमारे जितने कवि भैया रहे सब प्रस्तुत करें है, और कितनी बढ़िया या कवि गोष्ठी रहे
0: बिल्कुल
1: इतनी बढ़िया लोक भाषा कवि गोष्ठी सुनाए बदे इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश भैया का, रामकरण मिस सैलानी भैया का, और जो नी गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलंकर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अब देखो खतवा के और चला जाए
1: भैया, उनके बिना कहूँ काम चले वाला है कोई?
0: हाँ,
1: क्या
0: बिल्कुल। अब खेती पाती जौन है बहुत जरूरी है मनई खातिर, काहे सिर वह हम लोगन के जौन है पूंजी है
1: भैया, पूंजी है और पूरे देश का है, पूरे दुनिया भैया भरण पोषण और पेटे में अनाज जौन जाते पैदा करे वाले भैया अपन किसान है भैया तो
0: बिल्कुल भैया। तो जौन है ई जौन मौसम चल रहा है भैया गर्मी के, जौन है तनिक सावधानी पूर्वक जौन है अपन खेती में यहाँ जाए करके खेती पाती के जो काम है वही का निपटावे चाहिए
1: भैया। देखो इतनी गर्मी है तो गर्मी में यहाँ काम हमका करक है मुगला, हमका ध्यान यू देख है कि दोपहरिया में न जाए के सवेरे सवेरे जल्दी या संझा बेरिया जाए के अपन काम निपटा लें खेती के, काहे निगरानी भैया तो बहुत जरूरी है, कुछ न कुछ अपने खेती में यहाँ हरदम कुछ न कुछ लाग रहा थे
0: बिल्कुल।
1: तो उनके लिए न तो भैया अपने हरा गुण के चारे है उनका तो देने है, तो सब चीज हमका करक है मुला अपन मौसम का ध्यान रखत भे, अपने शरीर जब नीक रही स्वस्थ रही तब है हम दूसरे का देखभाल कहीं पे।
0: बिल्कुल सही कहो भैया। आप देखो जैसे मालूम दे अगली फसल के यहाँ हम लोगों के यहाँ लेक है
1: बिल्कुल
0: है, तो अगली फसल जब लेक है तो वही की हम लोगों के यहाँ पूरी तैयारी करे है, पूरी जानकारी होक चाहिए कि हम लोगों के यहाँ कैसे लेक है का इसे का चीज करे है, वहीं माटी हमार कैसी है, वहीं कितना जौन है हम लोगों के बीज डाले के, तो ये सब चीजन के यहाँ अभी से अगर हम ध्यान दे लगे तो आगे जौन है हम लोगों के यहाँ कोनो परेशानी ना उठाए पड़ी।
1: बिल्कुल विवेक भैया, जैसे अपन खरीफ की फसल है जोनी है देखो मेन कह जाए धान है न, ते पहले देखो जब हम बवे वाले हुए तो खाली खेत परे रहा थे, तो इमा हम अपने बवे से पहले वाले तमाम चीजें जैसे आपके माटी की जांच करा ले को अपना जुताई के यहाँ भैया पलटवाए के यहाँ डार दे जीते तमाम तन के जो उन्हें कीट पतंगा हैं जो उन अपने फसल के नुकसान पहुंचावत हैं वही नष्ट हो जाते
0: सूक्ष्म जीव का अंडा बच्चा है जो फसल के
1: खरपतवार भैया वो नष्ट हो जाते हैं, तो ये सब काम के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है वो का है हरी खाद उत्पादन।
0: बिल्कुल भैया, और यो हरी खाद उत्पादन जोन करे है यो बहुत जरूरी है, काहे सर यो हमार माटी खातिर जोन है बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल भैया, वो एकदम का कहा था ना प्रोटीन काम करे थे
0: हाँ।
1: है ना, उमा सब चीजें हरी खाद में यहाँ मिली होती हैं, तो जोन सही समय है जैसे आप मान लो कि हमका धान है तो उसे पहले अगर ढैंचा है सनई है या कुछ भैया जायद में यहाँ पर जैसे दाली वाली कोनो फसल है
0: हाँ, मूंग है
1: हाँ, मूंग है उड़द है
0: हाँ।
1: है ना लोबिया है ये सब अगर बैध है हम तो इमा अच्छा दाली वाली चीजन में का है दाली मिल जाते हैं, और फिर उनका वह में खंदवाए दो है रोते ने रोटा बेटर थे ने, और भैया नमी है तो ठीक है नहीं तो उनको पानी चलवा दो सड़ी के बढ़िया हरी खाद तैयार हो जाते और जो आवेली फसल हुई वह बढ़िया एकदम बन के तैयार हो जाते।
0: बिल्कुल, अब देखो जब हरी खाद के बात कर रहे हो तो हम लोगों के यहाँ कोई रासायनिक उर्वरकन कर यहाँ प्रयोग ना करे है, काहे सर यो खाद हमार माटी खातिर जौन है बहुत अच्छी गुणवत्ता मतलब माटी के जौन है गुणवत्ता बनी रही है, और कबहू अगर हम कोनो अगर फसल लगाना चाहिए तो हमार माटी बिल्कुल स्वस्थ रही है।
1: बिल्कुल भैया, यू तो यह उद्देश्य है हरी खाद के भैया कि अगर हम अपनी खेती में यहाँ जैविक चीजन का इस्तेमाल कर हरी खाद है गोबर वाली खाद है कंपोस्ट है इनका सबका इस्तेमाल करब तो जौन अपन फसल तैयार के अपने घरे में ही और घरे के बाद जब का कुछ अपन पकावा जाई कि खाना बनी तो शुद्ध चीज हमारे पेटे में जाई और जो ने बीमारी सब चीजें देखो भाई बात किंजारे रहे खान पीन तने होते तो वो बीमारी का प्रकोप बहुत कम होते भैया।
0: बिल्कुल, अब देखो जब बीमारी के प्रकोपे कम हुई अब देखो जो महीना चल रहा है जेठ केर वहीमा का है भयंकर गर्मी पड़ रही है, अब हम लोग अगली फसल तो लेबे करीबा है तो अभी जमीन कहीं अपन माटी कहीं समतल कर देख चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: काहे सिर जौन है अगर पानी मान लो हल बरसी है तो तनिको पानी जौन है जल भराव की समस्या ना हो चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: काहे सिर देखो मेढ़े भी किनारे किनारे जौन है वही का नाली बनाए देख चाहिए। काहे सिर जौन है जल भराव जब हुई जाते तो तमाम जीव जौन उत्पन्न हुई जाते जौन हमार फसलन के नुकसान करते
1: भैया, खेती

0: पहले ये सब काम अगर कह लेते
1: हैं
0: तो
1: हाँ,
0: अपन
1: पानी
0: फसल
1: के निकासी भी
0: बढ़िया
1: बहुत जरूरी रहते और ये सब कामन के यहाँ बहुत जरूरी करें
0: भैया। और ई के साथ साथ किसान पंच भैया एक चीज और करें, इस समय जो उन किसान रजिस्ट्री यानी मतलब फार्मर आईडी जो बन रही
1: हाँ,
0: है वो जरूर बनवा लें,
1: बिल्कुल
0: या बहुत जरूरी है सब पंचन बन इनके बद देखो का एक बढ़िया डिजिटल कहा पहचान बन जाते हैं, जैसे तमाम कार्ड बने हैं आधार है वोटर है वो इतना किसान के एक अलग यूनिक आईडी भैया बन जाते हैं।
1: बिल्कुल भैया
0: नहीं नहीं और उमा फायदा का है जितनी सरकारी चीजें हैं
1: योजनाएं
0: हाँ अपनी जो किसानन बद होती है
1: हाँ,
0: चाहे वह जो जो किस्त भैया मिलत है और पैसा मिलत है
1: किसान सम्मान निधि
0: हाँ
1: योजना
0: सम्मान निधि है और जो किसान क्रेडिट कार्ड भैया
1: हाँ,
0: लोन मिल जाते हैं वह इतना जो फसल का अगर बीमा तमाम पंच भैया करें वो है ये सब चीजें वह आईडी तेने मिल जाती है या कहते हैं। और
1: बिल्कुल
0: जैसे अपन खेती पाती है खसरा कतौनी है वो सब एक ही आईडी में सब लग सब चीजें या कहते मिल जाती हैं, तो बहुत जरूरी है कि सब भैया जरूर बनवाए।
1: बिल्कुल। और जो यू कार्ड बन जाते तो कितना आराम दे थे कि कोई भी चीज केयर अगर हमका फायदा लेक है तो हमका भटके ना पड़ा थे,
0: हाँ
1: यह कार्ड के जो उन्हें जरिए हर चीज केयर सम्मिश्रण में हुई जाते और हम लोगों के यहाँ प्रयोग अच्छे तरीके से कर सकी थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: भैया
1: भैया यू जोन है किसान रजिस्ट्री जोन है जरूर से जरूर जोन पंच नए कराई है वो अपन जोन है कार्ड बनवाए
0: कराए ले भैया या बिल्कुल फ्री आईडी बनत कोनो पैसों नहीं लागत है, बस आसपास जोन जैसे अपन केंद्र हैं उमा चले जाए
1: जनसुविधा केंद्र
0: जन
1: है
0: सुविधा केंद्र चले जाए कंप्यूटर अगर भाई आप चाहो तो अपने फोन हो तो कह सकते हो
1: बिल्कुल
0: मुला अगर गड़बड़ी भाई हो जात कबू कबू तो जोन करते हैं उन्हें इनके पास जाओ आराम देने बन जाए कोई दिक्कत ना है और सब योजना लाभ आराम से आपको मिल जाए।
1: बिल्कुल। अब देखो आज है इतवार, आज अपन बैठकी में यहाँ एक सफल किसान आवत है
0: बिल्कुल भैया आवत
1: जौन
0: है
1: अपन जौन है सफलता के कहानी बतावत है कि वो कैसे कैसे काम करके कैसे कैसे योजना बनाए के अपन जौन है काम करके सफल किसान भए हैं।
0: बिल्कुल और आज तो भैया अपने साथ ऐस भैया हैं जो अपन खेती पाती साथ में सही उद्यम करें और वैसे एकदम बढ़िया सफल किसान बने हैं
1: बिल्कुल
0: वो आज अपन सफलता कहानी बताई हैं। तो आज हैं अपने साथ में ओम बाबू वर्मा भैया और इनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया और ये बताई हैं अपन डेयरी व्यवसाय के बारे में, तो चलो सुना जाए सफलता की कहानी।
1: बिल्कुल भैया सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के गोसाईगंज ब्लॉक के केवली गांव के डेयरी व्यवसायी ओम बाबू वर्मा भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप मट्ठा मैन के रूप में जाने जाते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई और खेती खास करके डेयरी व्यवसाय से जुड़ाव हुआ कब से?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। मेरी पढ़ाई लिखाई तो शुरू में मेरी छठीवी से गोसाईगंज में रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज में हुई, उसके बाद फिर लखनऊ में सुंदरबाग में बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज किए, उसी जगह से हमने फिर आईटीआई अलीगंज से पढ़ाई की, उसके बाद फिर अपना गोपालन और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल लाइन का काम हमने वहाँ से शुरुआत की।
2: तो गोपालन शुरू कब किया आपने?
3: मेरे बच्चे जो है बहुत बीमार रहते थे, तो मेरे बड़े वाले भैया एक दिन मेरे घर पहुंचे और कहे आपके घर का दूध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको जो है एक हम पकड़ी हुई गाय छोटी सी पाल देते जो 2-2.5-3 लीटर दूध देगी, वो जो है आपके यहाँ बच्चों के लिए दूध हो जाएगा और उसी से पालन पोषण होगा और 100% वही आहार है। तो उसी चक्कर में हमने वहीं से गाय से स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ कि वो गाय से हमारे यहाँ दूध बढ़ गया काफी, 5-6 लीटर के आसपास हो गया।
2: अच्छा।
3: और उसके बाद जो है उसका दही मट्ठा बनने लगा, और दही मट्ठा जब बनने लगा तो पड़ोस में देते तो बहुत लोगों को फायदा होने लगा, उसके बाद डिमांड भी आने लगी कि भैया तुम्हारे हुआ मट्ठा बहुत अच्छा है, तो हम कहे भैया ले लिया करो, हम लोग तो घी के उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो वही जगह से होने लगा। तो फिर कोविड के समय जो है कोई काम रह नहीं गया, तो उतने समय हमारी समझ में आया कि इसको गौपालन में किया जाए क्योंकि गाय बहुत उपयोगी है।
2: तो फिर एक से शुरू किया तो कहाँ तक पहुँच गए हैं?
3: अब इस समय अपने पास जो है करीब लगभग 30 गाय हैं, बाकी छोटे बड़े मिला 55-60 के आसपास जानवर हैं।
2: कौन सी नस्ल है?
3: मेरे पास करीब 4 गिर की हैं, बाकी सब साहीवाल नस्ल के हैं।
2: अच्छा।
3: जिसमें से कुछ हमने अच्छी नस्ल देखी घूमती हुई गाय पकड़ के अपने यहाँ रखे, उसको भी अपने यहाँ तैयार किए और अपनी बछिया भी काफी तैयार है
2: और उसको भी उत्पादन बना चुके हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो सीमेन अपना उपयोग करके जो अपने सरकारी वाले मारे हैं
2: हाँ।
3: उससे साहीवाल की बछिया बहुत अच्छी है हमारे पास है।
2: तो ये बताएं कि उनका खान पान कैसे करते हैं सुबह से शाम तक?
3: खान पान

0: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी हमें नहीं पहले थी, तो हम तो वही बाहर से मार्केट से पशुआहार खरीद लेते थे और जो दाना पानी आता था वही सब खरीद के खिलाते थे। लेकिन जब तक हम दाना पानी बाहर का उपयोग किए जो मार्केट में आजकल चल रहा, उसके बाद फिर गाय हमारी कोई गाभिन नहीं हो रही।
1: अच्छा,
0: ये समस्या बहुत बड़ी आई। फिर हम एक बार करनाल ट्रेनिंग गए और फिर गवर्नमेंट भेजी थी वहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में, शांति कुंज में। तो वहाँ हमने प्रोफेसर लोग बोले कि आप अपना दाना पानी तैयार। जब से हमने अपना दाना पानी तैयार, मेरी गायों की शक्ल बन गई ऐसी कि बिल्कुल चमकीली हो गए और उसके बाद गाय मेरी सारी गाभिन हो।
1: यानी पशु आहार खुद बनाते हैं?
0: खुद पशु आहार बनाते हैं। एक मशीन हमने खरीदी 50,000 की और उसी से अपनी दलिया तैयार करते हैं, उसी से अपना पशु आहार दाना मक्का सब कुछ उसी से अपना तैयार करते।
1: तो संतुलन क्या रखते हैं, दाना खली और चूनी का?
0: हमारा मानक जो है गेहूं रखते हैं करीब लगभग 30 किलो, और जैसे आजकल गर्मियों में हमने 30 किलो जौ कर दी है।
1: हाँ।
0: और उसके बाद चने की चूनी।
1: हाँ।
0: और इधर थोड़ा वो चोकर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: चोकर है। उसके बाद 1 क्विंटल का मानक बता रहे हैं हम, और 1 किलो मिनरल देते हैं, 1 किलो हमने सादा नमक देते हैं, और 1 किलो हम मीठा सोडा।
1: अच्छा।
0: हाँ, और जो है इसी में 5 किलो खली।
1: 100 किलो में?
0: 100 किलो में। तो ये सब बना के हम तैयार करके और बोरियों में 15 दिन का पैक करके वजन के हिसाब से रख देते कि मेरी गाय हर मानक के हिसाब से रख देते कि गाय मेरी इतना चारा खाएगी तो इतना हमको राशन इसमें डालना है।
1: तो जो 30 भारतीय नस्ल की गायें हैं आपके पास, उसमें दूध कितना दे रही हैं?
0: दूध मेरे पास इस समय डॉक्टर साहब जो है मेरे पास 14 गाय लग रही हैं, लगभग 85-90 लीटर के आसपास दूध है।
1: हो रहा है। और आगे जो गाभिन होगी ब्याएंगी?
0: 20 गाय मेरे पास बच्चा देने वाली, जिसमें से मेरी खुद 14 बच्चियां अपने यहाँ की है जो तैयार की साहिवाल गिर, उसमें से देंगी।
1: तो ये कब तक?
0: ये इसी जून से स्टार्ट होंगे, दिसंबर तक सारी बच्चा देंगे।
1: तो दूध की मात्रा काफी बढ़ जाएगी?
0: दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने प्रोडक्शन के लिए खोया पनीर की इसकी तैयारी कर ली है और ये लगाने जा रहे हैं। खोया पनीर, लस्सी, ये सब तैयार करेंगे अपने।
1: तो जो जानवर हैं उनको खुराक कैसे देते हैं, सूखा चारा, हरा चारा और पशु आहार?
0: ये डॉक्टर साहब मानक जो मेरा है करीब 3-4 किलो के आसपास एक टाइम हम भूसा दे रहे हैं, और उसी में लगभग 10 से लेकर मतलब वजन के हिसाब से देते हैं जानवर के, लगभग कितना वजन है।
1: हाँ।
0: 10-15 किलो के आसपास हरा चारा।
1: हाँ।
0: ये देते हैं। और जैसे दूध दे रही है मेरी गाय तो उसको जो है जैसे अगर 6 लीटर दूध दे रही तो उसको हम 2.5-3 किलो के आसपास एक टाइम राशन दे रहे हैं। जो गाभिन है उसको 1 किलो 200 ग्राम या 300 ग्राम बस इससे मानक में देते रहते।
1: तो कुल मिला जुला करके गर्मी का मौसम है, इस समय गर्मी में कौन कौन सी देखभाल खास कर रहे हैं अपनी डेयरी में?
0: डॉक्टर साहब गर्मियों में इस समय तो हम तो सारा फागल लगाए हुए हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, गर्मियों के लिए, क्योंकि जब लू चलने लगता तो उसको उपयोग करते हैं। और इधर शाम और सुबह दोनों टाइम हम नहलाते हैं गायों को।
1: बहुत बढ़िया।
0: और उसके बाद गाय को खुला छोड़ना।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब से हमने उसको खुला छोड़ दिया तब से गाय पूरा एक दूसरे को चाटती है। कहीं हमने सिरावन गांव में पुरानी पड़ी अपने घर पे उसको गाड़ दिए, उसमें रगड़ती रहती है, और उसके बाद पानी पीने के भर दिए, उसके बाद थोड़ा टीन सेट बना दिए, और टीन सेट के बाद जो है अब पूरा हमने खुला रखा करीब 8 विश्वे के आसपास।
1: अच्छा, उसमें अपना घूमती
0: टहलती रहती है।
1: तो ये बताएं कि जो दूध पैदा करते हैं उसका क्या मूल्य संवर्धन करते हैं?
0: दूध डॉक्टर साहब हमारी समझ में आया कि जो हम मट्ठा अपने यहाँ जो तैयार करते थे एक गाय से जो डिमांड आती थी, तो हम कहें कि क्यों ना ऐसा न करें कि मट्ठा तैयार करें, हमारा घी भी बिक जाएगा मट्ठा भी बिक जाएगा। तो हमने मट्ठा वहाँ पे तैयार किया। मट्ठा जब गांव में देखे बेचने लगे, जा जा के भट्ठों वालों को देने लगे कि भट्ठा पे जो लेबर आते थे उनको भी देते थे, बहुत पसंद करने लगे, बहुत डिमांड आने लगी मट्ठा के। फिर हमारी समझ में आया कि इसको अब किसी तरह हम शहर तक ले जाएं मट्ठा, क्योंकि ये शहर में चीज़ ऐसी है कि सबके पास मिलती नहीं है। फिर एक भाई साहब मेरे मिले, वो कह रहे जानेश्वर पार्क एक ऐसी चीज है वहाँ लोग आते हैं तो वो मट्ठा जो है सुबह सुबह जरूर पियेंगे, आप वहाँ ले जाइए। तो हमने एक बार आए तो पहली बार मेरा 4 लीटर के आसपास मट्ठा बिका। फिर धीरे धीरे वहाँ से ग्राहक बढ़ते गए और आज मट्ठे की ये डिमांड है कि 1-1 घंटे में मेरा सब बिक जाता, कभी कभी रास्ते में ही आते आते बिक जाता है।
1: तो ये मट्ठा क्या दूध को आप गोइठे पे यानी गोबर के उपले पर पकाते?
0: डॉक्टर साहब को गोबर के कंडे पे हमने जो है पकाना शुरू किया, फिर कंडे के डिमांड बहुत ज़्यादा मेरे पास आने लगे तो हम कहे कि फिर इतना मान चले कि गांव में मजदूर मिल नहीं पाते थे। फिर हमने एक जो है भीलवाड़ा राजस्थान से हमने एक मशीन खरीदी।
1: अच्छा।
0: लकड़ी बनाने वाली।
1: हाँ।
0: तो उसी से हमने बनाना शुरू किया, उसके बाद मेरे कंडे पूर्ति

0: हो गए और हमने उसी में दलिया पकाना स्टार्ट कर दिए गायों के लिए।
1: तो मट्ठा के साथ साथ कुछ घी भी मिलता होगा?
0: हाँ, घी मिलता है मेरे पास। घी लगभग मेरे पास 30 लीटर से लेके करीब 38 लीटर के बीच में, जब ताजी मेरी गाय बच्चा देती है 1 लीटर के आसपास घी निकलता है, और 30 ऐसे पुरानी हो जाते 30 लीटर 28 लीटर तक कभी कभी आ जाते हैं
1: महीने में।
0: नहीं महीने में नहीं, लीटर वाइज मतलब दूध में तैयार करते हैं घी 1 लीटर निकल आता, तो लगभग मेरे पास 3 किलो के आसपास इस समय उत्पादन है।
1: 3 किलो प्रतिदिन?
0: प्रतिदिन
1: घी का।
0: जी जी।
1: और मट्ठा?
0: मट्ठा मेरे पास 90 लीटर के आसपास है।
1: तो पूरे डेयरी व्यवसाय की बात करें तो ये बताएं कि महीने में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं, और उसको बेचने के बाद आपका मुनाफा होता कितना है?
0: मट्ठा तो डॉक्टर साहब इस समय का मैं औसत बता रहा हूँ जो आजकल मेरे पास चल रहा है, करीब 90 लीटर के आसपास मेरे पास दूध तैयार होता है। तो उसी का हम जो है पूरा मान चले के उसी का दूध पका के करीब मेरे पक के आ जाता है करीब 78 लीटर 80 लीटर के आसपास दूध लाल पक के तैयार हो जाता है, जो मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। उसके बाद उसी में फिर पानी कुछ मिक्स करके मट्ठा तैयार करते हैं, उसी में से मक्खन, तो वो 90 लीटर के आसपास मेरा मट्ठा उतना तैयार हो जाता है। और कभी कभी 10 किलो के आसपास निकाल देते हैं, 80 लीटर मट्ठा तैयार कर 10 किलो दही हम तैयार कर लेते हैं।
1: अच्छा, दही भी बेचते हैं?
0: दही भी लाल मटकी में और दही करके 500 ग्राम 1 किलो की दही भी तैयार करते हैं और दही भी बेचते हैं। तो लगभग ये मट्ठा और दही घी मिला के लगभग में बिक्री जो हो जाती है लगभग 15 से 16 हज़ार 17 हज़ार के आसपास पर डे की होती है।
1: पर डे
0: की, और जिसमें से हमारे पास करीब 7 हज़ार 8 हज़ार 9 हज़ार रुपए के गायों के प्रति
1: खर्चा
0: भी है। लगभग 2 लाख के आसपास मार्जिन आ जाता है
1: महीने
0: तो,
1: में। हाँ,
0: जो कोई लोग बहुत लोग मानने के तैयार नहीं होते, तो हमने उनको राय दी, हमने क्या कहा कि ये चीज ऐसे हम करते हैं, ऐसे आप भी करिए। क्योंकि किसान देखिए है क्या कि किसान पैदा तो कर लेता लेकिन अपनी चीज बेच नहीं पाता,
1: यानी ब्रांडिंग की जरूरत है और मार्केटिंग की जरूरत है
0: जी।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है डेयरी व्यवसाय का इतने कम दिन में, और किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान गाय पाले लेकिन पूरे परिवार साथ मिलके और खुद अपना प्रोडक्शन तय, खुद अपनी मार्केट मतलब अपनी बाजार खुद ढूंढे, दूसरे को न दे बाजार ढूंढने के लिए, तभी आप इससे कुछ बचा पाएंगे।
1: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
0: बिल्कुल खुश हैं इससे, और इससे खुश इतना है कि आप अंदाजा नहीं, गायों के प्रति इतना लगाव और इतना हमें जो है इससे
1: गौ सेवा का अवसर है। ओम बाबू वर्मा भैया, किसान भाई बहन अभी भी उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मोबाइल नंबर मेरा जो है 70 80 89 99 28 7080 8099 9928 70 80 89 99 28।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: देखिए सफलता डॉक्टर साहब तो मान चले हमने कभी सोचा नहीं था, लोग हमारे मित्र जो थे 10 में से 9 लोग तो मना कर दिए कि गौ पालन में आप न जाइए क्योंकि ये घाटे का सौदा है। तो हमने कहा हम कैसे जाने घाटा का सौदा है, हम तो इसको हम घुस के हम देखेंगे एक बार कि घाटा है कि नहीं है हम, क्योंकि घाटा करके हम सीखना चाहते, ये नहीं कि दूसरे के सिखाए हम सीखना चाहते। तो हमारी जिद ने इसमें ले गए और उसके बाद हमने सोच लिया कि हम अपनी मार्केट करेंगे, एक बूंद भी दूध हम किसी को हम देंगे नहीं व्यापार करने के लिए, खुद अपना व्यापार करेंगे, डायरेक्ट अपने ग्राहकों के पास पहुंचाएंगे।
1: और आज अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके आप दूध दही और मट्ठा साथ में घी भी बेच रहे हैं और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। ओम बाबू वर्मा भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि एक गाय से आपने शुरुआत की, आज छोटे बड़े कुल 60 जानवर आपके गौशाला में हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं और उनके खान पान पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, और जो दूध हो रहा है उससे मट्ठा बना करके, घी बना करके, दही बना करके अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिषेक भैया,
3: भैया
2: देखो कत्ती बढ़िया जो ने सफलता के कहानी डेयरी व्यवसाय के बारे में यहाँ ओम बाबू वर्मा भैया बताएं, और इनसे बात कही करें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो भैया जानकारी और देखो तमाम हुई है, हम लोग बहुत जागरूकता की बातें बताएं, और अब है कि भाई कुछ मनोरंजन हो जाए, क्योंकि कहते हैं लोकगीत कहरवा है आज, मांगे ननद रानी कंगना, और सुना रहे हैं राजेश त्रिपाठी भैया, तो सुना जाए यू कहरवा लोकगीत।
2: बिल्कुल भैया सुना जाए।

0: विवेक भैया।
1: हाँ अभिषेक भैया,
0: देखो अपने जीवन में ही के साथ में जो कारण जो अपन काम करी थे खेती पाती में मौसम का बहुत
1: महत्व है।
0: हाँ भैया रोल महत्व होते है, तो मौसम का अगर पूर्वानुमान है तो बता दो।
1: बिल्कुल भैया, मौसम के जो है हाल हमारे हाथे में यहाँ है, जो हमका प्राप्त भवा है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से रे। आज जौन है 7/6/2026, जहिमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ कहीं कहीं वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े के संभावना रहे।
0: अच्छा।
1: और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ मौसम शुष्क रहे के संभावना रहे।
0: हाँ।
1: मूल कल और परसों यानी 8 और 9 तारीख यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ मौसम शुष्क रहे के संभावना है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहे के संभावना है। और जो 10 तारीख है वहीमा मौसम जो है शुष्क रहे के संभावना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ कहीं कहीं वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े के संभावना है। तो भैया यूँ तो रहे मौसम के हाल, और कल पंच भाई अपन कार्यक्रम में यहाँ कहाँ सुनी है तनिक बता दो।
0: तो कल पंच भैया सुने लोकायतन में भेंटवार्ता, गुर्दे की पथरी, कारण और निवारण, इसके बारे में बताएं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह भैया। और खेती किसानी में सुने पंच भैया भेंटवार्ता, मत्स्य तालाब की तैयारी और मिश्रित मत्स्य पालन, इसके बारे में बताएं डॉक्टर काजल चक्रवर्ती, और इनसे बात करें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: और भैया एक चीज और है, जौन पता पता बहुत जरूरी है चिट्ठी पाती के।
0: हाँ।
1: तो भैया पता तनिक बताए दो।
0: तो अपन पंच भैया सब लोग जो हमारा जो पता है वो जरूर नोट कर लें। पता है कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, और पिन कोड है 226001। और इसके साथ साथ भैया ईमेल आईडी जरूर लिख लें।

0: ईमेल है हमार farmandhome@gmail.com। और भैया सब पंच व्यापन ध्यान रखो, अपने हरा गोरों का ध्यान रखो,
1: बिल्कुल
0: काहे से गर्मी बहुत हो रही है, के साथ में यहाँ सब पंचन से ने लीन जाए विदा।
1: जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सुगंध क्या हो रहा है?
7: बिल

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। रिंग रोड के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय

0: जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया और संगठन से मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
1: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल से जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। वहीं परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने आज आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा।
4: 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
0: प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज मऊ में मधुबन क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एडीप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 2,500 से अधिक दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ट्राई

0: साइकिल और अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया। देवरिया में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खनुआ नदी में बृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नदी से शैवाल जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव जेसीबी की मदद से साफ किया गया। कृषि मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। अभियान में SDRF और PSC 26वीं वाहिनी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपए हो गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इस दौरान बुंदेलखंड और प्रयागराज में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी जिलों में 10 जून से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: सेल्फी लेंगे,
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुने पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं सुमोना S. पांडे और नीना सोनकर।

0: पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीना सोनकर
1: और मेरा यानी सुमोना पांडे का नमस्कार और नीना जी आपको भी नमस्कार।
0: जी सुमोना जी आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को भी हृदय से प्यार भरा नमस्कार। शुरू करते हैं सुमोना जी, बहुत सारे मेल हैं हमारे पास और ये ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा

0: प्रदेश के श्रोताओं का मेल
1: जी,
0: है
1: जी.
0: इनके नाम है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू, कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इनके तीन चार मेल हैं लेकिन सभी में अलग अलग बातें हैं, मोटी मोटी बातें हम पढ़े देते हैं। ये लिखते हैं कि 28 मई 2026 को कार्यक्रम नई उड़ान बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में सामयिक चर्चा, गीत संगीत, विकास समाचार, अवसर और नई उड़ान कार्यक्रम में आउटडोर जो ब्रॉडकास्ट करके सभी एंकर्स या कॉम्पियर्स लाते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं।
1: नीना जी, मुझे लगता है इनको हमारे कार्य प्रणाली के बारे में काफी अच्छे से पता है
0: जी,
1: तभी वो बता रहे हैं। वो भी हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं यानी कि बाहर जाके स्थल जो रिकॉर्डिंग होती है उनके बारे में उन्होंने बात की, और हम लोग कोशिश इसीलिए करते हैं कि आम लोगों से जुड़कर हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाए।
0: जी, इन्होंने लिखा है कि बांस आधारित हस्तशिल्प व्यवसाय पर दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। और एक और इनका मेल है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नागनपुर जी, बहुत फुर्सत में आप मेल लिखते हैं। 28 मई 2026 का लोक रंग लोक माधुरी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में राम सूरत तिवारी जी के स्वर में भोजपुरी गाने बहुत अच्छे लगे, दिल से धन्यवाद। इसी के साथ इन्होंने इस मेल में लिखा है, जो 27 मई 2026 का मेल है, बुधवार का दिन कार्यक्रम पत्रकार से संवाद बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार लेखक डॉक्टर रईस सिंह जी से सुभाष खन्ना जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी, इसके लिए धन्यवाद।
1: हम दुर्गेश जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम इतने ध्यान से सुनते हैं और हमें मैसेज करते हैं और अपनी बात भी हम तक पहुंचाते हैं, जिससे कि दूसरे श्रोता भी उनसे उत्साहित होते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है कि हमारे कार्यक्रम सुने भी और उनसे लाभ उठाएं।
0: जी, सुमोना जी बहुत पेशेंस के साथ 6-7 पन्नों में मेल भेजते हैं ये, इनका दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ अगला मेल, शेष राम मिश्र, ग्राम पूरे पंडा, पोस्ट दादरा, तहसील मुसाफिरखाना, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश के श्रोताओं का मेल। ये है मानवती मिश्रा, प्राची मिश्रा, आनंद मिश्र, वेदिका मिश्रा और सभी घर परिवार के सदस्य। लिखते हैं, दिनांक 31 मई को खेती किसानी कार्यक्रम में डॉक्टर श्री मोहम्मद फारूक और डॉक्टर सुशील कुमार राय जी की बातचीत अच्छी लगी।
1: जी, तो शेषराम मिश्र जी और इनके सभी साथियों को हमारा नमस्कार भी है और आभार कि आपने हमें मेल करके अपनी बात हम तक पहुंचाई। इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि हम आप तक सूचना और जानकारी पूरी तरह से पहुंचा सके, जिससे आप लाभ ले सके।
0: नेहा वर्मा जी अक्सर मेल भेजती हैं सुमोना जी, इनके साथ अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम, गौरपुर, बमना खेड़ा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल भेजा है। ये लिखती हैं कि आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनना बहुत अच्छा लगता है, विशेष तौर पर लोकायतन, खेती किसानी, घर आंगन, आंगनबाड़ी और विज्ञान और किसान कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अच्छा लगता है। एफएम के कुछ कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये लिखती हैं आगे कि दिल से शुक्रिया इन सभी कार्यक्रमों के लिए।
1: जी, तो नेहा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से सारे कार्यक्रमों के बारे में बताया, इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सुनती हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं और आपके मेल हम तक पहुंचते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे कार्यक्रम आपके लिए ही होते हैं।
0: सुमोना जी, बहुत दूर से ये मेल आया है, धार मध्य प्रदेश से, और ए के मिश्रा जी ने मेल भेजा है। इनका पूरा नाम है अरविंद मिश्रा और इन्होंने जो बातें लिखी हैं कि आपका नियमित श्रोता हूँ, आकाशवाणी लखनऊ बहुत प्यार से ध्यान से सुनता हूँ, लोक माधुरी कार्यक्रम की दिल से प्रशंसा करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक गीत, लोक कथाएं और ग्रामीण जीवन की झलकियाँ सुनने को मिलती हैं। लोक कलाकारों के माटी की खुशबू से भरे गीत सुनकर मन गदगद हो जाता है। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोक माधुरी हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी भाषा के गीत सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे गांव की चौपाल पर बैठा हूँ। ये कार्यक्रम सचमुच लोक माधुरी है और इसका समय बदलाव चाहते हैं ये। हर दिन एक नई कैटेगरी, जैसे कि सोमवार को अवधी, मंगलवार को भोजपुरी, बुधवार को ब्रज, और इसके साथ गुरु और मैथिली आदि करना रोचकता को बढ़ा देगा। और इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि आपके स्टेशन से प्रसारित नीना सोनकर के स्वास्थ्य कार्यक्रम की हृदय से प्रशंसा करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो उनके द्वारा दी जाती है, प्रस्तुत करने का तरीका, श्रोताओं से संवाद करना अत्यंत प्रभावी है। स्वास्थ्य सफाई

0: पोषण जैसी जरूरी बातें लोकगीतों के साथ जुड़कर सीधे दिल तक पहुंचती हैं। ऐसे कार्यक्रम सचमुच में जन जागरूकता का काम करते हैं। आपसे निवेदन है कि 31 मई को प्रसारित छाछ पर कार्यक्रम जो स्वास्थ्य चर्चा में सुना, एक बार फिर से प्रसारित करने का कष्ट करें। गर्मी वैसे भी चरम पर है। युववाणी कार्यक्रम की हृदय से प्रशंसा करता हूँ। ये कार्यक्रम युवाओं की आवाज बनकर सामने आया है। इसमें करियर गाइडेंस, स्टार्टअप, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर जो चर्चा होती है वो आज के युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है। युववाणी सुनकर लगता है कि रेडियो सिर्फ गीत संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये युवाओं को जोड़ने और उन्हें सही दिशा दिखाने का सशक्त माध्यम भी है। जो कॉम्पियर्स हैं, उनकी भाषा सरल और प्रभावी है, जिससे हर बात सीधे दिल तक पहुंचती है। आपकी टीम को दिल से धन्यवाद।
1: नीना जी, आप इनका मेल जब पढ़ रही थी तो मेरे सामने एक इस तरह का दृश्य आ रहा था कि वाकई में इन्होंने कितने प्यार से और कितने विस्तृत हमें सारी चीजें लिखकर भेजी हैं। और युवाणी, जहाँ तक मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, अब वो युवा तरंग के नाम से प्रसारित होता है 5:10 से। इसमें हमारा उद्देश्य यही होता है कि युवाओं को हम जागरूक करें, उनको एक दिशा निर्देश दें और वो अपने जीवन में सफल हो सके। और साथ ही साथ हमारे जो अन्य कार्यक्रम है, आपने लोक माधुरी की बात की, वाकई में जो हमारी जड़ों से जुड़ी होती हैं वो हमारे दिलों को कहीं छूती हैं। तो आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आते हैं, आप हमें मेल करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे कार्यक्रम को इसी तरह सुनते रहिए, उनके बारे में लिखते रहिए, क्योंकि हमें आपके मैसेज का हमेशा इंतजार रहता है, आपके मेल का इंतजार रहता है।
0: जी सुमोना जी,
1: एक चीज और कहना चाहूंगी अरविंद जी से कि हमारा FM चैनल भी होता है, जिसमें हम अलग अलग राज्य के जो गीत हैं उनको आप तक पहुंचाते हैं, जो हमारा 11 से 12 बजे के मध्य कार्यक्रम होता है FM 100.7 MHz पे।
0: जी, बुधवार और शनिवार को वो आप सुने, सुगंध माटी की अवधि बोली का वो कार्यक्रम है, और आप लोग सुनिए उसे और फिर बताइए कि उस बोली में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की बोली अवधि है, उसमें आपको कैसे लगते हैं।
1: और अवधि के अलावा भी हम उसमें और लोकगीत भी जोड़ते हैं, उसमें चाहे जो भी आप सुनना चाहें उसमें हम हर तरह के लोकगीतों को शामिल करते हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम उस चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: जी, और सुमना जी, ये ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी हैं, लिखते हैं कि अपराजिता कार्यक्रम में 29 तारीख को नशे की लत से बच्चों को बचाए विषय पर वार्ता समाज उपयोगी लगी। 31 तारीख को अक्षयवट में तंबाकू मुक्त बुढ़ापा गौरवशाली जीवन, ये इन्हें अच्छा लगा।
1: इंद्रपाल जी, आपने हमारे कार्यक्रम से लाभ उठाया, इसके लिए हम भी बहुत उत्साहित होते हैं कि आप हमें मेल द्वारा अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं, ताकि हम कार्यक्रम को और अच्छे से आप तक पहुंचा सकें। आपने मेल किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार।
0: सुमोना जी, ये ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली उत्तर प्रदेश के हैं श्रोता। इनके नाम हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और सभी मित्रगण। लिखते हैं कि 90 वर्ष पूरे होने पर सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।
1: जी,
0: 2 जून को नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में मुख्य डाकघर के अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र से रमनप्रीत सिंह जी की बातचीत सुनी, बहुत अच्छी लगी। इसमें डाक की कुछ योजनाएं बताई गई, काफी अच्छी जानकारी थी। 3 तारीख को उर्दू प्रोग्राम में डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी जी ने गजलें पेश की, बहुत अच्छी लगी। और उर्दू प्रोग्राम में मुशायरा कब प्रसारित किया जाएगा, कृपया बताएं।
1: लाल मोहम्मद जी, आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना और हमारा जो उद्देश्य है उसमें हम तभी सफल होते हैं जब आपको उससे लाभ होता है, तो आपने हमें मेल द्वारा इस बात से अवगत कराया और आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। हम कोशिश करेंगे जल्द ही जल्द आपके अनुसार कार्यक्रम पेश किए जाएं, और जो भी कार्यक्रम होते हैं उन पर आप जरूर अपनी टिप्पणी लिखकर हमें भेज सकते हैं।
0: सुमोना जी, किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के श्रोताओं का मेल,
1: और मैं नाम समझ रही हूँ।
0: जी जी जी, विजयपाल यादव जी हैं, शुभम यादव जी, ऋचा गुड़िया, शिखा यादव और विजय पांडे जी भी हैं।
1: तो आज तो इनका एक ही मेल दिख रहा है
0: जी, और छोटा भी कर दिया है इन्होंने, काफी अच्छा किया।
1: हाँ, क्योंकि कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लें, और शायद इसीलिए समय की बात होती है, लेकिन अगर मेल संक्षेप में होगा और आपका नाम भी बोला जाएगा तो इतना ही काफी होता है मेरे ख्याल
0: जी। इन्होंने लिखा है कि आपके यहां से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिसमें सबसे अच्छा कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद लगता है, क्योंकि आप दोनों बहनों की मधुर आवाज में ईमेल का पढ़ना और जवाब देना बहुत ही मन को भाता है। आप बहनों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। 27 मई को आंगनबाड़ी में महिलाओं के लिए जो जानकारी डॉक्टर नीरू मित्तल जी ने दी वो अच्छी लगी। आंगनबाड़ी कार्यक्रम में इसी दिन हेलो किसान कार्यक्रम में खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक, जायत फसलों में सामयिक कार्य, कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग, इस विषय पर जानकारी डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य जी ने दी, और इनसे बातचीत की डॉक्टर

0: सुशील कुमार राय जी ने
1: जी।
0: बातचीत ज्ञानवर्धक लगी। लोक रंग लोक माधुरी कार्यक्रम में डॉक्टर भक्ति शुक्ला जी के स्वर में लोकगीत बहुत ही अच्छे लगे। 31 मई को बाल मंच कार्यक्रम में कहानी कोशिश बहुत ही अच्छी लगी। अक्षयवट कार्यक्रम में भेंट वार्ता तंबाकू मुक्त बुढ़ापा गौरवशाली जीवन। डॉक्टर आर प्रधान से डॉक्टर अलका चौधरी ने जो बातचीत की वो अच्छी लगी। हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में तंबाकू के सेवन से दुष्प्रभाव, इस पर जानकारी डॉक्टर जीशानुद्दीन अहमद जी ने दी, वो भी अच्छी लगी। 1 जून को घर आंगन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें गीत तो बहुत अच्छे सुनवाए गए। खेती किसानी कार्यक्रम में पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव एवं टीकाकरण, डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी जी ने इस विषय पर जानकारी दी और हमेशा की तरह इनसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने बहुत उपयोगी लगी। साथ ही 2 जून को सुविचार में बड़े मंगल का महत्व तथा स्वास्थ्य चर्चा भी उपयोगी लगा।
1: जी हाँ, और नीना जी, विजयपाल यादव जी का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे, और इन्होंने बहुत ही संक्षेप में अपनी बात इस बार लिखी है। हालांकि बहुत सारी बातें लिखी हैं, हर एक कार्यक्रम की तारीफ की है, और जब कार्यक्रम आप तक पहुंचती है, उससे आपको लाभ मिलता है, तो हमारा उद्देश्य सफल होता है। तो आपने हमारे कार्यक्रम सुने, इसी तरह सुनते रहिए। हम भी कोशिश करते हैं कि आपके आवश्यकता के अनुसार आपको जानकारी पहुंचाई जाए और आप उससे लाभ ले सके। इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। बहुत बहुत आभार आपका।
0: अब जो मेल हमारे पास आया है, ये है विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी, सांडी जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश की हमारी श्रोता हैं, और प्रिंसी सिंह जी ने दरअसल मेल भेजा है और विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी का नाम लिखा है। 3 जून सन 2026 को विश्व साइकिल दिवस पर विविधा कार्यक्रम अच्छा लगा, और ये लिखती हैं कि मैं सबसे ज्यादा मीडियम वेव के कार्यक्रम को सुनती हूँ और यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 100.7 FM रेनबो का जो हॉटमेल प्रोग्राम है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी जगह लकी चॉइस कृपया शुरू करें।
1: जी प्रिंसी जी, और आप सभी को हमारा आभार कि आपने हमें मेल किया और अपनी बात हम तक पहुंचाई। हम कोशिश करेंगे कि कुछ कार्यक्रमों में परिवर्तन किए जाएं, लेकिन कुछ हमारे नियम भी होते हैं जिनके तहत हमें कार्यक्रम करने पड़ते हैं। तो इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें मेल करते रहिए।
0: ये हमारे पास मेल आया है जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्य राम सागर साहू रसूलपुर वाले, और इन्होंने मेल में लिखा है कि आंगनबाड़ी में आपने हमारा मेल नहीं पढ़ा, आपने मेल आईडी तो बताया था। तो सुमोना जी, आपने मेल आईडी इन्हें बताया था कि PKLD में आप हमें मेल कर सकते हैं?
1: जी, नहीं, हो सकता है उन्होंने आंगनबाड़ी में भी लिखा हो। तो नीना जी, इस कार्यक्रम में आपने इनका मेल जो है शामिल कर लिया है, उन तक बात जरूर पहुंच गई होगी। मुझे लगता है वो आंगनबाड़ी में अपना नाम सुनना चाहते होंगे
0: जी,
1: तो कभी कभार उनके नाम लिए जा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आपका बहुत बहुत आभार।
0: और ये राम खिलावन जी हैं कुरसट से, इनका रेडियो क्लब है और हमेशा की तरह इनके साथ और भी इनके मित्रगण होते हैं। ये लिखते हैं कि सभी को प्यार भरा नमस्कार, और कुछ नाम हैं इनके साथ जो लिखे हुए हैं, अविनाश द्विवेदी जी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव और राम प्रसाद। 1 जून का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा, ये था विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर, जानकारी बहुत अच्छी लगी। इसी दिन कृषि चर्चा में मेंथा की खेती पर जानकारी, वो भी बहुत अच्छी लगी। 2 जून का खेती किसानी कार्यक्रम अच्छा लगा, जिसमें विषय था मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ की तैयारी विषय पर जानकारी अच्छी लगी। डॉक्टर अर्चना सिंह ने अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक जानकारी दी। 3 जून का हेलो किसान कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, फोन इन प्रोग्राम था, डॉक्टर पंकज नोटियाल विशेष मेहमान के तौर पर थे जो श्रोताओं के जवाब दे रहे थे, और हमेशा की तरह उनसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने। आगे इन्होंने कुछ बातें और लिखी हैं। घर आंगन प्रोग्राम में नाटक माई मरे मौसी जीए सुनकर बहुत अच्छा लगा, जो कलाकार प्रतिभाग करने वाले थे बहुत अच्छे थे, ओम प्रकाश, नूतन, कपिल, प्रतिभा और सभी को दिल से धन्यवाद।
1: राम खिलावन जी, आपका भी बहुत आभार कि आप सब साथी हमारे कार्यक्रम मिलकर सुनते हैं, अपने मेल हमें भेजते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हमारे जितने भी प्रस्तुतकर्ता होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं आप तक कार्यक्रम, अच्छे अच्छे कार्यक्रम पहुंचाने के लिए, और हम इनका आभार भी करते हैं। और नीना जी, आप समय की तरफ भी हम देख लेते हैं।
0: बिल्कुल, आपकी निगाह हमेशा की तरह ये जो डिजिटल क्लॉक लगी हुई है उस पर है,
1: तो अब आप पता बता दीजिए।
0: हमारा मेल आईडी है pkldlko@gmail.com। एक बार फिर से दोहराए देते हैं, pkldlko@gmail.com। अगर आप लिखना चाहते हैं हमें पोस्टकार्ड, तो उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा पता। हमारा पता है पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन संख्या है 226।

अभी श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुन रहे थे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ थी सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शामे अवध। नमस्कार दोस्तों, आज के शामे अवध कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला। दोस्तों, कहा जाता है दिल की जुबान अगर कहीं बसती है तो वो आँखों में बसती है। आज हम बात करेंगे आँखों की, जो देखती ही नहीं बल्कि महसूस भी करती है। दोस्तों, आँखें वो आईना है जिसमें इंसान की पूरी कहानी झलक जाती है। खुशी हो तो चमक जाती है और दुख हो तो भीग जाती है, और प्यार हो तो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है।

दोस्तों, आपने कभी किसी की आंखों में झांक कर देखा है? कहते हैं, अगर किसी को समझना हो तो उसकी बातों से ज्यादा उसकी आंखें पढ़ो। तेरी आंखों की खामोशी हजारों सवाल कर जाती है। तेरी आंखों की खामोशी हजारों सवाल कर जाती है। जो जुबान कह ना पाए कभी, वो नजरें कह जाती है।

दोस्तों, आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं, ये भरोसे, रिश्तों और इंसानियत की पहचान है। तो अगली बार जब किसी से मिले तो उसकी आंखों में जरूर देखिएगा, हो सकता है आपको कोई अनकही कहानी मिल जाए।

याद रखिए दोस्तों, आंखें सच बोलती हैं, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला को दीजिए आज के शाम अवध कार्यक्रम से अनुमति। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नई थीम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आज के हिंदी कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं व्यंग वार्ता हवा में फड़फड़ाते शब्द। वार्ताकार हैं अमन मणि त्रिपाठी।
1: साधो, एक बड़े से सभागार के मंच पर बहुत सारे कवि सजे धजे जमे हुए हैं। श्रोता कसमसा रहे हैं, वे रह रहकर हिल डुल रहे हैं, अर्थात जीवित हैं। यह कविता वाचन का द्वितीय सत्र चल रहा है। कवि जप रहे हैं, शब्द पक रहे हैं और सुनने वाले तप रहे हैं। कविता की नई जमीन बन रही है। मंच से संचालक द्वारा यह बात बार बार कही जा रही है, लेकिन कुछ कवि उत्साह के अतिरिक्त में जमीन से पहले पर्वत पठार कछार बनाने पर तुले हुए हैं। कवि दूर दूर से आए हैं और कविता को दूर तक ले जाना चाहते हैं, मगर उनको सुनकर लगता है कि किंचित कविता उनसे दूर जाना चाहती है। मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रोताओं का हाल देखकर बोल रहा हूँ। देखो ना, देखो, अभी जो कवि पढ़ रहा है वह निबंध को गा गा कर पढ़ रहा है, जिसके बारे में संचालक ने बताया था कि हाल ही में उनकी कविता की 13वीं किताब आई है। उनको सुनते हुए बगल

में बैठा व्यक्ति कह रहा है कि इससे अच्छा तो अखबार ही पढ़ लेते। साधो, जरा इस गीतकार की आंखों में तो देखो, सजल है। ना ना ना ना, वो हूट नहीं हुआ है। एक श्रोता ने मुखड़ा सुनने की फरमाइश कर दी है। अब गीतकार क्या जाने श्रोता का गला भरा हुआ है। कार्यक्रम के मध्यांतर में भोजन को चबा कर नहीं दबा कर खाया है। सुस्वादु भोजन, एसी की ठंडक, तिस पर दुपहरिया, आ गई झपकी, निकल गया मुखड़ा। मुंह पर हाथ फेरते हुए श्रोता का कर्तव्य बोध जागा। कर दी फिर मुखड़े की फरमाइश, जैसे भोजन के समय की थी रसगुल्ले की ख्वाहिश। गीतकार ने श्रोता के मुखड़े पर मोहित होते हुए पुलकित भाव से अपने गीत का मुखड़ा दोबारा सुनाया। मुखड़ा सुनने के बाद श्रोता के मुंह से दाद की जगह डकार निकली। साधो, बड़ा कवि हूट होने से नहीं डरता, महान कवि सूट होने से नहीं डरता। कवि की एक श्रेणी और है, जानो। एक होता है घुटा हुआ कवि, वह अपने निर्धारित समय से डेढ़ गुना दुगुना जितना मन करे समय लेता है। वह समय का कोटा नहीं देखता, वह मात्र अपनी कविता की मात्रा देखता है। वह जानता है उसके लिखने से कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है, अपनी कविता से वह स्वयं नहीं बदला। इसलिए वह इस जड़ समाज को कविता के रूप में अपनी खरी खोटी सुना सुना कर बदला लेता है। वो अपनी सारी घुटन उस समय ही निकाल देना चाहता है, भले ही सुनने वाले का दम क्यों ना घुट जाए। इससे अलग एक होता है सिर्फ कवि, वो कवि निर्धारित समय में ही काव्य पाठ कर चुपचाप अपना आसन ग्रहण कर लेता है। हालांकि इस दर्जे का कवि हिंदी साहित्य में मिलना पुच्छल तारे जैसी एक दुर्लभ घटना मानी जाती है। साधो, कवि की एक कोटि और है। पहले तो वो जिनकी कविता आकार में इतनी बड़ी होती है कि अंतर वस्तु उसके अंदर दबके मर जाती है। दूसरे वो होते हैं जो आकार में छोटी कविता लिख के भी बड़ी कविता लिखते हैं। साधो, अभी जो कवि आया है उसके गले में बहुत जान है। वो चीख रहा है, अच्छा चीख रहा है, लगातार चीख रहा है। वो भूल गया कि यह कवि सम्मेलन नहीं है, यहाँ ना चीखना चलेगा ना चुटकुला। मुझे क्या लगता है कि मंच को रैली का मैदान समझ रहा है। वो चीख रहा है मगर उसकी कविता खामोश है। ऐसे में रूमी की एक बात याद आती है, अपने शब्द उठाओ, अपने शब्द उठाओ, आवाज नहीं ये बारिश है जो फूल उगाती है, गरज नहीं। साधु, संचालक महोदय फरमाते हैं कि ऐसे सुधी पाठकों के लिए भी तालियां होनी चाहिए जो इतनी तन्मयता के साथ कविता सुन रहे हैं। दरअसल इस प्रशंसा के मूल में चापलूसी छुपी हुई है। संचालक के मन में खटका बना हुआ है कहीं बचे खुचे श्रोता भी सभागार से निकल ना जाए, जबकि संचालक जानता है और बखूबी जानता है, वह अनुभवी भी है और उसके साथ कवि भी है। वह जानता है कविता सुनने वाले ये जो बचे खुचे श्रोता हैं कुर्सी छोड़कर जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रेक के आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन को उन्होंने खींच कर इतना खा लिया है कि उनसे अपनी सांस तक नहीं खींची जा रही। सुधी श्रोताओं ने तो लंच के बाद सीधे अपने घर की राह पकड़ ली। अभी सभागार में जो कुछ श्रोता दिख रहे हैं उसके लिए कविता के स्तर से ज्यादा उदरस्त की गई पूड़ियों की संख्या जिम्मेदार है। इतना ठेलने के बाद सुधी श्रोता को सुधी कहाँ। साधो, कविता सुनते सुनते मैंने भी कविता लिख मारी है। सुनो, कविता की एक और किताब आने से, कविता की एक और किताब आने से खुश है कवि, मगर शब्द कतई खुश नहीं। उनको शिकायत है, उनको शिकायत है। वे चाहते हैं कि कविता से कभी तो कवि भी बड़ा दिखाई दे। साधो, सभागार में एक बच्चा भी है जो बाल सुलभ हरकतें कर रहा है। कविता के बीच उसकी निरंतर आवाजाही बनी हुई है। कवि की कविता से ज्यादा वह ध्यान आकृष्ट कर रहा है। बच्चे की गणित अच्छी है, इसका प्रमाण यह है कि उसने अपने पापा से जोर से अभी अभी कहा है कि पापा पापा अब बस दो पॉइंट सुनने को बचे हैं, बस। उसने दो बार पापा पापा कहा और दो बार बस बस। बच्चे के इस बयान से सुनने वालों के होंठों पे मुस्कान तैर गई। साधो, जब से ये मोबाइल आया है तब से बड़ी राहत है, कार्यक्रम के बीच में बजना शुभ माना जाता है। इधर कवि हाहाकारी समय के द्वंद का वर्णन कर रहा है तो उधर कई श्रोता फेसबुक पर अपने टाइम लाइन में निर्द्वंद विचरण कर रहे हैं। कवि मंच से कविता सुना रहा है तो नीचे एक युवा अपने मित्र को मैसेज कर रहा है। मैसेज देखिए क्या कर रहा, ज्यादा वाह वाह ना करो नहीं तो ये रात भर सुनाएंगे। उसके मित्र ने भी मैसेज का जवाब फौरन

0: मना कर दिया। मुझे लगता है कि शायद ये तब से इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि कोई वाह वाह नहीं कर रहा है। किसी और के मोबाइल पर अभी ये संदेश टपका, व्यवस्थापक महोदय चाय की व्यवस्था है ना? जवाब आया, हाँ भाई ऐसी कविता के बाद तो चाय लाजमी है। साधो कविता के बीच एक कहानी सुनो। एक कवि जब ईश्वर के पास पहुंचा तो उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हारा दिल बैठ गया था, उसे जवाब मिला, बैठने से मतलब सिंक कर गया था। मुझसे उम्दराज एक से बढ़कर एक खुसट कवि पड़े हुए हैं, मुझे क्यों उठाया? आते ही निंदा। खैर तुम्हारे अच्छे और महान विचारों के कारण तुम्हारी ये हालत हुई है कवि महोदय, उसे बताया गया। कैसे कैसे? इतने अच्छे और महान विचार छोटे दिल में कैसे समा सकते थे? कवि को जवाब मिल गया था। साधो कविता लिखी जाती रहेंगी, पाठ चलता रहेगा, मंच के आगे सम्माननीय जुड़ता रहेगा। कवि का वाचाल होना चलता है, मगर कविता का मूक होना अखरता है। वाक वाणी का अर्थ ही बोलना है तो कवि के साथ कविता का भी बोलना जरूरी है। कविता मंचासीन होने की चीज नहीं, कविता मंच से उतरकर जब सड़क पे आती है तो उसका सौंदर्य बोध कई गुना बढ़ जाता है। कवि महोदय इससे पहले मैं उपदेशक बन जाऊं, अंतिम बात कहकर विराम लेता हूं। साधो लिखकर डायरी के पन्ने फाड़ते रहो ताकि नया अध्याय लिख सको।
1: अभी आप सुन रहे थे अमन मणि त्रिपाठी की व्यंग्य वार्ता हवा में फड़फड़ाते शब्द। अब आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए शोभित के गाए भजनों का। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं ब्रह्मानंद की लिखी भक्ति रचना शोभित के स्वर में।
1: विश्वपति

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शोभित के गाए भजन। लीजिए अब सुनिए उनकी आवाज में तुलसीदास की रचना।

अभी आप प्रताप नारायण मिश्र की भक्ति रचना शोभित की आवाज में सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में बेखुदी फिल्म के गीत से। इस गीत को लिखा है अनवर सागर ने, जिसकी तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

चित्रपट से कार्यक्रम का अगला नगमा आप सुनेंगे सर फिल्म से। ये गीत लिखा है कतील शिफाई ने, जिसकी धुन बनाई है अन्नु मलिक ने। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की गाय आंदोलन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी।

0: सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के

0: माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच

0: को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
2: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral forums. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said, India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. Discussions focused on municipal

0: Slam title. The Andhra Pradesh government is launched today, launched the Yogandhra 2026, a statewide campaign aimed at promoting yoga and healthy living ahead of the International Yoga Day. The 14-day program will culminate on 21st of June with a grand International Yoga Day celebration in Amravati, where thousands of participants are expected to perform yoga together. The campaign seeks to encourage widespread public participation and raise awareness about the benefits of yoga. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors, including defense, trade, energy, and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong, and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into West Central and entire Northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win two gold and two bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, कर्सियांग, कलमपॉग और सिलीगुड़ी के हिमालय शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मीशत को फ़रोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलानबातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। आठवीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकत दारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासत, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और आवाम से आवाम के माबैन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और कसीर सतही फोरम पर करीबी ताल्लुक और तालमेल कायम रखने के अपने अज़्म की तौसीख की। डॉक्टर जयशंकर और जनाब सुगियोनो ने बाहमी ताल्लुकात में फरोग का खैर मकदम भी किया। जनाब जयशंकर ने अपने इफ्तिताही बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका कमीशन 4 साल की मुद्दत के बाद तलब किया गया है और ये ज़रूरी है कि इस मुद्दत के दौरान बाहमी ताल्लुकात में रुनमा होने वाली अहम पेशरफ्तों का एतराफ किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया में पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के क़याम के 75 साल का जश्न मनाया था। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को अक़्वामे मुत्तहिदा का इस साल का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये एजाज़ मेजर बराक की मिसाली खिदमात और अक़्वामे मुत्तहिदा की क़याम अमन की कोशिशों में भारत की तवील मुद्दत से जारी खिदमात का एतराफ़ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुतहर्रिका बराक की हुसूलियाबी बेशुमार नौजवान भारतीयों, बिलखसूस मुल्क की बेटियों के लिए एक तहरीक है जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खिदमत की तरगीब दिलाई है। मेजर बराक फिलवक्त

सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 12वीं जमात के इम्तिहानात के लिए नतायज के बाद की खिदमात के ताल्लुक से जारी पोर्टल पर मुशाहदे में आए मामलात की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने का आज आखिरी दिन है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोर्टल आज आधी रात तक खुला रहेगा। उसने तालिब इल्मों से कहा है कि वो वक्त ख़त्म होने से पहले पहले अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल करके सबमिट कर दें। अमरीका की ओहायो रियासत के टोलेडो में जारी मशहूर कम्युनिटी फेस्टिवल के आसपास हुई गोलियां चलने के एक वाक़े में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत तशवीशनाक है। मकामी मीडिया की खबरों के मुताबिक ये गोलीबारी ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के करीब हुई। ये दो रोज़ तक जारी रहने वाला सालाना फेस्टिवल है जो मौसीकी के प्रोग्रामों और तारीखी मकामात की सैर के लिए जाना जाता है। टोलेडो के डिप्टी पुलिस चीफ जो हेफरमैन ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि दो अफराद ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने मुश्तबा अफराद की तलाश शुरू कर दी है। ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन ने इस वाक़े पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि हुक्काम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरिकी खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में मज़ीद आगे बढ़ गया है। भारत के महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी मगरबी मानसून शुमाली मगरबी बंगाल के कुछ और हिस्सों पूरे नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज आगे बढ़ गया है। उसने कल साहिली कर्नाटक अंदरूनी कर्नाटक केरलम माहे जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में दूर दराज मकामात पर तेज़ और इंतहाई तेज़ बारिश की पेशगोई की है। उधर कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से मोतदिल बारिश हुई। इस बारिश से शहर के बाशिंदों को गर्मी और हब्स से कुछ राहत मिली। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश आज रत्नागिरी ज़िले तक पहुंच गई है। ज़िले के राजापुर तालुका में आज सपहर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई, जबकि रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारत की खवातीन फुटबॉल टीम को मुबारकबाद दी है। भारत ने गोवा के मडगांव में कल हुए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से शिकस्त दी और छठी मरतबा ये खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की खवातीन फुटबॉल खिलाड़ियों ने गैर मामूली कारकर्दगी, जोश व जज्बा और टीम वर्क का मुजाहरा किया। नायब सदर ने अपने पैगाम में कहा कि यह कामयाबी फुटबॉल में खवातीन की बढ़ती हुई कुव्वत की मजहर है और यह पूरे मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए तहरीक का बायस बनेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मंगोलिया के उलान बातर ओपन में भारतीय पहलवानों ने आज भी अपनी मुतासिर कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल ज़ुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते। 61 किलोग्राम के ज़ुमरे में दीपक ने कजाकिस्तान के एसाइल को फाइनल में 0 के मुकाबले 6 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। दिनेश ने 125 किलोग्राम के ज़ुमरे में कजाकिस्तान के कासिम बेग को 0 के मुकाबले 2 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम के ज़ुमरे में कजाकिस्तान के दास्तान बेग को 6 के मुकाबले 17 से हराया। 57 किलोग्राम के ज़ुमरे में विकी ने मंगोलिया के गान बाटर को 0 के मुकाबले 4 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा हासिल किया। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी एक ऑफ टेस्ट में मैच के दूसरे दिन आज अफगानिस्तान की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। वह अब भी भारत के स्कोर से 451 रन से पीछे हैं। भारत की तरफ से पहली बार खेलते हुए मानसूथर ने 3 विकेट जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए। भारत ने दिन में अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया। कप्तान शुभमन गिल ने 126 रन जबकि KL राहुल ने 100 रन बनाए। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन दोनों ने 81-81 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर ने 52 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से सलीम सैफी 6 विकेट हासिल करके

0: नुमाया गेंदबाज रहे। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिलिंग से कुर्रे अर्ज साफ सुथरा रहता है और इससे ट्रैफिक जाम के बड़े मसले का हल भी फराहम होता है। वजीर मौसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 70वीं पहल में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस पहल में शामिल हों और फिट इंडिया का नजरिया अपनाएं। अदाकार विक्रांत मैसी ने भी साइकिल पर फिट इंडिया संडे मुहिम में हिस्सा लिया और इस पहल को शानदार करार देते हुए कहा कि यह तहरीक बन गई है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकत दारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, करसियोंग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सयाहत और इलाकाई मीशत को फ़रोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलान बातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब सुनिए पत्र और ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां संगीत बनता है दिलों की जुबान और आपके पत्र और ईमेल बनते हैं हमारी महफिल की शान। मैं हूं आपका मेज़बान पंकज शुक्ला और अगले आधे घंटे तक हम साथ मिलकर सुनेंगे हिंदी फिल्मों के सदाबहार मधुर और दिल को छू लेने वाले गीत। इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे आपके भेजे हुए पत्रों और ईमेल में लिखी फरमाइशों को। तो तैयार हो जाइए संगीत के उस सफ़र के लिए जहां हर गीत किसी श्रोता की पसंद है और हर धुन किसी दिल की आवाज़। अब आपको बता दें अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले मेल से जो हमें प्राप्त हुआ है। ग्राम चरौदा बार नवापारा जिला बदौला बाजार छत्तीसगढ़ से और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इसप्रीत शर्मा की। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी की ये मेल हमें मिली है सांडी हरदोई से। आप सब सुनना चाह रहे हैं एस जानकी की आवाज़ में एक गीत जिसके बोल हैं दिल में हो तुम सांसों में तुम। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत जो आ रहा है बाप के रेडियो सेट पर।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला नगमा आप सुनेंगे आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ में। कल की आवाज़ फिल्म के इस गाने को सुनना चाहा है ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे जी ने। इसी गाने के लिए मेल हमें मिली है ग्राम पहाड़ीपुर रायबरेली से राम राज राजू भानु रामशंकर पत्रकार भाई वाले रक्षा मौर्या राम सागर साहू रसूलपुर वाले और रामचरण प्रजापति जी की। ग्राम जसवाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे की। पश्चिम सिंह भूमि चाईबासा झारखंड से शिवा गोप प्रेम गोप कपिल गोप शिवांश संगीता लिपि दीपाली और ज्योति गोप की। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत कल की आवाज़ फिल्म से।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज़ में बाजीगर फिल्म का गीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी रोहित ऋतु मुकेश और जगताप। इसी गाने के लिए एक और पत्र हमें मिला है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य और ऐरोही मौर्य के साथ स्वाति मौर्य ने ये पत्र हमें भेजा है। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत बाजीगर फिल्म से।

इसी गाने के लिए एक मेल अभी अभी हमें मिली है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप की। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी की।

आज के कार्यक्रम की ये अगली मेल हमें भेजी है हरदयाल सिंह जी ने, जनपद हरदोई से। आप सुनना चाह रहे हैं जिंदा दिल मूवी का गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और मोहम्मद असलम ने। आपको ये गीत सुनवाऊं उसी से पहले आपको बता दूं कि इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है परवल हरियाणा से। नरेश, संगीता, भव्यांश, राजेंद्र, महेश, अमित, सूरज, सचिन, सतीश, सानू, आयुषी, कार्तिक और बघेल परिवार की, डॉक्टर विवेक शर्मा, रीना विश्वकर्मा, विक्रांत, रिशु, सुजीत यादव, लालचंद यादव और रामजीत यादव जी की भी। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत जिंदा दिल फिल्म से।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आ फिल्म का गीत, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है हमारे नियमित श्रोता एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, सहनाज खान और शिव शरण सोनी जी ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। इसी गाने के लिए खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत आह फिल्म से।

श्रोताओं, आह फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपके पत्रों, ईमेल और प्यार भरे संदेशों ने हमारी इस संगीत यात्रा को और भी यादगार बना दिया। हमें उम्मीद है कि आज सुनाए गए गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा। आप भी अपनी फरमाइशें, सुझाव और संदेश हमें पत्र और ईमेल के माध्यम से भेजते रहिए। हो सकता है अगली बार आपकी पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं पंकज शुक्ला आपसे अनुमति चाहता हूं। फिर मिलेंगे नई फरमाइशों, नए संदेशों और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति।
0: श्री एम वी सुब्बारायडू और श्रीमती एम जलजाक्षी के पुत्र श्री एम एस एन मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती एम जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एन सी एच कृष्णमाचार्युलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एम एस एन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एम एस एन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एम एस एन मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगैन अर्ली। His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri M. S. N. Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N. C. H. Krishnamacharilu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M. S. N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M. S. N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृतवार्षिणी रागम आदितालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। He is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the mridangam and Vidwan Sri M. Haribabu on the ghatam. Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Adithalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri MSN Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वेर इन वी प्रेजेंटेड अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही वॉज अकम्पनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड ऑन द घटम बाय विद्वान श्री M हरिबाबू। Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में

0: फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोल

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत. आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया.
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल. अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं.
3: बहुत बहुत धन्यवाद.
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है. इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए. और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है. आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है. और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत. और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है. 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है. तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है. तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जाँच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके. तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं. आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम हैं. तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं. कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी

0: चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50 से 90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान

0: आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है। तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज़्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं।
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है, यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में

0: हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी,
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है, और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफ़ायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुँच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज़ किए, जैसे हमने कोविड पैंडमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं, तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है,
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में AI टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन TB अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की, उसमें हमने AI ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड, AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे AI कैसे मदद करता है कि AI टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, AI टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक CHO को ये तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या AI की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी AI के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम

0: 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ENT की जांच चाहिए तो वो भी वहाँ मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहाँ मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहाँ मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहाँ मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहाँ मिलेगी, और NCD की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है, और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो GDP का 64% हुआ करता था। हमने उस पे धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है, तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने TB और COVID-19 का भी जिक्र किया, तो आज TB के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है, राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की ज़रूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जाँच के साथ साथ एक ज़रूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है, उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में

0: लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है, तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ COVID-19 की भी चर्चा करते हैं। COVID-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफ़ी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, COVID-19 पैंडेमिक पूरे दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है।
1: जी
0: यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके ज़िले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज
1: जी
0: की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो।
1: मौजूद हो।
0: इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है,
1: बिल्कुल भी
0: आसान
1: नहीं।
0: लक्ष्य नहीं है।
1: जी
0: और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल
1: डिजिटल
0: सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में, आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम 3रे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है।

0: इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़ें, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेज़ी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए ज़रूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है, न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक ज़बरदस्त क्रेज़ है, और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो ज़रूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है, और मैं

0: समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार।
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी ज़रूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।